कैसे कहूँ मोहे जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर, मन ना रहे बहु विद उमकाई रहाओ। चितवन चितवो

मानस जन्म गुलवाए, गर्भ जोन छोड़ जो निक्सो तौ लागो अनठाही, करें बुराई ठगाई दिन रहन नेफल कर्म कमाही, कान नाही तो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही।

तो मिलिया जो प्रभु मिलाया, जिस मस्तक लेख लिखाई, कहो नानक किन जन बलिहारी, जो अल्प रहे मन माही, सारंग महला पंजवा, क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिछरत होत मृतका, गृह में रहन न पाई, रहाओ जी ही प्राण को दाता, जाके संग सुहाई, करो कृपा संतो।

श्री रविदास ठाकुर बन आई, जियो पिंड तन तन साधन का, त्यों मन संत रे नाई, संत प्रताप परम सब नाते, नानक मिले गुसाई, सारंग महला पंजवा।

मन कहां लुबाइए आन कहो, कीत ऊत प्रभु सदा सहाय, जी संग तेरे काम को रहाओ, अमृत नाम प्रिय प्रीत मनोहर, यह अगामन पान को, अकाल मूर्त है साध संतन की, ठहरनी की ध्यान को, बाणी मंत्र महापुरुषन की, मने उतारन मान को, खोज लहो नानक सुख थाना, हर नामा विश्राम को, सार मेला पंजवा, मन सदा मंगल गो

कृपाल दीन दुख पंजन जमते हो वह तरम राय एक कस दिन नाही को दूजा आन ना बियो लवे लाए मात पिता पाई नानक को सुखदाता हर प्राण साए सारंग महला पंजवा हर जन सगल उधारे संके पहे पुनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे रहाओ मार्ग चले तिनी सुख पाया जिनसो गोष्ठ से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में ते साधु संग पार परे जिनके पाग बड़े हैं पाई तिन साधु संग मुख जुरे तिनकी तूर बांचे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे सारंग महला पंजवा हर जन राम राम राम के आए एक पलक सुख साथ समागम कोट बैकुंठ पाए।

मोहन कार्यावो करो जो दरिया, मान करो अभिमान बोलो, फूल चूक तेरी प्रक्रिया रहाओ, निकट सुनो अर देखो नाही, परम परम दुख परिया, होए कृपाल गुर लाहे पार दो, मिलो लाल मन हरिया, एक निमक जे बिसरे स्वामी, जानो कोट दिनस लख बनिया, साध संगत की पीर जो पाई, तो नानक हर संग मिरिया, सारंग महला पन्यवा, अब क्या सोचो।

नानक पाग परयो हर पाछे, राख संत सदकारी सारंग महला पंजवा, अब मोहे सर्व उपाव दिरकाते, करण कारण समरथ स्वामी हर एक स्ते में।

प्रमतो हार जो पड़े हो तो गुर मिल चरण पर आते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया हे सुख बिहानी राते सार महला पंजवा अब मोहे लब दियो है हर टेका गुर दयाल पय सुखदाई अंधुले मानक देखा।

जो अल कमला लो भांगे, गुण निधान मनमोहन लालन सुखदाई सर्वांगे, गुरु नानक प्रभ पाहे पठायो मिलो सखा गल लागे। सार महला पंजवा, अब मोरो ठाकुर स्यो मन माना साध कृपाल दया।

मेरे मन शीत आए त्रय रंगा, बिसरो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा। रहाओ हर सेवो हर हृदय बसावो, हर पाया सत्संगा। ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम, सुख पाए मुख मंगा। प्रयो अपना गुर बसर दीना, पोगो पोग निसंगा। निरपो पै नानक पौ मिटिया, हर पायो पाठंगा। सारंग महला पंजवा, हर जियो के दर्शन को कुर्बानी। बचन नाद मेरे श्रवनो पूरे, देहा प्रय अंक समानी। रहाओ सूटर ते गुर की सुहागन, हर पायो सुगुर सुजानी। जे कर मह बैसन नहीं पावत, सो थान मिलियो बासानी।

बल बल गुर दर्शाया, कहो नानक काहू परवाह, जो सुख सागर में पाया। सारंग महला पंजवा, मेरे मन शब्द लगो गुर मीठा, खुलियो कर्म पयो।

सगल कूफ मेरी लाते रहाओ। कृपा निधान गुण नायक ठाकुर सुख समूह सब नाते, एक आस मुझ तेरी स्वामी और द्वितीया आस बिराते। नैन तृप्ता से देख दर्शावा गुरकर तारे मेरे माथे, सहु नानक मैं।

आओ। सर्व सिद्ध कार्य सब सवरे अहंग रोग सगल ही खया कोट पराद खिन में खो भई है गुर मिल हर हर।

टाट लड़ावे सदा सदा अनदाई प्रतपाले बार की न्याई जैसे मात पिताई तिस बिन निमख नहीं रह सकिए बिसरना कब हूँ जाई। कहो नानक मिल संत संगत ते मगन पए लिवलाई सारंग मैला पंजवा अपना मीत स्वामी गाये आसना अवर काहू की कीजे सुखदाता प्रभ ध्याये रहाओ सुख मंगल कल्याण जिसे घर तिस ही शरणी पाये तिसे त्याग मानुष जे सेवो तो लाज लोन हो जाये एक ओट पकरी ठाकुर की गुर मिल मत बुद्ध पाये गुण निधान नानक प्रभ मिलिया सगल चुकी मोहताये सारंग महला पंजवा ओट सतानी प्रभ जियो मेरे दृष्ट ना लिया वो अवर

तेरा काट तिलक जो अपना कीनो नानक सुख कनेरा सारन महला पंजवा प्रभ सिमरत दुख विनाशी पयो कृपाल जी सुखदाता।

तब अरोग जब तुम संग बसतो छुटकत होए रवारे कवन बसेरो दास दासन को थाप्यो थापन हारे नाम न विसरे तब जीवन पाये बिनती नानक हे सारे सारंग मेला पंजवा मन ते पै पौ दूर पर आयो लाल दयाल गुलाल लाडले सहज सहज गुन गायो रहाओ गुर बचनात समात कृपा ते बहुर न कथु धायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वचल गृह पायो नाद विनोद कोड आनंदा सहजे सहज समायो करना आप करावन आपे

पैमान अपने पैताना अपने ही पै अर्था किन्ही राज जोबन तन मिलखा किन्ही बाप महतारी सर्व थोक नानक गुर पा।

मिथ्या राज जोबन अर उमरे मीर मलक अर खान मिथ्या कापर सुगंध चतुराई मिथ्या पोजन पान दीन बंदरो दास दासरो संते की सारान मांगन मांगो हुए अचिंता मिल नानक के हर प्राण सारंग महला पंजवा अपनी इतनी कछु न सारी अनेक काज अनेक तावरता उर्जियो आन जंजारी रहाओ ज्योस चार के दिशे संगी उहा नाही जह भारी तिन स्यों राज मात हित लायो।

देवन हार बिसारे अंदुले जो ससरी उदर भरे बह हाथुले साध बिकार बिकार झूठ रस जै जानो तै वीर बातली कहो नानक समझ रे आने आज काल खुले तेरी गांठली सारंग महला पंजवा गुरजियो संग तुहारे जानियो कोट जोत ओआ की बात न पुछिए ता दरगे भी मान्यो रहाओ कवन मूल प्राणी का कहिए कवन रूप दृष्टानियो

जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान जन का संग पाये वडभागी नानक संतन कै कुर्बान सारंग महला पंजवा करो गत दयाल संतो मोरी तुम समरथ कारण करना तूटी तुम ही जोरी रहाओ जन्म जन्म के बिकी तुम तारे सुमत संग तुम

कहो नानक जिन जगत ठगाना सो माया हर जन ठागी। सारंग महला पंजवा अब जन ऊपर को ना पुकारे पुकारन को जो उदम कर।

संताप मित्र सत्र पेख समत विचार्यो सगल संबाखन जाप तपत बुझी शीतल आघाने सुन अनहद विषम पै विषमाद अनद भया नानक।

तिस गुर कह जाइए बलिहारी, सदा सदा हो वारिया रहाओ। गुर का नाम जपियो दिन राती, गुर के चरण मन धारिया।

सिमरत नाम प्राण गत पावे, मिटे कलेश त्रास सब नासे, साध संग हित लावे रहाओ। हर हर हर हर मन आराधे, रसना हर जस गावे, तज अभिमान काम क्रोध निंदा, वासुदेव रंग लावे। दामोदर दयाल आराधो गोविंद।

आन उपाव त्याग जन सगले चरण कमल रिद धारे प्राण आधार मीत साजन प्रभ एक है एकंकार सबते ऊंचे ठाकुर।

मन बाशत फल पाओ सहु नानक लाभ लहा ले चालो सुख से ती कर जाओ सारंग महला पंजवा ठाकुर तुम शरण आई आया।

अनद अनद गुण गाया बाँ पकड़ कदली ने अपने ग्रह अंधकूप ते माया कहो नानक गुर बंधन काटे बिछरत आन मिलाया। सारंग महला पंजवा हर के नाम की गत ठांडी वेद पुराण सिमरत साधु जन खोजत खोजत काढ़ी रहाओ शिव ग्रंथ अर इंद्र।

देश सगल अप्याओ सारंग मेला पंजवा होती नहीं कमन कछ करनी यह ओट पाई मिल संते गोपाल एक की सरणी रहाओ पंच दोष छिदर या तन में दिखे ब्याद की करनी।

मन बांछत चितवत नानक दास तेथ जीवा प्रव चरणी सारंग महला पंजवा सीके हर के नाम बिन साध अमृत रस कीर्तन हर गाय है।

अच तन वन जो सच तन संचो कबू न आवो हारे खास खर्चत किछ निखुटत नाही अगनत परे पनारे कहो नानक शोभा संग जावो पार ब्रह्म कह द्वारे सारंग मैला पंजवा प्रभ जी मोहे कवन अनाथ बिचारा कवन मूल ते मानुष करया के ऊपर ताप तुहारा रहाओ जी प्राण सर्व के दाते गुण कहे न जाए।

जियो प्राण आधार तेरा, तूने थावे थाओ सास सास संभाल हर हर, नानक सद बल जाओ सारंग महला पंजवा, बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ, मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ, उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी, मया करो भगवान आवत जात दो पख पूरन, पाये सुख विश्राम सोदत सोदत तत विचार्यो, भगत श्रेष्ठ पूरी कहो नानक इक राम नाम बिन, अवर सगल विद उरी सारंग महला पंजवा, साचे सतगुरु दा तारा दर्शन देख सगल दुख नाते, चरण कमल बलिहारा।

गाओ। अगम अगोचर मित नहीं पाये, सगल कटा आधार नानक वाहो वाहो कहो ताको, जाता अंत न पार। सारंग महला पंजवा, गुर के चरण बसे मन मेरे, पूर रहो ठा

कहत सुनत किछ शांत ना उपजत बिन विश्वास क्या देखा प्रभु त्याग आन जो चाहत ता कै मुख लागे का लेखा जा कै रास सर्व सुख स्वामी आन न मानत देखा नानक दर्श मगन मन मोहयो पूरन अर्थ विशेखा सारंग महला पंजवा सिमरन राम।

जन्म मरण संकट ते छूटे, जगदीश भजन सुख ध्यान, तेरी शरण पूरन सुख सागर, कर कृपा देवो दान, सिमर सिमर नानक प्रभु जीवे, दिल जाए अभिमान, सारंग महला पंजवा, तूरत सोई जे तुर को लागे, सोई तुरंतर सोई बसंदर, हर एक

मन तन राम को व्यवहार, प्रेम भगत गुण गावत गी दे, होहत ने संसार रहाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी, एहो साध को आचार, चरण कमल अस्थित हृदय अंतर, पूजा प्राण को आधार। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती, कृपा अपनी धार, नाम निधान उचरो नित रसना, नानक सद बलिहार। सारंग महला पंजवा, हर के नाम हीन मत थोरी, सिमरत नाहीं श्री कर ठाकुर, मिलत अंध दुख को।

पूरन परमानंद मन मीठो तिस बिन दूसर नाहे। जप तप संजम कर्म सुख साधन तुलना कछु लाहे। चरण कमल नानक मन भेद्यो चरण संग समाए। सारंग महला पंजवा मेरा प्रभ संगे अंतर जामी। आगे कुशल पाछे खेम सूखा।

दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत तोए। सारंग महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए, करो कृपा गोपाल बीठले बिसर ना कभी जाए रहाओ। मन तन तन सब तुमरा स्वामी आनना दूजी जाए, जो तू राखे तिव ही रहना तुमरा पैने खाए। साध संगत के बल

हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख बंजन तेरे संत की रावार।

पूरन होत न कथो बातें अंत प्रतिहार रहाओ। सांत सुख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार, आप पर का कछ न जाने काम करो दे जार। संसार सागर दुख व्यापियो दास ले वो तार। चरण कमल

नानक जोन प्रवीण गोविंद बिसरे कवन दुख गनिया सुख नानक हर पद चीन सारंग महला पंजवा मायरी चरने ओट गही दर्शन पेख मेरा मन मोहयो।

अपना प्रभ त्याए, रतन जन्म अपार जीतियो, बौड़ जोन ना पाए, पय कृपाल दयाल गोविंद, पया साधु संग, हर चरण रा

मानो द्वितीया पाओ सब लुहराओ त्याग गोपाल और जो करना ते बिखिया के कुहु दर्श प्यास मेरा मन मोयो काडी नरक ते तू संत प्रसाद मिलियो सुखदाता बिनसी हो मैं हूँ राम रंग राते दास नानक मौलियो मन तन जूहू सारंग महला पंजवा।

पंजवां हर के नाम की मत सार हर विसार जो आन राचे मिथन सब विस्तार रहाओ साध संगम पज स्वामी पाप होवत खार चरनार

गोविंद गुप्त होए रहो न्यारो, मत अंग मत अहंकार, कर कृपा प्रभ संत राखे चरण कमल आधार, कर जोर नानक शरण।

लोभ त्यागे गुरु गोपाल पय कृपाल लबद अपनी पाई दिन से परम मोह अंध टूटे माया के बंद पूरन सर्वत्र ठाकुर ने को बेराई स्वामी सो प्रसन्न भये।

सेवक पै दूर करन कलमल दोख जाले, कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते, राम राम सार भूत नानक तत बिचारे, सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग।

कास्यो न्यो लगाई, जो दिसे सो सगल विनाशे, ज्यो बादर की चाही, तज अभिमान शरण संतन गयो, मुक्त हो है छिन माही, जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने भी नाही, सारंग महला नावा, कहा नर अपनो जन्म गवा।

सौ जन मुक्ता राम भजन चितलावे सारंग महला नावा मन कर कबहू ना हर गुण गायो विख्या सक्त रहो निस्बासुर कीनो अपनो भायो रहाओ।

सुन सजनी दूत मोए बिखाई जब की उपजी तब की तैसी रंगुल भई मन भाई सहज समाद सदा लिव हर्ष्यों जीवा हर गुण गाई गुर के शब्द रता बैरागी निज कर ताड़ी लाई सुद रस नाम।

कोट कल्प के दुख विनाशन साथ दृढ़ाए निवेरा रहाओ। क्रोध निवार जले हो ममता प्रेम सदा नौ रंगी। अनपौ बिसर गए प्रवजाच्या हर निर्माइल संगी। चंचल मत त्याग पौ पंजन पाया एक शब्द लिव लागी। हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल ले बढ़ पागी। अमृत सिंच भय सुबर सर गुरमत साच ने आला। मन रत नाम रते में केवल आज जुगा दयाला। मोहन मोय लिया मन मोरा बदे पाग लिव लागी। साच विचार किल विक दुख काटे मन निर्मल अनरागी।

शब्द लिवलाई सारंग महलाती जा। मन मेरे हर की अकथ कहानी हर नदर करे सोई जन पाए गुरमुख विर ले जानी रहाओ। हर गहर गंभीर गुणी गहीर गुर के शब्द पछानिया बहुविध कर्म करें पाए दूजे बिन शब्द बहुरानिया। हर नाम नाम है सोई जन निर्मल फिर मेला मूल।

अगम अगाध सुनो जन कथा, पार ब्रह्म की अचरज सभा रहाओ। सदा सदा सतगुरु नमस्कार, गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन पीतर होवे प्रगास, ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश। मितना ही जा का विस्तार, सो बाता की अप

का दाता कट कट पूरन है अलपाता कट कट पूरन कर विस्थीरन जल तरंग ज्यों रचन किया हब रस माने भोग कटाने।

सा अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थन अंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह न सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोहे।

ब्रह्मे अंत ना जानिया गुरमुख नानक नाम पछाणिया पौड़ी आपे आप निरंजना जिन आप उपाया आपे खेल रचाय उन सब जगत सवाया त्रै गुण आप सिरजियन।

करे मनमुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मनमुख दूजा परम है दूजे लोभाया कूड़ कपट कमाम दे कूड़ो अलाया पुत्र कलत्र मोहित है सब दुख समाया जम दर बदे मारिये परम है परमाया मनमुख जन्म गवाया नानक हर भाया श्लोक महला दूजा जिन वडे आई तेरे नाम की तेरते मन माहे नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे नानक अमृत मने माहे पाई है गुर प्रसाद तिन्नी पीता रंग स्यों।

मूर्ख अंधिया अंधी तात, कह को कहन कहाएन आप, महला पहला आखन औखा सुनन औखा, आख ना जाती आख, एक आख आखे शब्द पाखे, अर्ध उर्द दिन रात, जे क्यों होए ता क्यों दिसे, जाते रूत ना जात, सब कारण करता करे, कट औकट कट थाप, आखन औखा नानका, आख ना जापे आख पौड़ी, नाई सुनिए मन रहसिए, नामी शांति आई, नाई सुनिए मन तृप्तिए, सब दुख गवाई, नाई सुनिए ना उपजे, नामी वड्याई, नामे ही सब जात पत, नामे गत पाई, गुरुमुख नाम ति आई है, नानक लिव लाई, श्लोक महला पहला, झूठ न रागी झूठ न वेदी, झूठ न चंद सूरज की पेदी, झूठ न अन्नी झूठ न नाई, झूठ न मियो वरे है सब थाई, झूठ न तरती झूठ न पानी, झूठ न पौने माई समानी, नानक निगुरे

पौड़ी नाय मने दुर्मत गई मत प्रगति आया नाव मने हो मैं गई सब रोग गवाया नाय मने नाम उपजे सहजे सुख पाया नाय मने सांत उपजे हर मन वसाया नानक नाम रतन है गुरमुख हर त्याया श्लोक महला पहला और शरीक होवे कोई तेरा तिस अग्गे तुद आखां तुद अग्गे तुदे सलाही मैं अंधे नाउ सुजाता जेता आखण साही सबदी पाख्या पाए सुवाई नानक बहुता एहो आखण सब तेरी वड्याई महला।

फूल बोल बोल पौकना चूका धर्म विचार जिन जीवन दे आपक नहीं मोया मंदी सोए।

जो उस इच्छे सो फल पाए। ता नानक कही है मूरत पौड़ी, सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सोल है गुर शब्दी मिलिया, सतगुर के पाने जो चले हर से पीर लिया, जमकाल जो न सकई कर चानन बलिया, नानक बख्श मिलायन फिर गर्व न गलिया। श्लोक महला पहला, सच वर्त संतोष।

रूप इतना नाद ना वेद ना गी रस रस तक ना जानंत इतना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर असल।

प्राप्त होए। नानक हो बलिहारी तिनको जिन हर मन वस्या सोए पौड़ी। आस करे सब लोक बहु जीवन जानिया, एक जीवन को चित गढ़ मंडप संवारिया। बलवंश कर उपाव माया हिर आनिया, जमकाल निहाले सास आव कटे बेतालिया। नानक गुर शरणाई उबरे हर गुर रखवालिया। श्लोक महला तीजा, पर पंडित वाद वखान दे माया मोह सुआए। दूजे पाए

वस्त पराए आप गर्व करे, मूर्ख आन गणाए, नानक बिन बूझे किने न पायो, फिर आवे जाए महला तीजा, मन आनंद भया।

फूल न हो गई। नाम वसे मन आए बिन नामे जे होर खाना, चित रोग लगे तन खाए। नानक रख सब सलाहना, आपके ले मिलाए महला तीजा। जिया अंदर जियो स

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार। गुरुमुख जिना शब्द मन वसे, दर गए मोख द्वार। नानक आपे मेल ले, आपे बख्शन हार। महला चौथा नानक जिस

मां हर गुरुमुख नाम दे आए दुख पुख काना सब चुकाए सी न्यू उठा छे बरलाए सब तरत पाई हरियावली अनजमिया बोहल लाए हर अचिंत बुलावे कृपा कर हर आपे पावे थाए हर तिसे त्यावो संत जनों जो अंते ले चलाए हर कीर्त पगत आनंद है सदा सुख वसे मन आए जिना गुरुमुख नाम आराध्या तिना दुख दुख ले जाए जन नानक तृप्त है गाए गुण हर दर्शन देहो सुभाए पौड़ी गुरु पूरे की दात नित देवे चढ़े सवाइया तुस देवे आप दया।

आप छोड़ शरणाए पवै मन ले रजाए। गुरुमुख जम डंड ना लगे हों मैं विचों जाए, नानक सेवक सोई आखिए जे सच रह लिवलाए महला तीजा। दात जोत सब

गुरबचनी मन मानिया हर वर नार तई सोहागण मन तन प्रेम सुखानिया अवगन त्याग तई बैरागण अस्थिर वर सोहागरी सोग विजोग तिस कदे ना व्यापे हर प्रभ अपनी कृपा करी आवन जान ही मन में चले पूरे गुर की ओट गही नानक राम नाम जप गुरमुख तन सुहागन सच सही मलार महला पहला साची सुरत नाम नहीं तृप्ते हों मैं करत गवाया।

का नाम न भाया, रतन पदार्थ पर हर त्या गया, जग को तप ही आया, जिसका कीत पे उतही ते उतही मन समाया, अधिक स्वाद रोग अधिकाई।

गुरमत नाम आधारो मुक्त पाई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पट पाई नानक राम नाम हृदय अंतर गुरमुख मेल मिलाई महला पहला मल्हार पर दारा पर तन पर लोबा हों मैं बिछै बिकार दुष्ट पाओ तज निंद पराई काम क्रोध चंगार महल में बैठे अगम अपार पीतर अमृत सोई जन पावे जिस गुरु का शब्द रतन आचार।

दुख सुख दोषम कर जाने बुरा पड़ा संसार, शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाये, सत्संगत गुर प्यार, एन सलाहा हर नाम प्राप्त, गुरदाता देवनहार, गुरमुख सुख सोई जन पाए, जिसनो नगर करे करतार, काया महल मंदिर कर हरता, तिसमें राखी जोत अपार, नानक गुरमुख महल बुलाये।

मानसता तल तब मैं सासे सास दे काया तल पाए ताके पाछे कोई न खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूटे से साचे नाए मलार महला पहला दुख महुरा मारन हरना।

हूँ मैं शब्द जलाए, सच्ची भगत करें दिन राती सच रहे लिवलाए, सदा सच हर वेख दे गुर के शब्द सुभाए, मन रे हुक्म मन सुख होए प्रभ पाना अपना भावदा, जिस बच्चे तिस बिघन ना कोई रहाओ, त्रै गुण सबा तात है ना हर भगत ना भाए, गत मुक्त कदे ना हो वही हो मैं कर्म कमाए, साहिब पावे सो थिए तय किरत फिराए, सतगुरु तोतिए मन मर रहे हर नाम वसे मन।

तुम्हारे जम काल गुरमत सत्संगत ना बिछड़े अंधन नाम समाल सबना करता एक तू नित कर देखे विचार एक गुरमुख आप मिलाया बक्षे पलक पंडार तू आपे सब किस जानदा किस आगे करी पुकार हर हर नाम अमृत है नगरी पाया जाए हम दिन हर हर उचरे गुर के सह सुवाए नानक नाम निधान है नामे ही चितलाए मल्हार महला की जाए गुर सावाही सदा सुख दाता।

एक को एक बसे मन स्वामी, दूजा और न कोई, एक को नाम अमृत है मीठा, जग निर्मल सब सोई, नानक नाम प्रभु ते पाया, जिनको तुर लिखिया होई, मलार महला तीजा, गण गंधर्व नामे सब उदरे, गुर का शब्द विचार, हों मैं मार सब मन वसाया, हर राख्या उधार, जिसे बुझाए सोई बुझे।

सबद सुख अंतर सदा निभय तेरे आल राव। मन मुक्ता खंड कदे न चूके दूजे पाए दुख पाए नाम विसार दिखिया मन राते बिरथा जन्म गवाए ए वेला सुर हाथ न आवे अंदिन सदा पछताए मर मर जन्मे कदे न बूझे विस्ता मय समाए गुरमुख नाम रते सेव दुरे गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम त्यार।

एक बिन मैं और ना जाना, सतगुरु दिया बुझाई, मन मेरे नाम रहो लिवलाई, अदिष्ट अगोचर अपरंपर करता, गुर के शब्द

इहो हुकुम कर श्रेष्ठ उपाय गुर प्रसादी बुजो भाई सदा रहो हर की शरणाई। सो पंडित जो तिहा गुणा की पंड उतारे अन दिन एको नाम बखाने।

वेद की फिरकूक न होए, मलार न लाती जा। परम परम जोन मन मुख परमाई, जम काल मारे नित पत गवाई। सतगुर सेवा जम की काम चुकाई, हर प्रभ मिलिया महल कर पाई। प्राणी गुरमुख नाम ध्याए, जन्म पदार्थ दुविधा खोया। कौडी बदले जाए रहाओ, कर कृपा गुरमुख लगे प्यारे। अंतर पग पे हर हर उधार, पव जल शब्द लंघावन हार। दर साचे गुस्से सचार, बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया। बिन गुर परम पूले बहुमाया, हों में ममता बो मोह वधाया। दूजे पाए मन मुख दुख पाया, आपे करता अगम अथाहा। गुर शब्दी जपिए सकलाहा, हाजर हजूर हर वे परवाहा। नानक गुरमुख नाम समा

तुन जम के सब लागो पाए। हौ जीवा सदा हर के गुण गाई, गुर का शब्द महारस मीठा, हर के नाम मुक्त गत पाई रहाओ। माया मोह अज्ञान।

रसना नाम सब कोई कहे, सतगुरु सेवे का नाम लहे, बंधन तोड़े मुक्त कर वह, गुर शब्दी अस्थिर कर गह, मेरे मन काहे रोष करी जाय, लाहा कलज गुराम नाम है, गुरमत अंदन हृदय रवी जाय, रहाओ बाबी हाँ खिन खिन दिल लाए, बिन फिर देखे नींद न पाए, यो विछोड़ा सहा न जाए, सतगुर मिले का मिले सुवाए, नाम ही दिन से दुख पाए, तृष्णा जलिया पूख

सब आशा मनसा बंधन टूटे, हर हर प्रभु कृपा धारी, नैनी हर हर लागी तारी, सतगुरु देख मेरा मन बिगस्यो। जन हर पेट्यो बनवारी रहाओ, जिन ऐसा नाम विसारिया मेरा हर हर, तिस्ते कुल लागी गारी, हर तिस्ते कुल प्रसूत ना करियो, तिस विधवा कर मैं तारी, हर हर आन मिलावो गुर साधु, जिस एनस हर उर्धारी, गुर दीठे गुर का सुख बिगसे, ज्यों बारक देख मैं तारी, तम फिर का एक ही संगवासा।

किल विच नैल परे परे हमरे विच हमरी नैल साधु की तूर गवाई तीरथ असठ मज्जन नाई सत संगत की तूर परी उड़ नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ जहर नवी तपे पागी रथयानी केदार थाप्यो महसाई काशी कृष्ण चरावत गाऊ मिल हर जन शोभा पाई जितने तीरथ देवी थापे सब कितने लोचे तूर साधु की ताई हर का संत मिले गुरु।

साधु तूर दे हर पार लंघाई मल्हार महला चौथा किस जन को हर मीठ लगाना जिस हर हर कृपा करे उसकी भूख दुख सब उतरे जो हर गुण हर उतरे जप मन हर हर हर निस्तरे गुर के बचने करण सुन दियावे अव सागर पार करे रहाओ किस जन के हम हाथ बिहाजे जिस हर हर कृपा करे हर जन को मिलिया सुख पाए सब दुर्मत मेल हरे हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्त जा हर गुण बिचरे हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरे जिन ए प्रीत लाई सो जाने तो जाने जिस मन धरे जन नानक हर देख सुख पावे सब तन की भूख करे।

ब्रह्म बिंदु से सतगुरु कहिए हर हर कथा सुनावे उस गुरु को छादन पूजन पाठ पतंबर बहुबुद्धि सत कर मुख संचो तुस पुन की सिर कोटनावे सतगुरु देव प्रतक हर मुहूर्त जो अमृत वचन सुनावे नानक पाग पले तुस जन के जो हर चरणी चित लावे मल्हार महला चौथा जिनका हियो रह बसियो मेरा सतगुरु ते संत पले पल पांत तिन देखे मेरा मन बिगसे हों तिन कै सद बल जांत ज्ञानी हर बोलो दिन रात तिन की तृष्णा पूप सब उतरी जो गुरमत राम रस्थांत रहाओ हर के दास साध सखा जन जिन मिलिया लह जाए प्रांत जो जल दूध पिन पिन का दे चुन हंसला त्यों देही ते चुन का दे साधु हों मैं तात जिनके प्रीत नाही हर हृदय ते कपटी नर नित कपट कमात तिनको क्या कोई देख वाले वो आप बीज आते ही खाते हर का चिन्ह सोई हर जन का हर आपे जन में आप रखाते तन तन गुरु नानक समदर्शी जिन निंदा उस्तत परित्रांत मलार महला चौथा अगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वड पागी संग साधु पार पया मेरे मन अन दिन अंध भया।

0: किन संगत हर मेलो करमया, किन का दर्श देख सुख पाया, दुखों में रोग गया, जो अनदिन हृदय नाम दियावे, सब जन तिना का सफल भया, ओए आप करे सुष्ट सब तारी, सब कुल भी पार पया, तुद आपे आप उपाया सब जग, तुद आपे वश कर लया, जन नानक तो प्रभु कृपा धारी, दिख दुखदा ताब लया।
1: मल्हार महला चौथा। गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया, कृष्णा भूख न जाई, मन मुख मूड जलत अहंकारी, हूं मैं विच दुख पाई, आवत जात बिरथा जन्म गवाया, दुख लागे पछताई, जिसते उपजे तिसे न चेते, त्रिग जीवन त्रिग खाई, प्राणी गुरमुख नाम दे आई, हर हर कृपा करे गुर मेले, हर हर नाम समाई रहा, मन मुख जन्म भया है बिरखा, आवत जात लजाई, काम क्रोध डूबे अभिमानी, हों मैं विच जल जाई, तिन सिद्ध न बुद्ध भई मत मदन, लोभ लह दुख पाई, गुर बिहून महा दुख पाया, जम तकरे दिल लाई, हर का नाम अगोचर पाया, गुरमुख सह सुभाई, नाम निधान वस्या घट अंतर।

मिल साध संगत हर तोर रहाओ। हर तन बनजो हर तन संचो, जिस लागत है नहीं चोर। पात्रक मोर बोलत दिन राती, सुन कन हर की कोर। जो बोलत है मृग मीन पंखेरु, सो बिन हर जापत है नहीं होर। नानक जन हर कीरत गाई, छूट गयो जम का सब सोर। मलार महला चौथा, राम राम बोल बोल खोजते बड़ पागी। हर का पंथ को बतावे, हौंपा कह पाए लागी। रहाओ हर हमारो मीत सखाई, हम हर स्यों प्रीत लागी। हर हम गावे हर हम बोले, और दुतिया प्रीत हम त्यागी। मन मोहन मोरो प्रीतम राम, हर परमानंद बैरागी। हर देखे जीवत है नानक, एक निमत पलो मुख लागी। राग मल्हार महला पंजवा, चौथ दे कर पहला इको अंकार। सतगुरु प्रसाद, क्या तू सोचे क्या तू चितवे, क्या तू करे उपाय। ताको कहो परवाह कहो।

खीर आधार बारक जब होता बिन खीरे रह न जाई सार संभाल माता मुख नीरे तब हो तृप्त अघाई हम बारक पिता प्रभु दाता फूले बारक अनेक लख बरिया अनठौर नाही जय जाता रहाओ चंचल मत बारक बपरे की सर्प अग्न कर मेले माता पिता कंठ लाए राखे अनद सहज तब खेले जिसका पिता तू है मेरे स्वामी इस बारिक भूख कैसी नव निध नाम निधान गृह तेरे मन बाचे सो लैसी पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारिक मुख मांगे सो देना नानक बारिक दर्श प्रभ चाहे मोहि हृदय बसे नित चरना मलार महला पंजवा सगल विधि जुर आहर करया सजियो सगल अंदेशा कार्य सगल अरम्भियो करका ठाकुर का भरोसा सुनिए बाजे बाज सुहावी पोर पया मैं प्रेम मुख पेखे गृह मंगल सुहलावी रहाओ मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संता जाए खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो पगत करो निर पाए जब प्रेय आए बसे गृह आसन तब हम मंगल गाया मीत साजन मेरे पहे सुहेले प्रभु पूरा गुरु मिलाया सखी सहेली पहे आनंदा गुर कार्य हमरे पूरे कहो नानक वर मिलिया सुखदाता छोड़ न जाई दूरे मलार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर को पर ते कृपा निध छोड़ आम को पूजे आत्म का ती हरते हर बिसरते दुख दुख मरते अनेक बार प्रमे बहु जोनी एक न काहू तरते रहा।

करते नानक शरण चरण कमलन की तुम ना डारो प्रभ करते राग मलार महला पंजवा दुख दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी हूँ एक खिन तिस बिन रह ना सको प्रीत हमारी लागी रहाओ उनके संग मोहे

कृपाल पै बड़ पागी महा सुख पाया बर न पाको रेन नानक जन पागी मल्हार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई सगल सहेली सुख पर सूती जे कर लाल बसाई रहाओ मोहे अवगन प्रभु सदा दयाला मोहे निर्गुण क्या चतुराई करो बराबर जो प्रेम संग राती ए हो मैं कीती ठाई तई निमाणी शरण इकता की गुरु सब गुरु पुरख सुखदाई एक निमख में मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रहन बिहाई मल्हार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल न लाओ बरस प्यारे मने सदारे होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ।

तो तत शोभा तले अचारे मल्हार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम ध्याए दुख दर्द बिन सह पर सागर गुर की मूरत हृदय बसाए रहाओ दुश्मन हते दुखी सब व्यापे हर शरणाई आया राखन हारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलवित सब काटे नाम निर्मल मन दिया गुण निधान नानक मन वस्या बहुर दुख ना थिया मल्हार महला पंजवा प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्रेम भगत अपनो नाम दीजे दयाल अनुग्रह तारे रहाओ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आशा संत जना तह करो बिनंती मन दर्शन की प्यासा बिछड़त मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजे नाम आधार जीवन तन नानक प्रभु मेरे कृपा कीजे मल्हार महला पंजवा अब अपने प्रीतम स्यों बने आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाओ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नवे निद पाई उदोत पयो पूरन पावी को पेटे संत सहाय सुख उपजे दुख सगल विनाशे पार ब्रह्म निवलाई करो संसार कथन पै सागर हर नानक चरण ध्याई मल्हार महला पंजवा तन हर बरस सगल जग छाया तय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहा।

मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया। मलार महला पंजवा विचरत क्यों जीवे ओए जीवन चितें उलास आस मिलवे।

हुए मर जाही मन तन रव रहा जगदीशर देखत सवा हजूरे नानक रवयो सब अंतर सब रहा पर पूरे मल्हार महला पंजवा हर कै भजन कौन कौन न तारे खग तन मीन तन मृग तन ब्राहा तन साधु संग उदारे रहाओ देव कुल दैत कुल जग किन्नर नर सागर उतरे पारे जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बिदारे काम क्रोध महा बिखिया रस इनते पै निरारे दीन दयाल जपे करुणा में नानक सद बलिहारे मलार महला पंजवा आज मैं बैस्यो हर हाट नाम रास सांझी कर जनस्यो जाऊ न जम कै काट रहा।

तीन दुख पंजन आप लिए लड़ लाई, हर की ओट जीवे दास तेरे, नानक प्रभ शरणाई। मल्हार महला पंजवा, मन मेरे हर के चरण रवीजै, दर्श प्यास मेरो मन मोयो, हर पंख लगाए मिली जय रहाओ, खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय, पार अनग्रो स्वामी मेरे, नाम महारस पी जय। त्राहे त्राहे कर सरनी आए, जल को कृपा की जय, कर गह लिहो दास अपने को, नानक अपनों की जय। मल्हार महला पंजवा, प्रभ को भगत बछल बिरदायो, निंदक मार चरण तल दीने, अपनो जस वरतायो रहाओ। जय जयकार कीनो सब जग में, दया जीवन में पायो, कंठ लाए अपनो दास राख्यो, ताती वाओ न लायो। अंगीकार कियो मेरे स्वामी, प्रम को मेट सुखायो, महा आनंद करो दास हर के, नानक विश्वास मन आयो। राग मल्हार महला पंजवा, चौप दे कर दूजा इको अंकार, सतगुर प्रसाद। गुरुमुख दीसे ब्रह्म प्रसार, गुरुमुख त्रै गुणिया विस्तार, गुरुमुख नाद वेद विचार, बिन गुर पूरे कोर अंधार। मेरे मन गुर गुर कर सदा सुख पाये, गुर उपदेश हर हृदय वस्यो, सास गिरास अपना खसंत्याय रहा।

गुर पेटे ना हुए जोन अवतार, गुर की सेवा सो जन पाए, जा को कर्म लिखिया तुर आए। गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सतगुर शरणाई, नानक गुर पार।

भगवान सदा सदा जाइए कुर्बान, काल गवाया करते आप सदा सदा मन किसनो जाप, दृष्ट तार राखे सब जंत गुण गावो नित नित भगवंत, एको करता आपे आप हर के भगत जाने प्रताप, नावे की पैज रखदा आया नानक बोले तिसका बोलाया, मलार महला पंजवा गुर शरणाई सगल निधान, साची दरगे पाये मान, प्रम को दुख दर्द सब जाए साध संग सब हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा सालाए नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाए रहाओ सत गुर जेवड़।

सो मन निर्मल जो गुर संगराची गुर पूरा पाये वडवाग काम क्रोध लोभ मनते त्याग कर कृपा गुर चरण निवास नानक की प्रभु सत अरदास राग मला।

नानक प्रयोग प्रीतम किया मलार महला पंजवा मन कने प्रमय बने उमक तरस चाले प्रभ मिलबे की चाह रहाओ त्रै गुण माई मोह आई कहो बेदन काहे आन उपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे हज शरण साधु नानका मिल गुण गोविंद गाहे मल्हार महला पंजवा त्रै की शोभ सुहावनी नीकी हा हा हु गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललित गुण अनक भांत बहुविध रूप दिखावनी नीकी गिरतर थल जल पवन परपुर कट कट लालन छावनी नीकी साध संग रमैया रस पायो नानक जा कै पावनी नीकी मल्हार महला पंजवा गुर प्रीत प्यारे चरण

कमल रिद अंतर धारे रहाओ दर्श सफलियो दर्श पेखियो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे विषम विषम विषम भई अब कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही सब एक तू ही एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक शरण दुआरे मलार महला पंजवा बरस सरस आज्ञा होहे आनंद सगल पाग रहाओ संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग कन कोर प्रीत मोर चित चात्रिक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोहो त्याग माया तो हो मिल संत नानक जागया मल्हार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ के संग हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत पार ब्रह्म पै दयाल बिनस गए बिखे जंजाल सात जना के चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत मल्हार महला पंजवा कन गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण शरण तरण सागर तुन अनहता रस बैन पथिक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभु देन।

लाए शास्त्रिक जल बिन प्रयो प्रयो तेरे बिल करे बिल लाए कम हर कोर दसो दिस बरसे बिन जल प्यास न जाए मीन निवास उपजै जल ही ते सुख दुख पूर्व कमाए खिन तिल रह न सके पल जल बिन मरण जीवन तिस ताई तनवाडी तिर देश निवासी सच्चे गुर पै शब्द पठाई।

गुर प्रसाद कर ही फिर पाया, कौ नानक तपत बुझाई, मलार महला पहला, जागत जाग रहे गुर सेवा, बिन हर में को नाही, अनेक जतन कर रहे न पावे, आच पाच टर पाही, इस तन तन का कहो गर्भ कैसा, बिन सत बार न लागे बवरे, हो मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहा।

दक्षिण ताई नदी उपकंठ जैसे कर करवर सर्पन कर करवाही उल्टी नदी कहाँ कर करवर सर्पन डसे दूजा मन माही गरुड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी बिख्या गुरमत जारी मंथन हेम पे सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाते तू सर्व जिया दयाला तुमरी शरण परे पत राखो साच मिले गोपाला बादी तंग अंग नहीं सूजे बदिक कर्म कमावे सतगुरु मिले ता सूजस बूजस।

शास्त्रिक मीन जल ही ते सुख पावे, सारिंग सबद सुहाई, रैन बबीहा बोलियो मेरी माई, रहाओ त्रैस्यो प्रीत न उल्टे कबहू, जो ते पावे साई, नींद गई हो मैं तन फाकी, सच मत हृदय समाई, रूखी बिरखी उदो पूखा, पीवा नाम सुवाई, लोचन तार ललता बिललाती।

जुर कैसव नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज कर वासा ते मगना चालनहार, जित कर वसे तू है बिद जाने बीजो महल न जाते, सतगुर बाजो समझ न होवी, सब जग दबिया छापे, करण तलाव करे बिलला तो बिन गुरु नाम न जाते, पल पंकज में नाम छड़ाए, जे गुर सबक सिंजाते, एक मूर्ख अंधे मुग्ध गवार, एक सतगुर के पै नाम आधार, साची बाणी मीठी अमृत धार, जिन पीती तिस मोख द्वार, नाम पै पाए हृदय वसाही, गुर

जो तुर लिखिया सो मेटना न जाए, हुक्मे बांदा कार कमाए, एक शब्द राचे सत समाए, चौ दिस हुक्म वर्ते प्रभु तेरा, चौ दिस नाम पतालं, सब में शब्द वर्ते प्रभु साचा, कर्म मिले बयालं, जामन मरना दी से सिर उबो, खुदया निद्रा कालं, नानक नाम मिले मन भावे, साची नगर रसालं, मलार महला पहला, मरण मुकत गत सार न जाने, कंठे बैठी गुर शब्द पछाने, तू कैसे आर फाथी जाल, अलख न जाचे हृदय समाल, रहाओ एक जी कै जी आखाही, जलत तरती बूढ़ी जलमाही, सर्ग जी की ए प्रतपानी, जब पकड़ी तब ही पछतानी, जब गल फांस पड़ी

मन मेरे हर हर नाम सितलाए, सतगुरु ते हर पाए साचा, हर स्यों रह समाए रहाओ। सतगुरु ते ज्ञान उपजे ता ए संसार जाए, सतगुरु ते हर बुझिए गर्भ जोनी नह पाए।

वेद बाणी जग वर्तदा त्रै गुण करे विचार बिन नावे जम दंड सहे मर्जन में वारो वार सतगुर पेटे मुक्त होए पाए मोक्ष द्वार मन रे सतगुर सेव समाए वड्डे भाग गुर पूरा पाया हर हर नाम ते आए रहाओ हर अपने पाने सृष्ट उपाय हर आपे दे आधार हर अपने भाने मन निर्मल किया हर स्यों लागा प्यार हर कै पाने

है। हर सिंह रहा समाये, मल्हार महल आती जा, अष्टपदी कर दूजा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद हर हर कृपा करे, गुर की कारे लाए, दुख पल्लर हर नाम बसाए, साची गत साचे चित लाए, गुर की बाणी शब्द सुनाए, मन मेरे हर हर सेव निधान, गुर कृपा ते हर तन पाई है।

नानक साचे साच समाए राग मल्हार छंत मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद। प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संग राते, जन संग राते दिन सराते एक निमख मनो ना विसरै। गोपाल गुण निध सदा संगे सर्व गुण जगदीसरै। मन मोह लीना चरण संगे नाम रस जन माते। नानक प्रीतम कृपाल सदहू किने कोट मदे जाते। प्रीतम तेरी गत अगम अपारे महा पतित तुम तारे। पतित पावन भगत वचल कृपा सिंध स्वामिया। संत संगे भजन संगे रहो सदा अंतर जामिया। कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे। नानक दर्श प्यास हर जियो आप लिहो समारे। हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना। जल मीन प्रभ जियो एक तू है पिन आन न जानिए। गह पूजा लेवो नाम देवो तो प्रसादी मानी।

आया बिनवंत नानक शरण तिनकी जिन्नी हर हर ध्याया। वार मलार की महला पहला राणी कैलाश तथा माल दे की तुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा गुर मिलिए मन रहसी है ज्यों उठे तरण सिगार शब्द से हरियावली सर करे सदर ताल अंदर रचे सच रंग ज्यों मंजी ठे लाल कमल विग से सच मन।

काल खुदया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल एनी अखी नदर न आवई जिचर शब्द न

तू लोड लहो जित वन्य रोगा कान जित दारू रोग उठिए तन सुख वसे आए रोग गवाए अपना का नानक वैद सदाए पौड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया ब्रह्मे दित्ते वेद पूजा लाया दस अवतारी राम राजा आया दैता मारे ताए हुक्म सवाया ईस महेश्वर सेव तिन्नी अंतना पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया दुनिया तन दै लाए आप छपाया।

करे नानक नगरी बाहरी सब करण पलाह करे पौड़ी सो हर सदा सरेवी है जिस तर्क न लागे वार आदाने आकाश।

गुरमुख पथ सों लेखा निबड़े बख्शे सिर पंडार ओथे हाथ ना पड़े कूक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुरु बेली हो।

लिवलाए, जो जल में कमल अलिपत है, ऐसी बंत बनाए, से सुखिये सदा सोने, जिन विच्चों आप गवाए, तिन सोग विजोग कदे नहीं, जो हर के अंक समाए।

आए सच्चा साहिब मन वसे ता मन चिंदिया फल पाए। नानक तिनका आखिया आप सुने जे लयन पन्ने पाए महला तीजा। अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार गुरमुख जिन्नी बुझिया हर अमृत रखिया उधार। हर अमृत पीवे सवा रंग राते होमे तृष्णा मार। अमृत हर का नाम है वरसे कृपा धार। नानक गुरमुख नगरी आया हर आत्म राम मुरार।

समाए अपना आप आप तोलसी आपे मिले मिलाए जिसकी कीमत ना पवे कहना किछु न जाए हों बलिहारी गुरे अपने जिन सच्ची बूझ दिती बुझाए जगत मुसे अमृत लुटी है मनमुख बूझ न पाए विन नामे नाल न चलसी जासी जन्म गवाए गुरमति जागे तिन्नी कर रखिया दूता का किछ न वसाए श्लोक महला तीजा बाबी हा ना बिललाए ना तरसाए इहो मन खसम का हुक्म मन नानक हुक्म मनिए तिख उतरे चढ़े चवगल वन महला तीजा बाबी हा जल में तेरा वास है जल ही माए फिरा है जल की सार न जान ही का तू कूकन पाहे जल फल चहो दिस वर्षदा खाली को ठाव ना है एते जल वर्ष दे तिख मरे ताग तिना के ना है नानक गुरमुख तिन सोजी पई जिन वस्या मन माहे पौड़ी नाथ जति सिद्ध पीर किने अंत न पाया गुरमुख नाम पियाए।

नील अनिल अगम सरजीत सवाया, अगन उपाई वाद पुख तिहाया, दुनिया कैसर काल दूजा भाया, रखे रखन हार जिन शब्द बुझाया। श्लोक महला तीजा, यो जल सब कै वसवा, वरसै पाए सुवाए, से बिरखा हरि आवले।

है अम तन बहुत उपजे जा सहो करे रजाए जित ठा दे मन तृप्ति है जिया जुगत समाए यो तन करते का खेल है कदे आवे कदे जाए ज्ञानिया का तन नाम है सब ही रह समाए नानक जिनको नदर करे ता यो तन पल्ले पाए पौड़ी आप कराए करे आप हों कैसों करी पुकार।

सब में एक वर्तदा। सिर सिर करे विचार, गुरमुख आप विचारी है, लगे सच प्यार, नानक किसनो आखी है, आपे देवन हार। श्लोक महला तीजा, बाबी हाँ इहो जगत है, मत को परम पुलाए, इहो बाबी हाँ पशु है, इसनो बूजन नाहे। अमृत हर का नाम है, जित पीते तिख जाए, नानक गुरमुख जिन पिया, तिन बहुर न लागी आए। महला तीजा, मनहार शीतल राग है, हर त्याय सांत

सो जन मुक्त सदा होए। पौड़ी सच्चा वे परवाहो इको तू धनी, तू सब किछ आपे आप दूजे किस गणी। मानस पूरा गर्भ सच्ची तुदमणि, आवा गौण रचाए उपाई मेदनी। सतगुर सेवे अपना आया किस गणी, जे हो मैं विच्चों जाए ताके ही गणत गणी। मनमुख मोह गुबार ज्यो पुल्ला मंजवणी, कट्टे पाप असंख नामे इक कणी। श्लोक महला तीजा, बाबी हा खसमे का महल न जाने, महल देख अरदास पाए। अपने पाने बहुता बोले, बोलिया थाए न पाए। खसम वड्डा दातार है, जो इच्छे सो फल पाए। बाबी हा क्या बपुड़ा, जग तै की तिख जाए। महला तीजा, बाबी हा किन्नी रैन बोलिया, सहजे सच सुभाए। यो जल मेरा जियो है, जल बिन रह न जाए। गुर शब्दी जल पाई है, विच्चों आप गवाए। नानक जिस बिन चसा ना जीवई, सो सतगुरु दिया मिलाए। पौड़ी खंड पताल असा

होई। इक राजे खान मलूक कहे कहा है कोई, इक सवा सदा है संत धन दूजे पट खोई। इक दाते इक मंगते सगना सिर सोई, बिना में बाजारिया पिहावल होई। कूड़ निखुटे नानका सच करे सो होई। श्लोक महला तीजा, बाबी हा गुणवंती महल पाया औ गुणवंती दूर। अंतर तेरे हर वसे गुरमुख सदा हजूर। कूक पुकार ना हो गई नदरी नदर निहाल, नानक नाम रते सहजे मिले शब्द गुरु कह काल। महला तीजा, बाबी हा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान। जल बिन प्यास न उतरे छुटक जाहे मेरे प्राण। तू सुखदाता बेअंत है गुणदाता निधान। नानक गुरमुख बस ले अंत बेली होए भगवान पौड़ी। आपे जगत उपाय कै गुण अवगुण करे विचार। त्रै गुण सर्व जंजाल है नाम न करे प्यार। गुण छोड़ अवगुण कमाऊं दे दरगे हुए खुआर। जुए जन्म तिन्नी हारिया कित आए संसार। सच्चे शब्द मन मारिया एनस नाम प्यार। जिन्नी पुरखी उर्धारिया सच्चा अलख अपार। तू गुण दाता निधान है असी अवगुण यार। जिस बच्चे सो पाए सी गुर शब्दी विचार। श्लोक महला पंजवा, रात न विहावी सापता जिना विसरे नाओ। राती दिन सुहेलिया नानक हर गुण गाओ। महला पंजवा, रतन जवे हर मान का हब्बे मणि मथन। नानक जो प्रभ पाया सच्चे दर सोहन पौड़ी। सच्चा सतगुर शेर सच समालिया अंत खलोआ आए जे सतगुर अग्गे कालिया। कोई न सके जमकाल सच्चा रखवालिया। गुरसाखी जोत जगाए दीवा बालिया। मनमुख विण नावे कूड़ियार फिर बेतालिया। पशु मानस चंप लेते अंदरों कालिया। सबो वरते सच सच्चे सगर निहालिया। नानक नाम निधान है पूरे गुर देखा लिया। श्लोक महला तीजा, बाबी है हुकुम पछाणिया गुर कैसे सुवाए। मेघ वर्षा दया कर गूड़ी छह बरलाए। बाबी है कूक पुकार रह गई सुख वसिया मन आए। नानक सोसा लाई है जे दिन दा सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा, चात्रिक तू ना जानही क्या तुद विच तिखा है कित पीते तिख जाए। दूजे पाए परम्या अमृत जल पल्ले ना पाए। नदर करे जे अपनी ता सतगुर मिले सुवाए। नानक सतगुर ते अमृत जल पाया सहजे रहा समाए पौड़ी। एक मन खंड बैसे जाए सदना दे रही। एक पाला चक्कर पान शीतल जल हे वही। एक पसम चढ़ा में अंग मैलना तो वही। एक जटा बिकट विकराल कुल कर खो वही। एक नगन फिरे दिन रात नींद ना सो वही। एक अग्नि जला में अंग आप विगो वही। गिणना में तन छार क्या कह रो वही। सोहन खसम द्वार जे सतगुरु से वही। श्लोक महला तीजा, बाबी हा अमृत वेले बोलिया तांदर सुनी पुकार। मेघ नो फुरमान होआ वर्षो कृपा कार। हौ तिन कै बलिहार ने जिन्नी सच रखिया उधार। नानक नामे सब हरियावली गुर कै शब्द विचार। महला तीजा, बाबी हा इव तेरी तिखा न उतरे जे सो करे पुकार। नदरी सतगुरु पाईए नदरी उपजे प्यार। नानक साहिब मन वसे विचों जाए विकार पौड़ी।
एक जैनी उजड़ पाए तुरो खुआया, तिन मुख ना ही नाम ना तीरथ ना आया, हथी सिर खुहाए ना पद कराया, कुचल वह दिन रात शब्द ना पाया, तिन जात ना पक्ष ना कर्म जन्म गवाया, मन जूठे वे जात जूठा खाया, बिन शब्द आचार

पी जा। गुरुमुख मल्हार राग जो करहें तिन मंथन शीतल होए, गुरु शब्दी एक पछाणिया एको सच्चा सोए। मंथन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए, अंदर सच्ची पगत है सहजे ही पट होए। चल जुग में कोर अंधार है मन मुखराव ना कोए, सेवड पागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए। महला तीजा इंद वर्ष है कर दया लोका मन उपजे चाओ, जिसके हुक्म इंद वर्ष दा तिसके सद बलिहार जाओ। गुरमुख शब्द संभालिए सच्चे के गुण गाओ, नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाओ। पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया, पूरे कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया। पूरे ज्ञान ध्यान मैल चुकाया, हर पर तीर्थ जान मनुआ नाया। शब्द मरे मन मार तन जने दी माया, डर सच्चे सच्चे आर सच्चा आया। पूछ ना सके कोई जा खसने भाया, नानक सच सलाहे लिखिया पाया। श्लोक महला पहला कुल्हा देन दे बावले लेंदे वडे निलज, चूहा छद न मावई तिकल बन्ने छज। देन दुआई से मरे जिनको देन से जाहे, नानक हुक्म न जा पई किथे जाए समाहे। फसल आहारी एक नाम सामनी सच नाओ, मैं महदूद लिखाया खसने के दर जाए। दुनिया के दर के तड़े केते आवे जाहे, केते मंगे मंगते केते मंग मंग जाहे। महला पहला सौ मन हस्ती क्यों गुड़ खावे, पंज सै दाना खाए। डके फूके खीरे उड़ावे साहे गया पछताए। अंधी फूक मोई देवानी खसम मिटी फिर भानी, अद गुल्ला चिड़ी का चुगन गैन चढ़ी बिल लाए। खसमे पावे ओहा चंगी जे करे खुदाए खुदाए, सत्ता शिव मारे सह मिर्या सब पिछे पे खाए। होए सताना पुरे न मावे साहे गए पछताए, अंधा किसनो बुक सुनावे खसमे मूल न भावे। अक्षों प्रीत करे अक्सिद्धा अकडाली बैठाए, खसमे पावे ओहो चंगा जे करे खुदाए।

तिन पौ सागर तरना पौड़ी अगम अगोचर तू तनी सच्चा अलख अपार तू दाता सब मंगते इको देवन हार जिन्नी सेव्या तिन्नी सुख पाया गुरमति विचार इक नानो तुद एवे पांगा माया नाल प्यार गुर कै शब्द सलाही है अंतर प्रेम प्यार विन प्रीति भगत न हो विन सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुद सेव दे एक ताड़ी करे पुकार जेहे दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार श्लोक महला पहला राति काल कटे दिन काल छिजे काया होए पराल वर्तन वर्त्या सर्व जंजाल पुलिया चुक गया तपताल अंधा तक

सुख पाया अंधा अंध कमाई बिख्या कदे ही रजे नाही मूरख पुख न जाई दूजे सबको लग विगुता बिन सतगुरु बूझ न पाई सतगुरु सेवे सो सुख पाए जिसनो कृपा करे रजाई। श्लोक महला पहला शरण करम दोए नानका जे तन पल्ले पाए सो तन मित्र न कांडी है जित सिर चोटा खाए जिनके पल्ले तन वसे तिनका नाव फकीर जिनके हृदय तू वसे ते नर गुणी गहीर। महला पहला दुखी दुनी सहेड़ी है जाए ता लगे दुख नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथी पुख रूपी पुख ना उतरे जा देखा ता पुख जेते रस शरीर के तेते लगे दुख। महला पहला अंधी कमी अंध मन मन अंधे तन अंध चिकर लाया क्या थी है जा टुटे पत्थर बंद बंद टुटे बेड़ी नहीं ना तुल्हा ना हाथ नानक सच्चे नाम बिन केते डुबे साथ। महला पहला लखमन सोयना लखमन रूपा लख साहा सिर साहा लख लस्कर लख

दया जानिए, कौजल तारण हार शब्द पछानिए, चोर जार जुआर पीड़े खानिए, निंदक लाए तबार मिले हरवानिए, गुरमुख सत समाए सो दरगे जानिए। श्लोक महला दूजा, नाव फकीर है पातशाह मूर्ख पंडित नाओ, अंधे का नाव पारखू एवे करे गुआओ, इल्लत का नाव चौधरी पूरी पूरे थाओ, नानक गुरमुख जानिए कल का एहो न्याओ। महला पहला, हरना बाजा चै सिकदारा एना पर्याना।

पौड़ी आप उपाय मेदनी आप देकर बासार कै दिन परम ना कटी है नाम ना लगे प्यार सतगुर ते पौ उपजे।

मैं समाया एक पगवा वेश कर परम देह बिन सतगुरु कि न पाया देश दिशंतर पर थके तुद अंदर आप लुकाया गुरु का शब्द रतन है कर चानन आप दिखाया अपना आप पछाणिया गुरमति सच समाया आवागोन बजारिया बाजार जिनी रचाया एक फिर सच्चा सलाहना जिन मन सच्चा भाया स्वरूप महला पहला नानक माया।

तू है मन भाया पाल चलाए बन कोई ना रखसी जर जरवाना कन चलिया नचसी सतगुर बोत बेड़ सच्चा रखसी अगन पखे परहार अंदिन पक्षी फासा चुगे चोग हुक्मी छुटसी करता करे सोहोग कूड़ निखुटसी। श्लोक महला पहला कर्म।

सो करा श्री सो ऐसा राजा श्री नरहरि जाचे कालकुलाल ब्रह्मा चतुर्मुख दावणा जिन विश्व संसार राचीले जाके कर ईश्वर बावला जगत गुरु तत्सार था ज्ञान पाखीले पाप पुण्य जाचे दांगिया।

पूरे लोक प्रसिद्ध कबीरा, जाके कुटुंब के केद सब टोटो अंत फिरे, अजो बनारसी आस पासा, आचार सहत विपर करें डंडौत।

कहो रविदास पयो जल लेखो जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो राग का नवा चौक दे महल।

मिल हरिया हों बल बल बल बल साथ जना को मिल संगत पार उतरिया रहा हर हर कृपा करो प्रभ अपनी हम साथ जना पग परिया तन तन साथ जिन हर प्रभ जानिया मिल साधु पतित उधरिया मनुआ चले चले बहु बहु विद मिल साधु वत वत करिया ज्यों जल तंत पसारे बगत ग्रस्त।

किल बिख दैन पए खिन अंतर, टूट गए माया के फास। क्या हम किर्म क्या कर्म कमावे, मूर्ख मुग्ध रखे प्रवतास। अवगनियारे पाथर भारे, सत संगत मिल परे तरास। जेती सृष्ट करी जगदीश, ते सब ऊंच हम नीच।

मेरे मन राम नाम जपियो गुरवाक, हर हर कृपा करी जगदीशर, दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक रहाओ। नाना रूप रंग हर के रे, कट कट राम रवियो गुपलाक, हर के संत मिले हर प्रगटे, उगर गए बिखिया के ताक। संत जना की बहुत बहुत शोभा, जिन उतारियो हर रसक रसाक, हर के संत मिले हर मिलिया, जैसे गऊ देख बछराक, हर के संत जना में

मात पिता बंद पहर साक कानड़ा महला चौथा। मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत हर हर वक्त माया गढ़वेड़ी गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत। रहाओ मिथ्या परम परम।

जय राम रविया कट अंतर। अखिर राम रविया रंग प्रीत, हर के संत संत जननी के, जिन मिलिया मन रंग रंगीत। हर रंग लहे ना उतरे कबहू, हर हर जाए मिले हर प्रीत। हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। हर हर नाम दियो मुख औखद, जन नानक पतित पुनीत। कानड़ा महला चौथा, जप मन राम नाम जगन्नाथ। कूमन केर परे बिख बिखिया, सतगुर काड लिए दे हाथ। रहाओ स्वामी अभय निरंजन नरहर, तुम राख ले हो हम पापी पाथ। काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते, कास्ट लो तरे संग साथ। तुम वड पुरख बड अगम अगोचर, हम टूट रहे पाई नहीं हाथ। तू परे परे अपरंपर स्वामी, तू आपन जाने आप जगन्नाथ। अदृष्ट अगोचर नाम ते आए, सत्संगत मिल साधु पात। हर हर कथा सुनी मिल संगत, हर हर जप्यो अकत कत कात। हमरे प्रभ जगदीश गुसाई, हम राख ले हो जगन्नाथ। जन नानक दास दास दासन को, प्रभ करो कृपा।

गुण गावे, गुरमत हो बलबले हो बलबले, जन नानक हर जप पई, निहाल निहाल निहाल, कानड़ा महला चौथा, हर गुण गावो जगदीश, एका जी की चै लख बीस, जप हर हर शब्द जपीस, हर हो किरपीस राव, हर कृपा कर।

हर जप जपे हर जप जपे जप जापो जगदीश। तुमरे जन राम जपे ते उत्तम तिन को हो कुमकुमे कुमकुम जीस। हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे सो करे जे तुद पावीस। जन नानक अमृत पिया गुरमती तन तन तन तन तन गुरु साबीस। कानड़ा महला चौथा पज रामो मन राम जिस रूप ना रेख वडाम। सत संगत मिल पज राम बड हो पाग मताम। रहाओ जित गृह मंदर हर होत जास तित तर अनदो अनद पज राम राम राम। राम नाम गुण गावो हर प्रीतम उपदेश गुरु गुरु सतगुरा। सुख होत हर हरे हर हरे हरे पज राम राम राम। सब शिष्ट तार हर तुम कृपा।

महला चौथा सतगुर चाटो पग चाट जित मिल हर पादर बाट पग हर रस रस हर गाट हर हो लिखे लिलाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर पेख न पाइए हर ब्रह्म जोग हर पाइए सत संगति उपदेश गुरु गुरु संत जना खोल खोल कर

काट कटे काट हर काट कानड़ा मेला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगा दो मत गुरमत हर प्रभ ला दो सुर हो लिखे लीला दो रहाओ बिख माया संत बहुचित है विकार सुख पाई है हर पज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधो ज्यो छोए पारस मनहूर भय कंचन त्यों पतित जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधा दो ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता त्यों पापी संग तरे साध साध संगति गुर सतगुरु गुर साधो चार वर्ण चार आश्रम है कोई मिले गुरु गुरु नानक सो आप तरे कुल सगल तरा दो कानड़ा महला चौथा हर जस गावो भगवान जस गावत पाप लहान मत गुरु।

जा को सतगुर अपना राखे, सो जन हर रस रसना चाखे, कहो नानक गुर कीनी माया, हालत पलत मुख उजल भया, कानड़ा महला पन्नवा, आराधो तुझे स्वामी अपने, उठत बैठत सोवत जागत, सास सास सास हर जपने।

कल युग में पाया जिन नाओ कानड़ा महला पंजवा कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना अनेक बार कर बंदन संतन ऊहा चरण गोविंद जी के बसना रहाओ अनेक पाप कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर ध्यावो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत में मन पर बोदा कृष्ण ना बूजी बहु रंग माया नाम लेत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जब पहे दयाल सहु नानक कौ छूटे जंजाल कानड़ा महला पंजवा ऐसी मांग गोविंद ते पहल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाओ पूजा चरना ठाकुर सरना सोई कुशल जो प्रभ जियो करना सफल होत ए दुर्लभ देही।

अनेक स्वांग काछे पेख तारी जैसो सा तैसो दृष्टारी कहन कहावन सगल जंजार नानक दास सच करनी सार कानड़ा महला पंजवा तेरो जन हर जत सुनत उमायो रहाओ मने प्रगास पेख प्रभ की शोभा जत कत पेखो आयो सब ते परे परे ते ऊंचा गहर गंभीर अथायो ओत पोत मिलियो भगतन को जन स्यों परदा लायो गुरु प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाध समायो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन पेटक होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो कांटे रोग पै मन निर्मल हर हर औखद खायो अस्थित पै बसे सुख खाना बौर न कतहु धायो संत प्रसाद तरे कुल लोगा नानक लिप्त न मायो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पर आई जब ते साथ संगत मोय पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो।

तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ, तुमरी आस परोसा तुमरा, तुमरा नाम हृदय ले धरना, तुमरो बल तुम संग सुहेले, जो जो कहो सोई सोई करना, तुमरी दया मया सुख पावो, हो कृपाल सा पौजल।

साध सरन चरण चित लाया, सुपन की बात सुनी देखी, सुपना नाम मंत्र सतगुरु दृढ़ाया रहा। नै तृप्तानो राज जोबन तन, बहुर बहुर फिर ताया, सुख पाया।

सहज समाया कानड़ा महला पंजवा हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख शांत मूरत सिमर सिमर नित त्याय रहाओ सगल आस होत पूर

महापवित्र संत आसन मिल संग गोविंद ध्याए, सगल त्याग शरण आयो नानक लेहो मिलाए। कानड़ा महला पंजवा पेख पेख बिगसाओ।

हर हर हर। मित कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नासे रिद पै

नारायण नरपत नमस्कार है। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहितार है रहाओ। कवन कवन कवन गुण कही है, अंत नहीं कछ पार है। लाख लाख लाख कहीं कोरे को है ऐसो विचार है। विषम विषम विषम ही भई है, लाल गुलाल रंगार है। कहो नानक संतन रस आई है।

ऊंच नीच सब एक समानो मुख बकनो मन मान रहाओ कट कट पूर रहे सुख सागर पै पंजन मेरे प्राण मने प्रगास पयो प्रमनास्यो मंत्र दियो बुरकान करत रहे कर्तज्ञ करुणा में अंतर जामी ज्ञान आठ पहर नानक जस गावे मांगन को हरदान कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन को कई केत ऐसो जन बिरलो है।

कहु नानक जन हर हर हर है, कत आवे कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर न जाए, तन मन गलत भय ते संगे, मोनी मोहे रही मोरी माए रहाओ, जय जय पै कहो बिरथा हो अपनी, तेऊ तेऊ गहे रहे अटकाए, अनिक पाप की एक है जाली, ताकि गंठ नहीं चोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण अधारे रहाओ, नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवारे, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विषम नाम हर तारे, अगम पदार्थ लाल अमोला, पयो प्राप्त गुर चरनारे, कहो नानक प्रभ पय कृपाला, मगन पय हीरे दरसारे, कानड़ा महला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो, देखत सुनत सबन कै संगे, थोरे काज बुरो कै फेरो, रहाओ, नाम बिना जे तो लपतायो, कछु नहीं नाही कत्तेरो, आगे दृष्ट आवत सब प्रगट, इहा मोयो परम अंधेरो, अटक्यो सुत बनता संग माया, देवन हार दतार बिसेरो,

पयो परगास अनद उजियारा तय समाद समायो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक ले लायो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जप तीरे।

संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर पेटत नानक सुख पाया, कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मने सुख पाये, साध जना मिल हर जस गाये।

अंध कोर सागर नहीं मरसन, कानड़ा महला पंजवा, पोकत कपट खपट खल गरजत, मरजत मीच अनक बरिया रहाओ, अहंग मत अनरत पुमित हित प्रीतम, देखत परमत लाख गरिया, अनित व्यवहार अचार विधहीनत, मम मद मात कोप जरिया, करुण कृपाल गोपाल दीन बंद, नानक उदर शरण परिया, कानड़ा महला पंजवा, जी प्राण मान दाता, हर विसर

जगत उदाहरण नाम प्रह तेरे, नवनिद नाम निदान हर केरे, हर रंग रंग रंग अनुपेरे, काहे रे मन मोहे मगनेरे, नैनो देख साध दरतेरे, सो पावे जिस लिखत लिलेरे, रहाओ सेवो साध संत चरनेरे, बाँचो तूर पवित्र करेरे, असत मज्जन मैल कटेरे, साफ साफ त्यावो मुख नहीं मोरे, किच संग न चाले।

बरना साकू एक तुले रह, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, मिल नानक देव जगत गुर के रह। कानड़ा महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन पा।

मान मोह त्याग छोड़ो तव नानक हर जियो पेटना। कानड़ा महला पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त पूरन सब संगा। रहाओ बर्त नेम तीरथ सैत गंगा जल हेवत पूख अर नंगा पूजा चार करत मेलंगा चकर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन पेटे बिन सतसंगा हठ निग्रह अत रहत बिटंगा हौ रोग ब्यापे चुके न पंगा काम क्रोध अत कृष्ण जरंगा सो मुक्त नानक।

तो तुम्हारे बलबले बलबले बल गई। पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए। प्रभ थान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार। अनिक दास कीरत करें तुम्हारी। सोई मिलियो जो पाव तो जन नानक ठाकुर।

नहीं उपाओ रहाओ। कटन खटन जटन होमन नाही दंड तार सुआओ, जतन पांसन तपन प्रमन अनिक कथन कथन।

तो संत वेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन अहंकार राव जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सौ जन उदरे जिसे उदारो आप बिनस जाए।

मोही पंच दोही उर्ज निकट बत्यो ताकि शरण साधुआ दूत संग निवार रहाओ। कोट जन्म जोन प्रम्यो हार पर्यो द्वार कृपा गोविंद पई मिल्यो नाम आधार दुर्लभ जन्म सफल।

सहज सुभाए आपने आए, कछु ना जानो कछु दिखाए, प्रभ मिलियो सुख बाले पोले रहाओ, संजोग मिलाए साध संगाए, कथु ना जाए करें बसाए, गुण निधान प्रगट्यो ए चोले, चरण लुभाए आन सजाए, थान सनाए सर्व समाए, रसक रसक नानक गुण बोले कान

पायो अनेक उकत चतुराई, जतन जतन अनेक उपावरे तो मिलियो जो कृपाई, प्रभु दयार कृपार कृपा निध जन नानक संत रे नाई। कानड़ा महला पन्नवा माई सिमरत राम राम राम।

मन गुरुमत नाम समावे गो, नाम सुने नामो मन भावे, नामे ही तृप्तावे गो। कनक कनक पहरे बहु कंगना, कापर पात बनावे गो। नाम बिना सब फीक फिकाने, जन्म मरे फिर आवे गो। माया पटल पटल है भारी, कर कूमन केर कुलावे गो। पाप विकार मनूर सब भारे, विख दुत्तर करे।

अज्ञान लाए सवालिया, गुर ज्ञान लाए जगावे गो। नानक पाणे अपने ज्यो पावे तिवे चलावे गो। कानड़ा महला चौथा, जप मन हर हर नाम तरावे गो। जो जो जपे सोई गत पावे, ज्यो त्रू प्रहलाद समावे गो। रहाओ।

मिल सतगुरु नाम पियावे गो। जन्म जन्म की हो मैं मल लागी, मिल संगत मल लह जावे गो। ज्यो लोहा तरयो संग कास्त लग, शब्द गुरु हर पावे गो। संगत संत मिलो सत्संगत, मिल संगत हर रस आवे गो। बिन संगत कर्म करे अभिमानी, कड पानी चीकड़ पावे गो। भगत जना के हर रखवारे, जन हर रस मीठ लगावे गो। खिन खिन नाम दे वड्याई, सतगुरु उपदेश समावे गो। भगत जना को सदा निव रही है, जन निवे ता फल गुण पावे गो। जो निंदा दुष्ट करे भगता की, हर नाखस ज्यो पत जावे गो। ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा, तप तापन पूज करावे गो। जो जो भगत होए सो पूजो, परमन परम चुकावे गो। जात न जात देख मत परमो, सुख जनक पगी।

सतगुरु बचन बचन है सतगुरु पादर मुक्त जनावे गो शासन सास सास बल पाई है ने शासन नाम ते आवे गो गुर प्रसादी हो मैं बूझे तो गुरमत नाम समावे गो सतगुरु दा

मन गुरमत चाल चलावे गो ज्यो मैगल मस्त दी जय तल कुंडे गुर अंकस शब्द दृढ़ावे गो रहाओ चल तो चले चले दह दह दिस गुर राखे हर लिवलावे गो सतगुर शब्द दे रिद अंतर मुख अमृत नाम।

लोभ नगर में सबला गुरखिन में मार कडावे गो सत संतोख धर्म आन राखे हर नगर।

सतगुरु महापुरख है पारस, जो लागे सो फल पावै गो। ज्यो गुरु उपदेश तरे प्रहलादा, गुरु सेवक पैज रखावै गो। सतगुरु बचन बचन है नीको, गुरु बचनी अमृत पावै गो। ज्यो अमरीत अमरा पद पाए, सतगुरु मुख बचन त्यावै गो। सतगुरु शरण शरण

हर हर हर हर हर सर सेवे तीन दरगे मान दिवावे गो गुरमत गुरमत गुरमत त्यावे हर गल मिल मेल मिलावे गो गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचय नाम दियावे गो हर हर रूप हर रूपो होवे हर जन को पूज करावे गो साकत नर सतगुरु।

लग संगत नाम त्यावे गो नानक राख राख प्रभ मेरे सत संगत राख समावे गो छक्का पहला।

बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ पाग दर्शन पाए मिल साधु नित पजय नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवे हर अम्यो पीवे, जन्म मरना पा गए सतसंग पाये हर से आये, बहुर दुख ना ला गए कर दया दाते पुरख विदाते, संत सेव कमायन बिनवंत नानक जन पूर बांचे, हर दर्श सहज।

गोविंद गोविंद गुरमत ध्याये सादर गए पाये मान। गोविंद गोविंद गोविंद जप मुख उजला प्रधान। नानक गुरु गोविंद हर जित मिल हर पाया नाम।

सतसंगत सतगुरु तन तनो तन तन तनो जित मिल हर गुण बुलोगिया सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे हर बोलत सब पाप लोगिया। श्लोक महला चौथा। हर हर हर हर नाम है गुरमुख पावे कोय हों मैं ममता नाप होए दुर्मत कड्डे धोए नानक अंदिन गुण उचरे जिनको तुर लिखिया होए। महला चौथा। हर आपे आप दयाल हर आपे करे सो होए हर आपे आप वर्तदा हर जेवड अवरना कोए जो हर प्रभु पावे।

गुरुमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम महला चौथा हर हर नाम पवित्र है नाम जपत दुख

0: पौड़ी।
1: तू थाम सनंतर परपूर है करते सब तेरी बनत बनावणी, रंग परंग सिस्त सब साजी, बहु बहुविध पांत उपावणी, सब तेरी जोत ज्योति विश्वरते गुरमती सुदै लावणी, जिन हो है दयाल तिन सतगुर मेले, मुख गुरमुख हर समझावणी।

जित दालद दुख भुख सब लै जावणी। श्लोक महला चौथा। हर हर अमृत नाम रस, हर अमृत हर उरधार, विच संगत हर प्रभु वरतदा, बुझो शब्द विचार। मन हर हर नाम से आया, दिखौ मैं कड्डी मार, जिन हर हर नाम न चेत्यो, तिन जुए जन्म सभार। गुर तुफे हर

पहला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विच कल जुग करनी सार मत गुरु मत कीरत पाई है हर नामा हर उरहार वड पागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर पंडार बिन नावे जे कर्म कमावणे नित हो मैं होए खुआर जल हस्ती मलना वाली है फिर भी फिर पावे चार हर मेलो सतगुरु दया कर मन वसै एकंकार जिन गुरुमुख सुन हर

गुरुमति हर निरंकारा सब चवो मुखो जगन्नाथ जगन्नाथ जग जीवनो जित पव जल पार उतारा। श्लोक महला चौथा। हमरी जेबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाहा। हम क्यों कर जपै ए आणिया हर तुम बड अगम अगाहा। हर देहो प्रभु मत ऊतमा गुर सतगुर के पग पाहा। सत संगत हर मेर प्रभ हम पापी संग तराहा।

गुरु सतगुरु मेल दयाल, गुरु सेवा हर हम पाया, हर हुआ हर कृपाल। सब आशा मन सा विसरी, मन क्यू का आल जंजाल। गुरु तुठे नाम दृढ़ाया, हम किए शब्द निहाल। जन नानक अकुट कन पाया, हर नामा हर तन माल। पौड़ी हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे, सब ऊपर वडे वडौना। जो त्यावे हर अपरंपर, हर हर हर त्याए हरे ते होना। जो गावे सुने तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना। तुम जैसे हर पुरख जाने, मत गुरमत मुख वड वड भाग वडोना। सब त्यावो आद सते, जुगाद सते, प्रतक सते, सदा सदा सते। जन नानक दास दसोना। श्लोक महला चौथा। हमरे हर जग जीवना, हर जप्यो हर गुरु मंत्र। हर अगम अगोचर अगम हर, हर मिलिया आए अचिंत। हर आपे कट कट वर्तदा, हर आपे आप बेअंत। हर आपे सब रस भोगदा, हर आपे कवला कंत। हर आपे पिखिया पाईदा, सब सिस्त उपाई जी जंत। हर देवो दान दयाल प्रभ, हर मांगे हर जन संत। जन नानक के प्रभ आए मिल, हम गावे हर गुण चंत। महला चौथा। हर प्रभ सज्जन नाम, हर मैं मन तन नाम शरीर। सब आशा गुरमुख पूरिया, जन नानक सुन हर तीर। पौड़ी हर उत्तम हरिया नाम है, हर पुरख निरंजन मौला। जो जप दे हर हर दिन सुरात, तिन सेवे चरण नित कौला। नित सार संभाले सब जी जंत, हर वक्त है निकट सब जौला। सो बुझे जिस आप बुझाए सी, जिस सतगुरु पुरख प्रभ कौला। सब गावो गुण गोविंद हरे, गोविंद हरे, गोविंद हरे। गुण गावत गुणी समौला। श्लोक महला चौथा। सुतिया हर प्रभ

को मत गुरमत हर प्रभ पज्या हर देवो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्या सब तन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्या। श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुवर भरे वहन जिना सतगुरु मन्या जन नानक वड पागल हन। महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन न जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित विद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लहो लड़ लाए। पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किछ वखर होए सो वर्णिय तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चटसाल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सतगुरु जित मिल हर लेखा लिखा। श्लोक मैला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिए सतगुर भाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पैनायन जिन हर मन वस्याए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन भाए। मैला चौथा हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख ले जाए। पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा जिना सतगुरु मेरा प्यारा देखिया तिन को मिलिया मेरा सतगुरु जिनको तुर मस्तक लेखिया हर अगम दियाया गुरमती तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया गुरु बचन से आया जिना अगम हर ते ठाकुर सेवक रल एकिया सब कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे हर लाहा हर भगत विशेखिया। श्लोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे रम रामो राम रमीत कट कट आत्म राम है प्रभ खेल कियो रंग रीत हर निकट वसे जग जीवना परगास कियो गुरमीत हर स्वामी हर प्रभ तिन मिले जिन लिखिया तुर हर प्रीत जन नानक नाम ते आया गुर बचन जप्यो मन चीत। महला चौथा हर प्रभ सज्जन लोड़ लो पाग वसे वड पाग गुर पूरे देखा लिया नानक हर लिव लाग। पौड़ी तन तन सुहावी सफल करी जित हर सेवा।

मेरा हर प्रव सुगड सुजाने, हर मेल दिखाए आप हर, गुरबचनी नाम समाने, तिन विट्टो नानक वारिया, जो जप दे हर निर्वाणी। श्लोक महला चौथा, हर प्रभ रत्ते लोयना, ज्ञान अंजन गुरुदे, मैं प्रभ सज्जन पाया, जन नानक सहज मिले।

सब जाए। नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए पौड़ी। तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे वसगत कीता। एक मनमुख कर हारायन एक नामेल गुरु तिना जीता। हर उत्तम हर

है ला चौथा मन अंतर हो मैं रोग है परम फूले मन मुख दुर्जना नानक रोग बजाए मिल सतगुरु साधु सज्जना। महला चौथा मन तन ताम सगारवा जा देखा हर नैने नानक सो प्रभ मैं मिले हो जीवा सद सुने। पौड़ी जगन्नाथ जगदीशर करते अपरम

किन नहीं कोई कट कट अंतर रव रहा जप्यो जन कोई सगल जपो गोपाल गुण प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा गुरुमुख मिले से सज्जना हर प्रभ पाया रंग जन नानक नाम सलाए तू लुड लुड दर गए।

ऐसो राम राय अंतर जामी, जैसे दर्पण माहे बदन परवानी रहाओ। बसे कटाकट लीप ना छीपे, बंधन मुक्ता।

तेरा अंत न कछु पाया। जन को कृपा करो मधुसूदन, हर देवो नाम जपाया। मैं मूरख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरुमुख पाया। कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसिया। हर हर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहा। गुर के पग सिमरो दिन राती, मन हर हर हर बसिया। हर हर हर कीरत जग सारी, सस चंदन जस तसिया। हर जन हर हर हर लिव लाई, सब साकत खोज पया। ज्यो किरत संजोग चलियो नर निंदक, पग नागन छो जलिया। जन के तुम हर राखे स्वामी, तुम जुग जुग जन रखिया। कहां भया दैत करी बखीली, सब कर कर चर परिया। जे तेजी जंत प्रभ किए, सब काले मुख ग्रसिया। हर जन हर हर हर प्रभ राखे, जन नानक शरण पया। कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप

कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन को क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्प आरापो, कोई मिले प्रभु मिलते, हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम कुछ कर कर बरनते, हमरी मत वसगत प्रभु सुमरे, जन नानक के प्रभु समरथे, कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप हर गुण अतत सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ, सो हर हर नाम से आवे हर जन, जिस बद भाग मथई, जह दरगे प्रभ लेखा मांगे, तह छुटे नाम से आए थई, हमरे दोख बहुत जन्म जन्म के, दुखों में मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल ना वाए, सब किल बिख पाप गथई, जन के रिद अंतर प्रभ स्वामी, जन हर हर नाम पज थई, जह अंति अवसर आए बनत है, तह राखे नाम साथई, जन तेरा जप गावे हर हर, प्रभ हर जपियो जगन्नाथ थई, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पात्र रख बुढ़ थई, कल्याण महला चौथा, हमरी चितवनी हर प्रभ जाने, और कोई निंद करे हर जन की।

हर सेवा से काल जोए न साके, चरनी आए पवे हर जाने, जा को राख ले मेरा स्वामी, ताको सुमत दे पहकाने, ताको कोई अपर न साके, जाकी भगत मेरा प्रभु माने, हर के चोज विदान देख जन, जो खोटा खरा इक निमख पछाने, ताते जन को अनंद भया है, रिद्ध सुध मिले खोटे पछताने, तुम हर दासे समरथ स्वामी, इक मांगो तुझ पासो हर दाने, जन नानक को हर कृपा कर दीजे, सद बसे हृदय मोहे हर चराने।

जो हर पावे भगत सिना हर पावेंगे, ज्योति ज्योत मिलाए ज्योत रल जावेंगे, हर आपे होए कृपाल आप लिव लावेंगे, जन नानक शरण द्वार हर लाज रखावे।

जगदीशर चरण शरण जो आए तेजन पवन पार परे भगत जना की तेज हर रास है जन नानक आप हर के।

जाचिक नाम जाचे जाचे सर्वतार सर्व के नायक सुख समूह के दाते रहाओ खेती खेती मांगर मांगे पावनिया सो पाये सफल सफल सफल दर्शरे परस परस गुण गाये नानक तत् तत् सो मिलिये हीर हीर विदाये कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा सदनव तन मन रंगी शोभा रहाओ ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा भगत दान जस मंगी जोग ज्ञान ध्यान सेख ना गए सगल जपे तरंगी कहो नानक संतन बलिहार है जो प्रभु के सदसंगी कल्याण महला।

मन रसक रसन नाम जपत तें पाप खंडली जोग जुगत ज्ञान पुगत सुरत शब्द तत बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन विद ताकी कहा करो तर्क ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे।

कोट मदे मुक्त कहो, कहो नानक नाम रस पाये, साधु चरण गहो, कल्याण महला पंजवा, प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे, गर्भ जोन कल काल जाल, दुख विनाशन हर रखे, रहाओ नाम तारी शरण तेरी, प्रभ दयाल टेक मेरी, अनाथ दी

गोविंद नानक आसरो कल्याण महला पंजवा। मन तन जापी है भगवान गुरपुरे सो प्रसन्न भये सदा सुख कल्याण रहाओ। सर्व कार्य सिद्ध भये गाए गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे नाथिया दुख काल। कर कृपा प्रभु मेरिया करो दिन रहन सेव। नानक दास।

सुरत मत चतुराई शोभा रूप रंग तन मान सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण कल्याण महला पंजवा हर चरण सरण।

मुक्त जुगत अनेक सुख हर भगत नवे ना लावनो प्रभ दर्श लुभत दास नानक बहुड़ जोन ना तावनो कल्याण महला चौथा अष्टपदिया इको अंकार सतगुरु प्रसाद रामा राम रामो।

कै हर हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिन दीजै। राम नाम तुल और

हम निर्गुणी मनूर अति सीखे, मेरे सतगुर पारस की जय रहाओ। सुर्ग मुक्त बैकुंठ सब बांछे, नित आशा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगे, मिल दर्शन तृप्त मन दी जय। माया मोह सबल है भारी, मोह कालक दाग लगी जय। मेरे ठाकुर के जन

काढ़ खड़ग गुर ज्ञान करारा दिख छेद छेद रखती जय आन आन समदा बहु कीनी पल बैसंतर पसम करी जय माँ उगर पाप।

जन हर भगवान दिखी जाए, साकत सूत बहु गुरजी भरिया, क्यों कर तान तनी जाए, संत सूत किस मिकते नाही, साकत संग ना की जाए, सतगुर साध संगत है नीकी, दिल संगत राम रवि जाए, अंतर रतन जवे हर मानक, गुर कृपा ते ली जाए, मेरा ठाकुर वड़ा वड़ा है स्वामी।

कृपा कृपा कर साध मिलावो जग सम्मन को थम दीजै बसदा तले तले सब ऊपर मिल साधु चरण रुली जय अप उत्तम।

जय। राम नाम अनुग्रह बो किया गुरु साधु पुरख मिली जय। गुण राम नाम विस्थिरन किए हर सगल पवन जस जी जय। साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय। जो जल मीन जलन जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय। माँ अपाग अपाग है जिनके तिन साधु तूर न पी जय। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे दंड धर्म राय का दी जय। सब तीर्थ बरत जग पुन किए हिवे गाल गाल तन छी जय। अकुल्ला तोल राम नाम है गुरमत को पूजे ना तोल तुली जय। तब गुण ब्रह्म ब्रह्म

मन तम अर्थ करो सब आ गए रस गुरमत ज्ञान दृढ़ी जय रहा ब्रह्म नाम गुण साफ तरोवर नित चुन चुन पूज करी जय आत्म देव देव है आत्म रस लागे पूज करी जय विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल।

पूछे जो पीप पलाश खाए ली जाए सब नर में प्राणी उत्तम होवे राम नाम में बास बसी जाए निर्मल निर्मल कर्म बहु कीने नित साखा हरी जड़ी जाए परम फूल फल गुर ज्ञान दृढ़ाया बेकार बात।

तिन पस पस नाक वडी जाय साखत नर अंकारी कही है बिन नावे त्रिग जीवी जाय जब लग सांस सांस मन अंतर तत बेगल शरण परी जाय नानक कृपा कृपा कर धारो मैं साधु चरण पखी जाय कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण धुवी जाय किल विखो दहन होए खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा की जय रहाओ मंगत जन दीन करे दर ठाडे अत परसन को दान दी जय त्राहे त्राहे शरण प्रव्याए मोको गुरमत नाम दृढ़ी जय काम क्रोध नगर में सबला नित उठ उठ जूझ करी जय अंगीकार करो रख ले वो गुर पूरा कार्ड कटी जय अंतर अगन सबल अत बिख्या शिव शीतल शब्द गुर दी जय तन मन शांत होए अधिकारी रोग काटे सुख सवी जय ज्यो सूरज किरण रविया सर्ब ठाई सब कट कट राम रवि जय साधु साध मिले रस पावे तप निज पर बैठिया पी जय जन को प्रीत लगी गुर सेती ज्यो चकवी देख सुरी जय निरखत निरखत रैन सब निरखी मुख का अमृत पी जय साकत स्वान

साधु साध शरण मिल संगत जित हर अस्कार कदी जाए पर उपकार बोले बहुगुनिया मुख संत भगत हर दी जाए तू अगम दयाल दया पत दाता सब दया तार रख ली जाए सर्व जी जग जीवन एको नानक प्रतपाल करी जाए कल्याण महला चौथा रामा हम दासन दास करी जाए जब लग सास होए मन अंतर साधु तूर कवी जय रहाओ शंकर नारद शेख नागमुन तूर साधु की लो चीज है पवन पवन पवित्र हो है सब जय साधु चरण धरी जय तज लाज अंकार सब तजिए मिल साधु संग रही जय कर्म राय की कान चुकावे दिख दुबदा काड कटी जय परम सुख के बहु उब सुख कही।

जेवड भाग होए अपनी का ता गुरमत नाम दृढ़ी जाए सब माया मोह बिकम जगतरिये सहजे हर रस पी जाए माया माया के जो अधिकारी विच माया पचै पची जाए अज्ञान अंधेर महापंथ बिखड़ा अहंकार पार लग ली जाए नानक राम रम रम रम रम रामे ते गप की जाए सतगुर मिले ता नाम दृढ़ाए राम नामे रले मिली जाए छक्का पहला।

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राज प्रवासी विपास महला पहला चौक दे कर पहला नाए तेरे तरना नाए पत पूज नाओ तेरा गहना मत मकसूद नाए तेरे नाओ मन्ने सब कोए बिन नामे पत कब हो न होए अवर सियाणत सगली पाज जय बख्शे तै पूरा।

पाताल पुरिया एक पार होवे लाख करोड़। तेरे लाल कीमत ता पवे जा सिरे होवे होर, दुखा ते सुख उपजे सुखी होवे दुख। जित मुख तू सालाई है सित मुख कैसी भूख, नानक मूर्ख एक तू और पला सहसार। जित तन नाम न उपजे से तन होए खुआर, प्रभाती महला पहला जय कारण वेद ब्रह्म उचरे संकर छोड़ी माया। जय कारण सिद्ध पै उदासी देवी मर्म न पाया। बाबा मन साचा मुख साचा कहिए करिए साचा होई, दुश्मन दुख न आवे नेड़े हर मत पावे कोई। रहाओ अगन बिंब पवने की बाणी तीन नाम के दासा, ते तस्कर जो नाम ना लेवे वासे कोट पंचासा। जे को एक करे चंग्याई मन चित बहुत बसावे, एते गुण एतिया चंग्याईया देना पछो तावे। तुद सलान तिन तन पले नानक का तन सोई, जे को जियो कहे ओना को जम की तलब न होई। प्रभाती महला पहला जा के रूप नाही जात नाही नाही मुख मासा, सतगुरु मिले निरंजन पाया तेरे नाम है निवासा। औदु सहजे तत विचार जाते फिर ना आवो सहसार। रहाओ जा के कर्म नाही धर्म नाही नाही सुचमाला, शिव ज्योत कन्नो बुद्ध पाई सतगुरु रखवाला। जा के बरत नाही नेम नाही नाही बकबाई, गत अवगत की चिंत नाही सतगुरु फुरमाई। जा के आस नाही निराश नाही चित सुरत समझाई, संत को परम संत मिलिया नानका बुद्ध पाई। प्रभाती महला पहला कांका कहया दर परवान, दिख अमृत दो समकर जान। क्या कही है सर्वे रहा समाए जो किछ वर्त है।

सोजन जान साची दरगे पावे मान कहना सुनना अकथ कर जाए कफनी बदनी नानक जल जाए प्रवासी महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अष्ट तीरथ संग गहे गुरु उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लहे गुरु समान तीरथ नहीं कोए सर संतोष।

पूरा नावण पशु परे तो देव करे रत्ता सच नाम तल ही अल सो गुर परमल कही है जासी वास बनास पत सौर है पास चरण लिव रही है गुरमुख जी प्राण उपजे गुरमुख शिव कर जाइए गुरमुख नानक सच समाइए गुरमुख निज पद पाइए प्रभासी मैला पहला गुर प्रसादी विद्या विचार पर कर पावे मान आपा मध्य आप प्रगासिया पाया अमृत नाम करता तू मेरा जजमान एक दखना हो तै तै मांगो देहे अपना नाम रहाओ पंच तस्कर कामत राखे चूका मन अभिमान दिष्ट विकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान जत सत चावल दया कनक कर प्राप्त पाती धान दूध कर्म संतोष कियो कर ऐसा मांगो दान खिमा तीरज कर गौ लवेरी सहजे बछड़ा खीर पिए सिफत कर्म का कपड़ा मांगो हर गुण नानक रवत रहे प्रभाती महला पहला आवत किने आवाख्या जावत क्यों राख्या जाए जिससे हुआ सोई पर जाने जा उस ही माए समाए तू है वाहो तेरी रजाए जो किछ करे सोई पर होए बा अवर न करना जाए रहाओ जैसे हर हट की माला टिंड लगत है एक सखनी होर फेर परियत है तैसो ही इव खेल खत्म का ज्यो उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल के उल्टी नजर प्रगासी मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी कौन गिरही कौन उदासी जिसकी आशा तिस ही सौंपते इहो रहा निर्वाण जिससे होआ सोई कर मान्या नानक गिरही उदासी सो करवाण प्रभाती महला पहला दिष्ट बिकारी बंधन बांधे हों तिसके बल जाई पाप पुन की सार न जाने फूला फिरे अजाई बोलो सच नाम करतार सुन बहुर ना आवन।

मानत विच्छेद दुख पाए सब ज मिले से सूचा चारी साची दरगे माने हम दिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साथ समाने सगले कर्म कर्म सुख संजम जप तप तीरथ शब्द वसे नानक सतगुरु मिले मिलाया दुख पराशत काल नसे करवाती महला पहला संता की रेण साध जन संगत हर की रत कर तारी कहां करे बपुरा जन बरते गुरुमुख हृदय मुरारी जल जाओ जीवन नाम बिना हर जप जाप जपो जप माली गुरुमुख आवे साध मना रहाओ गुरु उपदेश साथ सुख जाको क्या किस उपमा कही है लाल जवेहर रत्न पदार्थ खोजत गुरुमुख लही है चीने ज्ञान त्यान तम साचो एक शब्द लिवलावे निरालंब निरहार नहीं केवल निरपौता लीलावे सायर सपत करे जल निर्मल उल्टी नाम चरावे बाहर जातो ठाक रहावे गुरमुख से समावे सो गिर ही सो दास उदासी जिन गुरमुख आत पछानिया नानक कहे अवर नहीं दूजा सात शब्द मन मानिया राज करवाती महला तीजा चौपदे इको अंकार सतगुर प्रसाद गुरुमुख बिरला कोई बूझे सब दे रहा समाय नाम रते सदा सुख पावे साथ रहे लिवलाई हर हर नाम जपो जन भाई गुर प्रसाद मन अस्थिर होवे हम दिन हर रस रहा अघाई रहा हम दिन पगत करो दिन राती इस जुग का लाहा भाई सवा जन निर्मल मैल न लागे सच नाम सितलाई सुख सिगार सतगुरु दिखाया नाम वड्डी वड्याई अकुट पंडार करे कदे तोट ना आवे सदा हर सेवो भाई आपे करता जिसनो देवे तिस वसे मन आई नानक नाम ते आए सदा तू सतगुरु दिया दिखाई करवाती महला तीजा निर्गुणी आरे को बस ले स्वामी आपे ले हो मिलाई तू बेअंत तेरा अंत ना पाया सब दे दिहो बुझाई हर जियो तुद विटो बल जाई तन मन अर्पी तुद आगे राखो सदा रहा शरणाई रहाओ अपने पाने विच सदा रख स्वामी हर नामो दे वड्याई पूरे गुरते पाना जापे हम दिन सहज समाई तेरे पाने भगत जे तुद भावे आपे बख्श मिलाई तेरे पाने सदा सुख पाया गुर कृष्णा अग्न बुझाई जो तू करे सो होवे करते अवर न करना जाई नानक नावे जेवड अवर न दाता पूरे गुर ते पाई करवाती महला तीजा गुरमुख हर साल आया जिन्ना तीन साल आहे हर जाता विच्चों परम गया है दूजा गुर के शब्द पछाता हर जियो तू मेरा इक सोई तुद जपी तुद ऐसा लाही गत मत तुझते होई रहाओ गुरमुख सालान से साध पाए।

कोई गुर के शब्द कमल प्रगाशिया हों मैं दुर्मत खोई सब नाम एक को सच वरते विरला बूझे कोई गुरमति मन निर्मल होआ अमृत तत्व खाने हर का नाम सदा मन वसिया विच मन ही मन माने सद बलिहारी गुर अपने विटो जित आत्म राम पछाने मानस जन्म सतगुरु न सेविया बिरथा जन्म गवाया नजर करे ता सतगुरु मेले सहजे सहज समाया नानक नाम मिले वडियाई पूरे पाग से आया प्रभाती महला तीजा आते पांच बनाए बहुरंगी शिष्ट उपाय प्रभ खेल किया कर कर वेखे करे कराए सर्व जिया नो रिजक दिया कली काल में रव्या राम कट कट पूर रहा प्रभे को गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहा गुप्ता नाम वर्त विच पल जुग कट कट हर पर पूर रहा नाम रतन तिना हृदय प्रगटिया जो गुर सरनाई पग पया इंद्री पंच पंचे वस आने खिमा संतोष गुरमत पावे सो तन तन हर जनवड पूरा जो कह बैराग हर गुण गावे गुर ते मोह फेरे जे कोई गुर का कहया ना चित धरे कर आचार बहु संतोषं च जो किछ करे सो नरक पड़े एको शब्द एको प्रभु वर्ते सब एक से उत्पत्तल है नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रले प्रभाती महला तीजा मेरे मन गुर अपना सालाए पूरा पाग हो गए मुख मस्तक सदा हर के गुण गाए रहाओ अमृत नाम को जन हर दे कोट मदे कोई विरला ले जिसनो अपनी नजर करे गुर के चरण मन माए वसाए दुख अनेरा अंदरों जाए आपे फाचा ले मिलाए गुर की बाणी सो लाए प्यार एथे ओथे एव आधार आपे देवे सृजनहार सच्चा ननाए अपना भाणा सोई तगत सुगड़ सुजाना नानक तिसके सब कुर्बाना प्रभाती महला चौथा विपास इको ओंकार सतगुरु प्रसाद रसक रसक गुण गावे गुरमत लिव उन मन नाम लगान अमृत रस पिया गुर शब्दी हम नाम विटो कुर्बान हमरे जग जीवन हर प्राण हर उत्तम रिद अंतर भायो गुरमंत दियो हर कान रहाओ आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर नाम बखान कित विद क्यों पाई है प्रभ अपना मोको करो उपदेश हर दान सत संगत में हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान वड्डे पाग सत संगत पाई गुर सतगुर परस भगवान गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान जन नानक को गुर कृपा भारी हर नाम दियो खिन गान प्रभाती महला चौथा उगवे सूर गुरु मुखर बोले सब रैन संभाले हर गा

एक जैसे सिगार करे बेमान को नाम बिना नकते नक्की को कट कट वो मैया रमत राम राय सब वर्ते सब मैं एक जन नानक को हर के पाधारी गुरु बचन से आयो करी नीक प्रभाती महला चौथा अगम दयाल कृपा प्रभधारी मुख हर हर नाम हम कहे पतित पावन हर नाम ध्यायो सब किल बिख पाप लहे जप मन राम नाम रव रहे दीन दयाल दुख पंजन गायो गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ पाया नगर नगर हर बसयो मत गुरमत हर हर सहे शरीर सरोवर नाम हर प्रगत्यो कर मंदल हर प्रभ लहे जो नर परम परम उद्याने तेसा कुत मूड मुहे जो मृग ना भी बसे बास बसना त्रम त्रम्यो चार गहे तुम वड अगम अगाध बोध प्रभ मत देवो हर प्रभ लहे जन नानक को गुर हाथ सिर करो हर राम नाम रव रहे प्रभाती महला चौथा मन लागी प्रीत राम नाम हर हर जप्यो हर प्रभु वडफा सतगुरु बचन सुखाने हीरे हर तारी हर प्रभु कृपा मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा हर हर दान दियो गुरु पूरे हर नामा मन तन बसफा रहाओ काया नगर वस्यो कर मंदर जप सोबा गुरमुख करपफा हलत पलत जन पै सुहेले मुख उजल गुरमुख तरफा अनपौ हर हर हर लिव लागी हर उर्धार्यो गुर निमखफा कोट कोट के दोष सब जन के हर दूर किए एक पलफा तुमरे जन तुम ही ते जाने तब जान्यो जन से मुखफा हर हर आप करो हर जन में जन नानक हर प्रभ इकफा प्रभाती मैला चौथा गुर सत गुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जपबा तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा दिख दुख दे बाह दे कडबा जप मन राम नाम हर धाबा उपजंप उपाय ना पाये कतहु गुर पूरे हर प्रभ लाबा रहाओ राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रसदा लो मनूर कंचन मिल संगत हर उर्धार्यो गुर हरवा हौ मैं बिखिया नित लोभ लुवाने पुत कलत मोह लुबा तिन पग संत ना सेवे कबहू ते मन मुख पूंगर परदा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम करे हार तुम शरणवा ज्यो जानो त्यों राखो स्वामी जन नानक दास तुम नवा सत्ता पहला प्रभाती विपास करताल महला चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद जप मन हर हर नाम निधान हर दरगे पावे मान जिन जपिया ते पार प्राण रहाओ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान सुन मन हर कीरत अठ अठ न जान सुन मन गुरुमुख पावे मान जप मन परमेश्वर प्रधान खिन खोवे पाप कुटान मिल नानक हर भगवान प्रभाती महला पंजवा विपास इको अंकार सतगुरु प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया पंच तत् रच जोत निवाजिया सेजा तरत बर्तन को पानी निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी मन सतगुरु सेव होए परम गते हरक सोगते रहे निरारा का तू पावे प्राण पते रहाओ कातड़ पोग रस अनक पुंचाए मात पिता कुटंग सगल बनाए रिजक समाहे जल फल मीत सोहर सेवो

कलेश जो तिस पावे सो फल होस तिस गुर को हो सब बल जाई जिस प्रसाद हर नाम दियाई ऐसा गुर पाए वडवागी जिस मिलते राम लिवलागी कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी सगल गटा के अंतर जामी आठ पैर अपनी लिवलाए जन नानक प्रभु।

पाए भगत हर सो मनमाना। सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगे अतोले। सदा सदा प्रभ गुण निज गाय, कहो नानक वड पागी पाये। प्रभाती महला पंजवा, से तनवंत सोई सच साहा। हर की दरगे नाम विसाहा, हर हर नाम जपो मन मीत। गुरपुरा पाये वड पागी।

पार ब्रह्म प्रभु सुगुण सुजान गुरपुरा पाये वडबागी दर्शन को जाये पुरबान रहाओ किलगित में ते शब्द संतोख नाम आराधन हो आजोग साध संग हो आ प्रगास चरण कमल मन माए निवास जिनकी आकिन लिया राख प्रभु पूरा अनाथ का नाथ जिसे निवाजे कृपाधार पूरन कर्मता के आचार गुण गावे नित नित नित नवे लख चौरासी जोन न भवे इहां उहां चरण पुजारे मुख उजल साचे दरबारे जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास जल तल मैयल पेखे परपूर नानक कुदरस तिस जन की दूर प्रभाती मैला पंजवा कुर्बान जाई गुरपूरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने।

राम राम राम राम जाप, कल कलेश लोग मोह बिन सुजाए अहंताप। रहाओ आप त्याग संत चरण लाग, मन पवित्र जाहे पाप। नानक बालक कछु ना जाने, राखन को प्रभु माई बाप। प्रभाती महला पंजवा, चरण कमल शरण टेक। ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक। रहाओ प्राण आधार दुख बिगार, दैनहार बुद्ध विवेक। नमस्कार रखनहार, मन आराध प्रभु मेक। संत ऋण करो मज्जन, नानक पावे सुख अनेक।

जीवन मुक्त जा शब्द सुनाए, सच्ची रह सच्चा सुख पाए, सुख दाता दुख में तहारा, अवर न सूजस भी जी कारा, तन मन तन हर आज्ञा राख्या, नानक कहे महारस चाख्या, प्रभाती महला पहला, निवली करम पुलंगम पाथी, रेचक पूरक कुंभ करे, बिन सतगुर किछ सोजी नाही, पर में पूला बूड मरे, अंदा परया पर पर कोवे, अंतर की मलक दे नाल है, नाम बिना फोकट सब कर्मा, जो बाजी गर परम पुले, खट कर्म नाम निरंजन सोई, तू गुण सागर

बाद ओ परम पूले मरो न कोई सतगुरु से सदा सुखोई बिन सतगुरु मुक्त किने न पाई आवे जाए मरे मर जाए तो शरीर है त्रै गुण तात किसनो व्यापे शोक संता।

पयाल जाए क्यों चलिए जे बल रूप पचाने राजा जनमेजा दे मती ब्रज व्यास पराया तिनका जग अठारे काए कीर्तना चले चलाया गणत न गनी हुकम पछाना बोली पाए सुवाई जो किस वर्ते तुरे सवाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलपत लेप कदे न लागे सदा रहे शरणाई मनमुख मुगद आगे चेते नाही दुख लागे पछताई।

अंतर जूठा क्यों सुठ होए, सब दी तो वह विरला कोए, गुरमुख कोई सच कमावे, आवन जाना था कहावे।

हर जस कर्म धर्म पत पूजा, काम क्रोध अग्नि में पूजा, हर रस चाख्या तो मन पीजा, प्रणवत नानक अवर न दूजा, प्रभाती महला पहला, राम नाम जप अंतर पूजा।

चल गुरु बूझ बुझाई, प्रभ निवाजे किन कीमत पाई, कहो नानक गुरु बूझ बुझाई, नाम बिना गत किने न पाई, प्रभाती महला पहला, इक तुर बख्श ले गुरु।

आई, बिन सत बार ना लागे काई रहाओ। मन मुख को दुख दर्द भी आपस, मन मुख दुख ना जाई, सुख दुख दाता गुरमुख जाता, मेल ले शरणाई। मन मुख ते अब पगत ना होवस, हो मैं पचे दीवाने, इव मनुआ सिन ऊप प्याली, जब लग शब्द ना जाने, भूख प्यासा जग पया, तृप्त नहीं बिन सतगुर पाए, सहज सहज मिले सुख पाए, दरगह पैदा जाए, दरगह दाना बिना एक आपे, निर्मल गुर की बाणी, आपे सुरता सच विचारस, आपे बूझे पद निर्माणी, जल तरंग अग्नि पवने फूने।

ज्ञान रतन प्रगट होए। मनमुख मूल न जाननी मानस हर मंदर न होए। हर मंदर हर जियो साजिया रखिया हुकुम सवार। तुर लेख लिखिया सो कमावना कोई ना मेकन हार। सबद चीन सुख पाया सच्चै नाए प्यार। हर मंदर सब दे सोहना कंचन कोट अपार। हर मंदर एहो जगत है गुरबिन कोरंतार।

हर मंदिर में मन लोहत है, मोया दूजे भाए, पारस पेते है कंचन भया, कीमत कही ना जाए। हर मंदिर में हर वसे, सर्व निरंतर सोए, नानक गुरमुख बन जिए, सच्चा सौदा होए। प्रभाती महला की जा, कह पाए जागे से जन जागरण करें, होमे मेल उतार, सदा जागे कर अपना राखें, पंच तस्कर का डैमार। मन मेरे गुरमुख नाम ध्याए, जित मार्ग हर पाए, मन से ही कर्म कमाए रहाओ, गुरमुख सहज तुम उपजे, दुखों में विच्चों जाए। हर नामा हर मन वसे, सहजे हर गुण गाए, गुरमति मुख सोने, हर राख्या उधार, ऐसे ओके सुख गणा।

तय सुहोग विपास प्रभाती मैला पन्यवा अष्टपदियां इको अंकार। सतगुरु प्रसाद मात पिता पाई सुत बनता चूगे चोग आनंद स्यों जुगता उर्ज परयो मन मी

बौर कमा में हुए निशंक, जमपुर बांध खरे कालंक, कुगर बांध बजा में काला, अंतर कपट सुरे बेताला, वर्मी मारी साप नमुआ, प्रभ सब कुछ जाने जिन तू किया, कुंवर काप गेरी के बस्तरा, अपदा का मारिया गे के नस्ता, देश छोड़ पर देश है धाया, पंच चंडाल ना ले ले आया, कान पर आए हिराए तू का, कर कर मांगे तृप्तावन ते तू का, बनता छोड़ बद नजर पर नारी, वेश ना पाये महा दुखियारी, बोले ना ही हुए बैठा मोनी, अंतर कल्प पवाई है जोनी, अंते रहता दुख देही सहता, हुक्म ना बूझे व्याप्या ममता, बिन सतगुरु किने न पाई परम गते, पूछो सगल वेद सिमरते, मन मुख कर्म करे अजाई, जो बालू कर खौर न ठाई, जिसनो पै गोविंद दयाला, गुर का बचन तिन बांधियो पाला, कोट मदे कोई संत दिखाया, नानक तिन के संग तराया, जे होवे पाग का दर्शन पाईए, आप तरह सब कुटुंब तराईए, रहाओ दूजा प्रभाती महला पंजवा, सिमरत नाम किलद सब काते, धर्म राय के कागर फाते, साध संगत मिल हर रस पाया, पार ब्रह्म रिद माए समाया, राम रमत हर हर सुख पाया, तेरे दास चरण शरणाया रहाओ, चूका गौण मिटिया अंधियार, गुर दिखलाया मुक्त द्वार, हर प्रेम भगत मन तन सगराता, प्रभु जनाया तब ही जाता, कट कट अंकर रवे

टूटा गांडा जब कब संजम नाम समा लिया अपने ठाकुर नगर निहा लिया मंगल सुख कल्याण तिथाई जय सेवक गोपाल गुसाई प्रभु सो प्रसन्न तय गोपाल जन्म जन्म के मिटे विताल होम जग उर्द तप पूजा कोट तीरथ स्नान करी जा चरण कमल निमख हृदय धारे गोविंद जपते सब

ठाकुर माप पिता हर प्रीतम मेरा मीठा जन भरवासा तेरा कर गए लीने अपने दास जप जीवे नानक गुणतास विपास।

जो जन जान बजे पुरखोत्तम काशी अवगत बाणी नामा कहे जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी परवाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया।

रिव अंतर कर तल काती। ठग दुष्ट बगा लिव लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल भगवत

तिल पूजस चक्र गणेशं निस्जागस पगत परवेशं पग नाचस चित्त अकर्मं एलं पट नाच अधर्मं मृग आसन तुलसी माला कर उजल तिलक कपाला हृदय कूर कंठ रुद्राथं रे लंपट कृष्ण अवाखं जिन आत्म तत्व न चीनिया सब फोकट धर्म अवीनिया कहो बेणी गुरुमुख त्यावे बिन सतगुरु बाप न पावे।

राम भज जन्म सिरात है, कहो कहा बार बार समझत नह क्यों गवार, बिनसत नह लगे बार पूरे समगात है रहा। सगल परम डार दे गोविंद को नाम ले,

बनता विनोद सुख कतंच भात मेट हित बंध कतंच मोह कुटुंबते कतंच चपल मोहनी रूपं देखंते त्यागं करोत।

गुरु दिसै दुखम थान बसंत पूछै मैं सिमरंत मरण सदा छिते। होवंत आ गया भगवान पुरखे नानक की सास अकर थके।

प्राप्तम धर्म लखन नानक जैसो परसन माधवे मृत मोहं अलप बुद्धन रचंत बनता विनोद साहन जो बन बे कर्म कनक कुंडले बचित्र मंदर शोभंत वस्त्राय।

धने दयाल एक भगवान पुरखे नानक सर्व जी प्रत पाल के अनित्य वित्तं अनित्य चित्तं अनित्य आशा बहुविध प्रकारं अनित्य हेतं अहं भं अहं बंधं भरं।

होत अंधकार सिमरत प्रकाशन गुण रमत अघ खंडने हृद बसंत बह भीत दूते कर्म करत महानिर्मले जनमे मरण रहंत स्रोता सुख समूह।

बते विपरीत बुद्धन मारत लोक है नानक चिरंकाल दुख भोगते।

नच बिदया निधान निगम नच गुण गय नाम कीर्तने नच राग रतन कंठन नह चंचल चतुर चातुर भाग उद्यम लब्धं माया नानक साध संग खल पंडते कंठ रमणी राम राम माला हस्त ऊच

अजाभोदंत कंद मूलं बसंते समीप कुल हरे तत्र गते संसारिनान सोग हर्षं व्यापते छलं छिद्रं कोट विघ्नं।

ਸਿਆਲ ਖਰੇ ਬਿਖਮ ਸਥਾਨ ਮਨ ਮੋਹ ਮਦਰ ਮਹਾ ਅਸਾਦ ਪੰਚ ਤਸਕਰੇ ਹੀਤ ਮੋਹ ਭੈ ਭਰਮ।

परम बारं आवर्ते एते सुत अक्षणे गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन मतन बलवंत बलात् कारणे चरण कमल लय भजंत तृण समान धिग जनमने हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरन।

कदे न चित्तो जाता अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग के तो अप जसन मिटंत सत पुत्र सिमर तवर गए।

हर सिमरिए ऐसा सिमरो नित अमरा पुरबासा करो हर गया बहोरे बित कबीर सेवा को दोए भले

कवि केवल काची धात साबत रखे ता राम भजे नहीं ता बिन की बात। कबीर केसो कुकिया ना सोए सारे रात।

कबीर राम रतन मुख को तेरी तारक आगे खोले कोई आए मिले जो गाती ले दो महंगे मोल कबीर राम नाम जाने नहीं।

जीवन के पंखी चले दिसावरी बिरखा सुकल कलंक। कबीर साधु संग पर आपकी लिखिया होए लिलात, मुकुट पदार्थ पाये खाक न अवगत काट। कबीर एक करी आदि हूँ तो आदे,

खेलत खेलत हाल करे जो कुछ होए ता होए। कबीर जो तुम खाद तिरम की ताके से की खेले, काची सरसों तेल के ना फल पई ना तेल। कूंदत डोल है अंगगत अर चीनत ना ही संत, कहनामा क्यों पाये बिन भगतों भगवंत।

खल डूंगर पवे ओवन अज करी दे कूजड़ा सै को माखी ओम ओइदा राती वड्डियां कुक्क उठन पास सिज तिना दा जीरिया जिना विदानी आस करीदा जे मैं होंदा वारिया निता आयड़िया।

कंध कुहारा सिर कड़ा वन के कर लोहारे खरीदा हूँ लोड़ी सो अपना तू लोड़ है अंगियार खरीदा इतना आटा।

पछोताओ वत कुआरी ना किए कलर केरी छपड़ी आए उलते हांजे सिंजू बोरन ना पीवे उड़न संधी डंजे हंस उदर कोदर पया लोक विदारण जाए जहला लोक ना जानदा हंस ना कोदरा खाए चल चल गईया पंखियां जिनी वसाए तल फरीदा सर परिया पी चलसी थके कवले कले फरीदा इत सिराने पोए सन कीड़ा लड़े मास केतड़े

जो जन पीर निवाजिया तिना अंत न लाग। महला पंजवा फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सुवनड़ी देहे विरले के पाये ने जिना प्यारे ने। कंदी वहन ना पाए तो भी लेखा देवना जे कर रब रजाए वहन सिदाओ गौ करे। फरीदा दुखा से पी दियो गया सूला से पी रात खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा पत्थर रात। लम्बी लम्बी नदी वह कंदी के रहे के बेड़े नो कप

मामल आखी से था बंदगी चलन अज के कल फरीदा मोतैदा बन्ना एवें दिसै जो दरिया वैता अगे दोजक तपया सुनिए हूल पवै कहा इतना नो सब सोजी आई इक फिर देवे करवा।

रावणे जिना विसारियों नाओ ऐसे दुख कनेरिया अगे थौर न छाओ फरीदा पिछल रात ना जाग्यो जीवन दरो मोयो ए जे तें रब विसारिया ता रब ना विसरियो ए महला पंजवा फरीदा कंक रंगावला वड्डा वे मुहताज अल्ले से ती रतिया एहो सचावा साज महला पंजवा फरीदा दुख सुख इक कर दिल ते लाए।

क्या चल नाले इक जा बंदे नाल हैं इतना कुत्तियां दे उठाल तू देंदी है सुहाग को सौ तन काई कोरे जिन्ना नाव सुहागनी तिन्ना छाप न होर सबर मंज कमान ए सबर का नीहनो।

सिर तल उपर पाए। मैं जानिया वड हंस है ताने की पासंग, जो जाना बग बकुड़ा जन्म न पेड़ी अंग। क्या हंस क्या बगुला जाको नदर करे जो किस पावे।

मंते कम सुवे सोह करी जित वस आवे कंते निहन सो अखर खान गुण जो बामनिया मंते के प्रतैनी वेश कर तावस आवी कंते मत होंगी हे आना कान होंगे हे निताना अन होंगे आप वंदाए को ऐसा भगत सदाए एक सिक्का ना गालाए सबना में सच्चा तई ह्याओ न कही ठाए मानक सब अमोल वे सबना मन

आन नहीं तुम भक्ते हर अंत नहीं पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दर कुले ब्रह्म संसय एक दिन क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार अमृत प्रवास हर अतुल भंडार भर परे ही ते परे अपर अपार पर आपनो भावन कर मंत्र न दूसरो धर उप तो कर लो एक निमक तो हर आन नई समसर उजियारो निर्मल कोट पर छते जाए नाम लिए हर हर जन नानक भगत दल कुल ब्रह्म समसर एक दी क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार।

जन नानक भगदर तुल ब्रह्म समसर ए जी क्या बसन है हाके बल बल बल बल, बल, बल, बल, बल, बल, बल, बल, बल

कै सूत है जहानी कवन उपना उपमा देओ बड़े ते बड़ान जाने कौन तेरो धेओ अलख अपार देओ अकल कला है सब सर्व को धान जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हाके बल बल बल बल सद बल हा।

जय कृपाल हर हर भयो, हर गुरु नानक जिन परसयो, हे जन्म मरण दूं ते रहो। सत सत हर सत सत सत सत भणिए, दूसर आन न आवर पुरखे, पूरा तन सुनिए। अमृत हर को नाम लेत मन सब सुख पाए, जे रसन साखो तै जन तृप्त अधाए। जे ठाकुर सो परसन भयो, सतसंगत तै प्यार, हर गुरु नानक जिन परसयो, तिन सब कुल कियो उधार। सच सभा दीवान सच सचे तै धरयो, सचे सत निवास सच तथावस करयो। सच सुन जो सन

बिचरत बिकले बड़ो अभिमानी, पर धन पर अपवाद नार निंदा, ये मीठी जी माए हितानी। बल बंट छप करत उपाया, देखत सुनत प्रभ।

हर तारन तरन समरथ सवैद कुल समूह उदाहरण सो चित चेत अचेत जान सत संगते धर्म अंधेर मोयो कत धो मूरत घड़ी सापल सिमरन राम नाम रखना संगलो हो तो काज अलग सुख बंधन।

ओट जन्म कहा दुख भाव सिखा संत नाम भजनान के राम रंग आत्म चोरों रंच करे खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार भरी खान पान सोधे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात का भाई अर बंधते बूझन के सब सोज परे बरमान होवत दिन प्रतिनित आवत निक

नानक काट भरम भरी। रे मन मूस बिलावे गर्वत कर्तव करत महाम भुना। संपत धौल धूल संग झूलत माया मगन भरमत घुगना। सुत बनता साजन सुख बंदते तासु मो बड़ो सुघना। बोयो भीत अहं मम अंकुर बीतत औध करत अधना। मृत मंजार पसार मुख निरखते भुंचत भुगत भूख भुखना। सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जगे जानत सुपना। देहे न देहे ननहे ननीता माया मत कहा लो मादारो। देहे न देहे ननहे ननीता माया मत कहा लो गारो। छत्र न पत्र न चौर न चावर बैठी जात हृदय न विचारो। रथ न अश्व न गज सिंहासन छिन में त्यागत नाम सिधारो। सूर न वीर न मीर न थानम संग न को दृष्ट निहारो। कोट न ओट न कोश न छोटा कर्त विकार दो कर झारो। मित्र न पुत्र कल्प साजन सुख उल्टत जात बिरख की छारो। दीन दयाल पुरख प्रभु पूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो। श्रीपत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो। प्राण मान दान मग जोहन चीत चीत दे ले ले तारी। साजन सैन

एवं करते शोध तन जारी करम धर्म संजन सुख सुचनेमा करम धर्म संजन सुचनेमा चंचल संग सगल विदहारी पथ पंखी बिरख अचतावर बौगंद जौन भम्यो अत भारी सिन पल चसा नाम नहीं सिमर्यो दीना नाथ प्राण पथ सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उधरे और माया मगन चले सब डारी ब्रह्मांडक शिव छंद मुनि सर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरत धरणी गगन आवत फुन धावत सिद्ध मांस

कर कृपा संत आप करो है, गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आसमारी। औषध मंत्र तंत्र पर दुख हर, सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मद सर तृष्णा, बिन सजाए हर

भगत दीन गुण रहे सहज आत्म रंग माणे, योग ध्यान गुरु ज्ञान बिना प्रभ आवर न जाने। सुखदेव परिखत गुण रहे गौतम रिख जस गायो, कब कल सुजस ना।

करतार करह समरथो। सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरयो जिन हथो, तै धरयो मस्तक।

जातु दृष्ट अमृत धार, काल को खन उतारे तिमर अज्ञान जाए दर्श द्वारे। ओ जो से

लैणा जगत गुरु पर सुमुरार, दृष्ट भरत काम हरण दहन अघ पाप परासन, सबद सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन, लोभ मोवश करण शरण जाचिक प्रतपालन, आत्मरत संग्रहण कहन अब

गरल नाथ कन न थियो अम्यो अंतरगत पियो रुद बिनास जागयो अलग कल धरी जुगंतर सतगुरु सहज समाद रहो सामान निरंतर उदारो चित दारद हरन तिखंते कलमल प्रसन्न सब रंग सहज कल उचरे जस जमतो लेने रसने नाम औखद नाम आधार अर नाम समाज सुख सदा नाम निशान सो है रंग रचो नाम सो कल नाम सुर नरे बो है नाम परख जन पायो सत प्रगटो रवलो दर्शन परसे गुरु कै अठ मजन हो सच तीरथ सच स्नान अर भोजन भाव सच सदा सच भाषंत सो है सच पायो गुरु सबर सच नाम सुगंती बो है जिस सच संजम वर्त सचे कब जन कल खाने दर्शन परसे गुरु कै सच जन्म परवाणी हमें दृष्ट शुभ करे हरे अघ पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोवश करे सदै बल सदा सुख मन वसै दुख सन

तीरथ रव तिर प्रगण संसारे सात सरोवर मवल सराम। उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम जय जयकार जपंत नरा। हर नाम रसन गुरुमुख बर

सोई नाम अचल भगते भवतार। अमरदास गुरु को पुरिया चित नाम लागते तुझ से ध्याई जति कपि।

सतनाम गुरु गंभीर गुरु मत सत कर संगत उदरिया सोई नाम अचल भगत भाव धारण अमरदास गुरु को पुरिया नाम कित संसार किरण रहो सुर कर साथे उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस भाके जन्म तयो सखियत जित नाम हर हृदय निवासे सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन आशा से भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोर कर ध्यायो सोई नाम भगतवत भव जल हरन गुर अमरदास तय पायो नाम धुआवे देव कैपीस और साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड धारे जय नाम समाधेव हरक सोग समतर सहारे नाम शिरोमण सर्व में भगत रह निवधार सोई नाम परार्थ अमर गुरु

सुख पायो अमर गुरु की खोजो। नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी। धन सत गुण सेवे जिस पसाए गत

हृदय बसो अत हो सोए रस नहीं जातो। मुखों भगत उतरे अमर गुर इतरंग रातो। मस्तक निशान

चरण तपर सत्यत चरण गुर अमर पवल्ले। हथ तपर सत्यत हथ लगे गुर अमर पे। जी तपर सत्यत जी गुर अमर भरजे।

करवणी गुर अमर सुन जय सत सोहियो जित ही बसे गुर अमरदास निज जगत पिते सत्यत सो सुर जालक भणे जो सुर ने गुर अमर निते ते नर

गुरु अमरदास पर से ध्यान ले तुम कहे। गुरु अमरदास पर है अभो लभ है गुरु चुक है। एक बंधु गण जो तो रहे जासमंत मानो लहे। जाल पा पदार्थ इतने गुरु अमरदास जिथे मिले। सच नाम करतार सुदृढ़ नानक संग्रह हो ताके अंगद ने।

जो गुण अलख अगम तिने गुण अंत न जानो। बोलतो विधाते निर्मयो सब संगत कुल उधर है। गुरु अमरदास कीरत कहे त्राहे त्राहे तो पासरन। आप नारायण कलाधार जग में परवर्यो निरंकार आकार ज्योत जग मन।

कर को दंड तरंग अंत को पावे। रुदन ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन भल उन्हें जो गावे।

अबनास अब गत गयायो। इस भेंटे दारिद्र न चमते कल सहारता।

नाम निरंजन उर घरया। हर नाम रसक गोविंद गुण गाहते, चाहत तत समत सरे। कब कल ठकर हर दास तने, गुरु राम दास सर अबर भरे। छूटत परवा अमेव अमरा तत, अमृत सरोवर सद भरया। ते पीरे संत करे मन मज्जन, उबजनो सेवा करिया। तिन भव निवार अनभय पद दीना, शब्द मात्र ते उधर धरे। कर कर्ण छकुन हर दास तने, गुरु राम दास सर अवर भरे। सतगुरु मत गुरु।

रंजन खरेला। सतगुरु दयाल हर नाम दिलाया, इस पर साधवस पंच करे। कर कर ठाकुर हरदास तनी, गुरु राम दास सर अभर भरे। अनुभव अनुमान अकल लेव लागी, पारस भेटिया सहज घरे। सतगुर प्रसाद परम पद पाया, भगत भाए भंडार भरे। मेटिया जन मंत्र मरण भव, भागत

भीम भरत परवासी तुम पुबली न होते सतगुर शब्द अथाओ अम्यो धारा रसगुत्ते मत माता संत।

गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल धोवे जियो। सतगुण नाम एक लिव मन जते, जिन जन दुख पाप को

असिद्ध साध मुन जन सुर नर जाती सबद सार एक लिव लाई है। सुन जाने को तेरा अपारे निर्भव निरंकारे अकथ कथन हारे तुझे बुझाई है।

नाम सो अपार सार दीनो गुरुद धरे नल कौ पारस परस कच कंचना हुए चंदना सुबास जास सिमरत अन करे जाके दे

पांव तह नीर सर अवर अनल अनाद कियो। सकल खनिस सूर दिन सैल करो फल फूल दियो। सुर नर सपत

दास भट बेनत कहे, जो गुरु नाम हृदय में धरे सो जन्म मरण दोते रहे। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर कर सच बिचारे, गुर करे मन मेरे, गुर कर शब्द सुपन अघन कटे सब तेरे। गुर नैन भैन गुर गुर करो, गुरु सत कब नल कै, जिन गुरु न देखो न कियो ते अकथ संसार में। गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारण तरण समर्थ कलयुग सुनत समाद शब्द जिसके रे। सुन दुखन नाश सुखदायक सूरो, जो धरत ध्यान बस्त तैने रे। पूरो पुरख हृदय हर सिमरत, मुख देखत अग जाए परे रे। जो हर बुध हृदय सिद चाहती, गुरु गुरे गुर कर मन मेरे। गुरु मुख देख गरु सुख पायो, होती जो प्यास प्यो सेवन की, बंसत सिद्ध को विद मिलायो। पूरन भवन ठौर बसोरसे, बासन सुजो दंस धायो। गोविंद वाल गोविंद पुरी, समजलन तीर विवास बनायो। गयो दुख दूर।

निस्बासुर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भांडरो भन दास तो आस जगत गुरु की पारस भेत परस करो रामदास गुरु हर

ज्ञानियों शब्द हर हर जपे नाम नवनिध आपे रसन ऐनित रसे सत कर जानियों सुनु प्रेम रंग पाइए गुरमुखे ध्याइए अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियों बचन गुर रिद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख इत उत

उदत गुर गहर गमीर बेअंत हर नाम नगे हीर मन मिलत लेवलाये सुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुर्मत हिरते शब्द गुरु ध्याये अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुरु बिमल सर संत।

परमानंद गुरुमुख कयन पर तख दे पार ब्रह्म स्वामी आदि रूप पोखण भरण सतगुरु गुरु सेव।

जग जन्म मरण भगाए आई ही ए परतीत ही ए आई जिन जन के

का ब्रह्म भरम शुभ छुटका, अवलोका ब्रह्म भरम सब छुटका, देव दृष्ट कारण करण सतगुरु गुरु सेव।

करें पर भात शुद्ध मन गुरु पूजा दिज सहत करन। कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपे ध्यान धरन। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मेरिया पूर्व विद बरन। सतगुरु गुरु सेव अलग

तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन इक में जल हर बिंब जुगत जग रचा। कुंडली सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा। श्री गुरु साहेब सब ऊपर म

इंद्रियों बले छलन सबल मलन भंग फलन कान कुर नय करंत बजी डंक चढ़े दल रविंद्रियों राम रवण दुर्त दमन सकल भवन।

गुरु सत जियो। गुर के आमाने निज निधाने सच जान मंत्र एह नित बासुर स्वयान। लहे परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन संसार धो। होमे का फंद काट साध संग रत जियो। देह गे ते सने चित बिलास जगत एओ चरण कमल सदा सेओ। दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही धार सजनिकार मन।

ही पाता। गुरमुख संगत सबे विचारो, वाओ वाओ का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा। वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन पयाल पूर रहा, अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मा

सत संगत से ती मन खचना किया खेल बड़मेर समासा वाहे गुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अनाद

गुर समरथ गए किरिया धूप बुध सुमत समारन को उन धम दूजा फैरंत सदा अग पुंज तुरंग निवारन को मथुरा जन जान कहीं जय साज तो और कछु न विचारन को हर नाम बहुत बड़ो कल में भव सागर पार उतारन को संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है ब्रह्म पंथ धर्यो धर्मी धर आप रहे ले उदाहरण।

रव के सुख को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चित लावत है निर्मल नाम सुधास पर पूर्ण सब त्रंग प्रगट तिन आदर। गहर गंभीर अथायत वन सुबर सदा सब विद रतनागर, संत मराल करे कंतु हल तिन जम प्रास मिट्यो दुख का।

ध्यान धरे फिरत सगल जुग कभू को पावे आत्म परगास को। वेद बाणी सहते ग्रंथ जस गावे जाको शिव मुन गहना सजा।

कर गए तेज तुम लोक प्रजा से। देखत दर्श भटक भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे। सेवक सिख सदा अत लुभते अल्प मोजो कुसुम सुबासे। विद्यमान गुर आप।

जाके बसीस धर्यो गुर हथे। तीन भवन भरपूर रहो सोई, अपन कर सकियो ना जगत कोई। आपन आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे, असुरे नर गण गंधर्व को जंत फिरे। अविनाशी अचल अजौनी, संभो पुरखो तुम आपार परे। करण कारण समरथ सदा।

आयो सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोविंद दियो अंगद अनंत मूरत निज धारी अगम ज्ञान रस रस हियो गुरु अमरदास।

सुदामा खूब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा और कबीर भणन तिनको अवतार।

मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिटियो जो तिणन। बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिटियो जो खिणन। कर्म कर तो दर्श परस पारसन बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तै हर परम पद पायो। जै सित सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन। जै सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जै सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जै सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निध पावे। सोई रामदास गुण बल भण मिल संगत धन धन करो। जै सतगुर लग प्रभु पाईए सो सतगुर सिमरो नरो।

जय तिखत अत होए रहत मन सोई। संत सहार गुरु रामदास, नानक नाम निरंजन जानो कीनी भगत प्रेम निवलाई। साते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन सबद सुरद।

जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सो जस वखाण्यो भगत जोग को जैतवार।

दम भर सहता भय बंजन पर पीर निवारण कल संहार तोए जस भगता कुल सौदी गुरु रामदास तन धर्म भुजा अर्जन हर भगता।

कहे मथुरा अमृत मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन सिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धर्यो आद पुरख पर तथे लिखो अक्षर मस्तक धुरे प्रगट ज्योत जगमगे तेज भूमंडल छायो परस परस परस परस।

सतगुर के पाने जो चले तुत पासे हर गुण गाए, तन तन कर जुग नानका जे चले सतगुरु भाए। सतगुरु ना सेवियो शब्द ना रखियो उधार, तिग तिना का जीविया तित आए संसार। गुरमति

0: नाम रतन प्रकाशिया मन तन निर्मल होए। नाम हीन नक्शे फिरे बिन नाम बह रोए, नानक जो तुर करते लिखिया सो मेट न सकते कोए। गुरमुखा हर तन खटिया गुर कह शब्द विचार, नाम पदार्थ पाया तुत परे भंडार। हर गुण बाणी उचरे अंत न पारा वार, नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार।
1: गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़या दसवें आकाश, तिथे ऊंग न पुख है हर अमृत नाम सुखवा।

जम्मन मरण न चुकई रंग लग्गा दूजे भाए बंधन बंद भवायन करना कछु न जाए जिनको कृपा धारियन तिना सतगुर मिलिया आए सतगुर मिले उल्टी भई मर जीव्या सह सुवाए नानक भक्ति रत्या हर हर नाम समाए मनमुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराई कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाए न पाई पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह।

पुत कलत मोहित है अंत बेली को न सिखाए, सतगुरु सेवे सो सुख पाए नाम वसै मन आई, नानक से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाई। मनमुख नाम ना चेतनी बिन नाम है दुख रोए, आत्मा राम ना पूजनी दूजे क्यों सुख होए, हौ मैं अंतर मैल है शब्द ना काढ़े तोए, नानक बिन नावे मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए। मनमुख बोले अंगले तिसमें अग्नि का वास, बाणी सुरत न बुझनी शब्द न करें प्रगास, ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुरु वचन ना करें विश्वास, ज्ञानिया अंदर गुरु शब्द है नित हर लिव सदा विगास, हर ज्ञानिया की रख

बिख का मारण हर नाम है, गुर गरुड़ शब्द मुख पाए, जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए, मिल सतगुरु निर्मल होया, बिख हो मैं गया बिलाए, गुरमुखा के मुख उजले हर दरगे शोभा पाए, जन नानक सदा कुर्बान तिन जो चाले सतगुरु भाए, सतगुरु पुरख निर्वैर है नित हृदय हर लिवलाए, निर्वैर नाल वैर रचाएंदा अपने कर लूकी लाए, अंतर क्रोध अहंकार है अंदिन जले सदा दुख पाए, कूड़ बोल बोल नित पौंक दे बिख खा दे दूजे भाए, बिख माया कारण परम दे फिर कर कर पत गवाए, बेसवा के रे पूत ज्यो पिता नाम तिस जाए, हर हर नाम न चेतनी करते आप खुआए, हर गुरुमुख कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए, जन नानक तिस बलिहारण जो सतगुरु लागे पाए, नाम लगे से उबरे बिन नाम है जम पुर जाए, नानक बिन नाम है।

जिनको पूर्व लिखिया तिना पेटिया गुरु गोविंद, नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद। सतगुर सेवन आपना गुर शब्दी विचार, सतगुर का पाना मन लैन हर नाम रखे उरदार। ऐथे ओथे मनियन हर नाम लगे व्यापार, गुरमुख शब्द संजाप दे तित साचे दरबार। सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार,

ए मोह माया सब पसरिया नाल चले नामती वार बिन हर शांत ना आवे किस आगे करी पुकार वड पागी सतगुरु पाया बूझिया ब्रह्म विचार तिसना अग्न सब बुझ गई जन नानक हर उरदार असी खत्ते बहुत कमाम दे अंत ना पारा वार हर कृपा करके बख्श ले हो हों पापी वड गुनहगार हर जियो लेखे वार ना आवे तू बख्श मिलावन हार गुर तुठे हर प्रभ मेलिया सब किल कट विकार जिना हर हर नाम से आया जन नानक तिन जयकार विछड़ विछड़ जो मिले सतगुर के पै पाए जन्म मरण नहीं चल भये गुरमुख नाम से आए गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लवन नानक लाल अमोल का गुरमुख खोज लहन मनमुख नाम ना चेत्यो तिग जीवन तिग वास जिसदा जित्ता खाना पहनना सो मन ना वस्यो गुणतास ए मन शब्द ना पेदियो क्यों होवे करवास मन मुखिया दोहागनी आवन जान मोयास गुरमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिखियास हर हर नाम उरधारिया हर हृदय कमल प्रगास सतगुर सेवन आपना हो सद बलिहारी तास नानक तिन मुख उजले जिन अंतर नाम प्रगास शब्द मरे सोई जन सिजै बिन शब्द मुक्त न होई पेख करे बहु कर्म विगुते पाए दूजे परज विगोई नानक बिन सतगुरु नाव ना पाईए जेसो लोचे कोई हर का नाव अत वड ऊंचा ऊंची हु ऊंचा होई अपड़ कोई न सकई।

लिखिया सो कमावना करना कछु न जाए, गुरमति ज्ञान रतन मन वसै सब देखिया ब्रह्म सुवाए, नानक सतगुरु बोझै वड पागी चढ़ै ते पौजल पार लंगाए, बिन सतगुरु दाता को नहीं जो हर नाम दे आधार, गुर कृपा ते नाव मन वसै सदा रहे उद्धार, तिसना बुझै तिपत होए हर कै नाए प्यार, नानक गुरमुख पाइए हर अपनी कृपा धार, बिन शब्द जगत बर लिया कहना कछु न जाए, हर रखे से उबरे शब्द रहे लिव लाए, नानक करता सब कित जानदा जिन रखी बनत बनाए, होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण, बिख माया मोह न मिटई विच होमे आवन जान, सतगुरु मिले मल उतरी हर जपिया पुरख सुजान, जिना हर हर प्रभ सेविया जन नानक सतगुरु बाण, माया मोह बहु चित्व दे बहु आशा लोभ विकार, मनमुख अस्थिर नाथिय मर बिनस जाए खिनवार, वड पाग होवे सतगुरु मिले होमे तजे विकार, हर नामा जब सुख पाया जन नानक शब्द विचार, बिन सतगुरु भगत न हो वही ना।

सह हस न पाए, मन मुख छेती संकरे मोह कालक दाग लगाए, मोह काले तिन लोभियां जासन जन्म गवाए, सत संगत हर मेल प्रभ हर नाम वसै मन आए, जन्म मरण की मल उतरे जन नानक हर गुण गाए, तुर हर प्रभ कर तै लिखिया सो मेटना ना जाए, जियो पिंड सब तिसदा प्रतपाल करे हर राय, चुगल निंदक भुखे रुल मोए ए ना हाथ ना किसा उपाए, बाहर पखंड सब कर्म करे

मन आवन जान ना सुजय ना सुजय दरबार, माया मोह पलेटिया अंतर अज्ञान गुवार। तब नर्क पा जा गया सिर डंड लगा भो पार, गुरमुखा करा उपर हर चेतिया से पायन मोख द्वार। नानक आप ओह उदरे सब कुटुंब तरे परिवार, शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस्त्रा पे, हर दरगे गुर सब जापे बिन शब्द मुआ है सब कोए, मन मुख मुआ अपना जन्म खोए, हर नाम न चेते अंत दुख रोए, नानक करता करे सो होए, गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान, सदा सदा हर गुण रवे अंतर सहज ज्ञान, ओए सदा आनंद विवेक रहे दुख सुख एक समान, तिना नगरी इको आया सब आत्म राम पहचान, मन मुख बालक बिरद समान है जिना अंतर हर सुरत नाही, विच हो मैं कर्म कमाव दे सब धर्म राय कह जाही, गुरमुख अच्छे निर्मले गुर कह सब सुवाए, ओना मैल पतंग ना लग गई जे चलन सतगुरु भाए, मन मुख झूठ ना उतरे जे सो तोवन पाए, नानक गुरमुख मेलिया।

नानक गुरमुख मन स्यों लुजै जिना सतगुरु पुरख न सेवियो शब्द न कीतो विचार ओए मानस जून न आखियन पशु टोर गावार ओना अंतर ज्ञान न ज्ञान है हरसो प्रीत न प्यार मन मुख मोए विकार में मर जमे वारो वार जीव दया नो मिले सो जीव दे हर जग जीवन उद्धार नानक गुरमुख सोहने सिद्ध सच्चे दरबार हर मंदर हर साजिया हर वसै जिस नाल गुरमती हर पाया माया मोह पर जाल हर मंदर वस अनेक है नव नाम समाल तन भगवंती नानका जिना गुरमुख लद्दा हर पाल वड पागी गढ़ मंदर खोजिया हर हृदय पाया नाल मन मुख दे दिस फिर रहे अत तिसना लोभ विकार माया मोह न चुकई मर जमे वारो वार सतगुर सेव सुख पाया अत तिसना तज विकार जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द विचार हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान किलविक पाप सब कटिए हो मैं चुके गुमान गुरमुख कमल विक

बिन दर्शन क्यों तृप्ति है, नानक मिले सुभाए गुरमुख के मन रहसी है, जिना प्री प्यार क्यों जीवन फिर बहारे, जासो देखन अपना नानक जीवन भी हरे, जिना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चै लाया, राती अतैडे हो नानक प्रेम समाया, गुरमुख सच्ची आस की जित प्रीतम सच्चा पाई है, अंदर रह आनंद नानक सहज समाई है, सच्चा प्रेम प्यार गुरु पूरे ते पाई है, कबहू ना होवे पंग नानक हर गुण गाई है, जिना अंदर सच्चा ने हो क्यों जीवन फिरी विहुनिया, गुरमुख मेले आप नानक चिरी विछुनिया, जिनको प्रेम प्यार सौ आप पहलाया, कर्म कर नानक लिहो मिलाए, मैं जाचक दीजे नाम।

जिना अंदर नाम निदान है गुरबाणी विचार तिनके मुकसद उजले सच्चे दरबार तिन बैंदियां उठदियां कदे ना विसरै जे आप बख्शे करतार नानक गुरमुख मिले ना विछड़े जे मेले सृजनहार गुर पीरा की चाकरी महाकरड़ी सुखसार नदर करे जिस आपणी तिस लाए हे प्यार सतगुर की सेवै लग्या पौजल तरह संसार मन चिंदिया फल पाए सी अंतर विवेक विचार नानक सतगुर मिले प्रभ पाई है सब दुख निवारण हार मन मुख सेवा जो करे दूजे पाए चितलाए कुट कलत कुटुंब है माया मोह वधाए दरगे लेखा मंगी है कोई अंत ना सकी छाए बिन नाम है सब दुख है दुखदाई मोह माए नानक गुरमुख नदरी आया मोह माया विछड़ सब जाए गुरमुख हुक्म मन्ने सह केरा हुक्मे ही सुख पाए हुक्मो सेवे हुक्म अरादे हुक्मे समय समाए हुक्म वर्त नेम सुच संजम मन चिंदिया फल पाए सदा सुहागन जे हुक्मे बूझे सतगुर सेवै लिव लाए नानक कृपा करे जिन ऊपर तिना हुक्मे लय मिलाए मन मुख हुक्म ना बुझे बपुड़ी नित हो मैं कर्म कमाए वर्त नेम सुच संजम पूजा पाखंड परम न जाए अंकरों कुसुद माया मोह बेदे जो हस्ती छार उड़ाए जिन उपाय तिसे न चेते बिन चेते क्यों सुख पाए नानक परपंच किया तुर करते पूर्व लिखिया कमाए गुरुमुख प्रतीत पाई मन मानिया अंदिन सेवा कर समाए अंतर सतगुर गुरु सब पूजे सतगुर का दर्श देखे सब आए मनिए सतगुर परम विचारी जित मिले तिसना पुख सब जाए हौ सदा सदा बलिहारी गुर अपने जो प्रभ सच्चा दे मिलाए नानक कर्म पाया तिन सच्चा जो गुर चरणी लगे आए जिन प्रिया सोने हो से सज्जन मैं नाल अंतर बाहर हौ फिरा पी हृदय रखा समाल जिना इक मन इक चित ध्याया सतगुर सो चित लाए तिनकी दुख पुख हो मैं वड्डा रोग गया निर्दोख पए लिव लाए गुण गावे गुण उचरे गुण मैं स्वय समाए नानक गुर पूरे ते पाया सहज मिलिया प्रव्याए मन मुख माया मोह है नाम न लगे प्यार कूर कमावे कूर संग्रह कूर करे आहार दिख माया तन संच मरे अंत होए सब चार कर्म तर्म सुच संजम करे अंतर लोभ विकार नानक मन मुख जे कमावे सो थाए न पवे दरगे होए खुआर सब ना रागा विच सो भला भाई जित वस्या मन आए राग नाद सब सच है कीमत कही ना जाए रागे नादे बहारा इन्नी हुक्म ना बूझिया जाए नानक हुक्मे बूझे तिना रास होए सतगुर ते सो जी पाए।

गुरमति नाम निर्मलो निर्मल नाम से आए, अमृत बाणी तत् है गुरमुख वसै मन आए, हृदय कमल प्रगासिया ज्योति ज्योत मिलाए, नानक सतगुरु जिन को मेलियन जिन तुर मस्तक पाग लिखाए, अंदर तिसना अग है मनमुख पुख न जाए।

पुरख हर त्याए दा सतसंगत सतगुरु भाए, सतसंगत सतगुरु सेव दे हर मेले गुरु मिलाए। यो पौजल जगत संसार है गुरु बोहित नाम सराए, गुरु सिखी पाणा मन्या गुरु पूरा पार लंघाए। गुरु सिखा की हर तूर दे हम पापी भी गत पाए, गुरु मस्तक हर प्रम लिखिया गुरु नानक मिलिया आए। जम कंकर मार बिदारियन हर दरगे ले छाए, गुरु सिखा नु सावास है हर तुखा मेल मिलाए। गुरु पूरे हर नाम दिलाया जिन विच्चों परम चुकाया, राम नाम हर कीर्त गाए कर चानन मग दिखाया। हों मैं मार एक लिव लागी अंतर नाम बसाया, गुरमती जम जोहे न सके सच्चे नाए समाया। सब आपे आप वर्ते करता जो पावे सो नाए लाया, जन नानक नाउ ले ता जीवे बिन नामे खिन मर जाया। मन अंतर हों मैं रोग परम पूले हों मैं साकत दुर्जना, नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना। गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई जिन्स रात, हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लबई, सब देखिया जगत में टोले। गुर सतगुरु नाम दृढ़ाया मन अंत न काहू डोले, जन नानक हर का दास है गुर सतगुरु के गुल बोले।

जिसका सब आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। के वस्त जी नह जाई नित नित रख उधारो, तम संसार चरण लग तरिये।

रागमाला राग एक संग पंच बरंगन संग अला पै आठो नंदन प्रथम राग पैर होवे कर ही पंच रागनी संग उचर ही प्रथम पैर ही बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पांचों नारी पंचम हरक दिशा सुनावे।

आई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशक उभारा थोखट औ पौरा नद गाये अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचना।

सुरमानंद पास करे आए चंद्रबिम मंगलन सुहाए सरस बाण औ आए बिनोदा गावे सरस बसंत समोदा अष्ट पुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कांगरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग में गावे पांचों संग बिरंगन लावे।

साच नाई पाखिया भाउ अपार अख है मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगे रखिए जित दिसै दरबार मुहो के बोलन बोलिए जित सुन करे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवे जानिए सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निदान गाविए सुनिए मन रखिए भाव दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहिया समाई।

मन्नै पाथ स्यों प्रगट जाय, मन्नै मग ना चलै पंथ, मन्नै धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होय, जे को मन जाने मन कोय, मन्नै

दरियाओ कुदरत कवण कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद पावे साई पली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मुह पख सार, असंख मोन लिव लाए तार। कुदरत कवण कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे। असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे। असंख मलेश मल भख खा।

अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए।

गत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत ना होए स्वास्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कमण सुवेला वखत कमण कमण थित कमण।

आगास ओढ़क ओढ़क भाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा आसुलू एक तात लेखा हुए ता लिखिए लेखे हुए वनास नानक वड्डा आखिए।

पवह समुंद ना जानिए है समुंद साहा सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होमनी जे तिस मनो ना विसर है अंत न सिफती कहन ना अंत अंत न करने देन ना अंत अंत ना वेखण सुनन ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत अंत ना जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाऊं।

आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना कमाए केते मंगह जोद अपार केतियां गणत नहीं विचार।

ਹਰ ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਪਾਣੈ ਹੋਏ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ ਜੇ

आखह पड़े करह वखियान, आखह बरमे आखह इंद, आखह गोपी तै गोविंद, आखह ईश्वर आख।

आहे केते कह कह उठ उठ जाहे केते कीते होर करे ता आख ना सकहें केई के जेवड़ पावे तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए।

देवतियां दर नाली गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारी गावन पंडित पंडर खीसर जुग जुग वेदा नाले गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले गावन रतन उपाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गाव है जोध महाबल सूरा गाव है खानी चारी गाव है खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गाव है जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस पावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात शाह सहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख चरम पत चोली।

आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग वजोग दोए कार चलावह लेखे आवह भाग आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन केले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवें चलावै जिव होवै।

आद अनिल अनाद अनाहक जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए पंडार जो किस पाया सो एकावार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सया देस आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी पौ लख होहे लख होवह लख वीस लख लख गेड़ा आखियह एक नाम जगदीस एक राहे पत पवड़िया चढ़िया होए अतीस सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नदरी पाई।

जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आख हो कर्म। केते पवन पानी वह संतर, केते कान महेश, केते बर में काड़त करिय है।

नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड इथे नाद बनोद कोड आनंद सर्म खंड की वाणी रूप इथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्लां कथिया ना जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे

सोई सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन अपाई कर कर देखे कीता है अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह सहा पत साहिब नानक।

खाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ हर जन के बड़ भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरन संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया

सतसंगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनता, हुए न किसकी तरिया, सिर सिर रिक संबाहे ठाकुर, काहे मन पौ करिया, उडे उड़ आवे सह कोसा, तिस पासे बचरे शरिया, तिन कवन खलावे कवन चगावे, मन मह सिमरन करिया, सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सत

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुध जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्याव

तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्याव है हर त्याव है तुझ जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूती जमती फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन ना

सब हुए तुद बिन दूजा अवर ना कोई। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला इत सरवर पहले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाले। हम देखा तह डुबी आले मन एक ना चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा। ना हों जती सती नहीं पढ़िया मूर्ख।

ज्यों होवै साहिब स्यों मेल, कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिया नानक से दे आवन। राग आसा महला पहला, शे कर शे गुर शे अपदेश, गुर गुर एको वेश अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख वडाई तोए रहाओ, विश्वे चसियां कड़ियां पहरां, थित्ती वारी माह होआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस, राग तनासरी महला पहला, गगन में थाल, रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बनराए फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए, भव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाउ, सहस तव नैन नन नैन है तुहि कहो, सहस मूर्त नना एक तोहि, सहस पद बिमल नन एक, पद गंद बिन सहस तव गंद इव चलत मोहि, सब मह जोत जोत है सोए, किस दै चानन सब मह चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए, ज्योत इस भावै सो आरती होए, हर चरण कमल मकरंद लोभत मनो।

ही पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडाही, कर साधु अंजुली पुन बड़ाही, कर दंडौत पुन बड़ाही रहाउ। साकत हर रस साधना जानिया, इन अंतर हो मैं कंडाही, ज्यो ज्यो चल है चुभै दुख पावह, जमकाल सह सिर डंडाही। हर जन हर हर नाम सुमानी, दुख जन्म मरण भव खंडाही, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही। हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डाही, जन नानक नाम।

करियो ब्रह्म ज्ञानी जिसै जगाए प्यावै इहो रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजो हर गुरु।

सिद्ध हुआ सिद्ध लाई रिद आखा आओ गुपत प्रगट हुए बैसा लोक राखे पाओ मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवे नाउ सुल्तान हुआ मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवे नाउ श्री राग महला पहला।

कै घट नाम नवास जित बोलिया पत पाई सो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना सुन मूर्ख मन अजान जो तिस भावे है से भले होर के कहन बखान तिन मत तिन पत तिन धन पल्ले जिन हिरदै रहिया समाए तिनका क्या सा लाहना।

जित सेवियां सुख पाईए तेरी दरगाह चले मान रहाओ सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा नाम सुने है वखाण है जेतड़ी हौ तिन बलिहार जाऊं ता मन खीवा जानिए जा महली पाए थाऊं नाऊ नीर चंगियाईयां सत

तिसमिन सब अपवित्र है जीता पहनन खान होर गल्ला सब कूड़िया तुद भावे परवान श्री राग महल पहला जाल मोह कस मस कर।

घर मंदिर खुशी नाम की नदर तेरी परवार हुक्म सोई तुद भावसी होर आखण बहुत अपार नानक

सारे है। डर गया क्या हुए श्री राग महला पहला, गुणवंती गुण वीथर अवगुणवंती झूर, जे लोड़ है वर कामणी नह मिली है फिर कूर, ना बेड़ी ना तुलहड़ा,

रहाउ। प्रभ हर मंदर सोहना तिस मेहमान कलाल, मोती हीरा निर्मला कंचन कोटरी साल। बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो गुर हर ध्यान निहाल, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुलहा हर नाम। गुर सर सागर बोहितो गुर तीरथ दरियाओ, जे तिस भावे उजली सत सर नामन जाओ। पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावने पूरे आस निरास। नानक पूरा जे मिले क्यों घाटे गुणतास, श्री राग महला पहला आवो भैने गल मिले। अंक सहेलड़िया मिलके करह कहानियां, समरथ कंत किया साचे साहिब सब गुण औगण सब असहा। करता सब को तेरे जोर एक शब्द बीचारिये, जा तू ता क्या होर रहाओ। जाए पुछो सुहागणी

आखण आखी है, आखण तोट ना होए, मंगण वाले के तड़े दाता एको सोए, जिसके जी प्राण है मन बसे सुख होए।

जाए। जो तिस भाणा सो थीए अवर ना करना जाए। गुरमुख वस्त वे साहिए सच वखर सच रास जिन्नी सच वणंजिया।

धात मिलै फुन धात कौ सिफती सिफत समाय लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ सच मिलै संतोखिया हर जप एकै पाए पाई रे संत जना की रेण संत सभा गुर पाई मुक्त पदार्थ तेन रहाओ ऊचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार सच करनी दे पाई है दर कर महल प्यार गुरमुख मन समझाई है आत्म राम विचार त्रिविद कर्म कमाई है आस अंदेसा होए क्यों गुर बिन त्रिकुटी छुट सी सहज मिले है सुख होए निज कार महल पछाणी है नदर करे मल धोए बिन गुर मैल ना उतरे बिन हर क्यों घर वास एको शब्द विचारी है अवर त्यागे आस नानक देख दिखाई है हौसा।

फिर टह पाए बिन शब्द सुख ना थिए फिर बिन दुख ना जाए मुंदे फिर बिन क्या शिंगार दर कर ढोई ना लह दरगाह झूठ खुआर रहाउ आप सुजान ना भुले सच्चा वड किरसान पहला धरती साधकै सच नाम दे दान नौनिध उपजै नाम एक कर्म पवै निशान गुर कौ जान ना जाने क्या तिस चज अचार अंधलै नाम वसारिया मनमुख अंध गुबार आवन जान ना चुकई।

दिन सरात गुरमुख हर धन जान सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान नित अहनस हर प्रभ सेविया सतगुर दिया नाम कूकर कूड़ कमाई है गुर निंदा पचै पचान परमे तूला दुख कणु जम मार करै खुलहान मनमुख सुख ना पाई है गुरमुख सुख सुभान ऐथै धंध पटाई है सच लिखत परवान हर सज्जन गुर सेवदा गुर करनी पर

मूर्ख जिस हर मन वसै तिस मेले गुर संयोग काया कामन जी करी भोगे भोगण हार इस सियो नेहो ना की जई जो दिसै चलन हार गुरमुख रवह सुहागणी सो प्रभ सेज पतार चारे अग्न निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल परगासिया अमृत भरिया अगाए नानक सतगुर मीत कर सच पाव है दरगाह जाए। श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाई।

हर हीरा गुर माहे सत संगत सत गुर पाई अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर धन रास लै पाई है गुर प्रगास ज्यो अगन मरै जल पाए त्यों तृष्णा दासन दास जम जंदार न लगई त्यों भौजल तरै तरास गुरमुख कूड़ न पावई सच रते सच पाए साकत सच न पा

हर हीर श्री राग महला पहला परमे पाए ना विजवै जे पवैद संतर देश अंतर मैल ना उतरै त्रिग जीवन त्रिग वेश होर कितै भगत ना हो वई बिन सतगुर के उपदेश मन रे गुरमुख अग्न निवार गुर का कहया मन वसै हों मैं तृष्णा मार रहाऊ मन मानक निर्मूल है राम नाम पत पाई मिल सत संगत हर पाई है गुरमुख हर लिव लाई आप गया सुख पाया मिल सल लै सलल समाय जिन हर हर नाम ना चेतियो सो अवगुण आवै जाय जिस सत गुरु पुरख ना भेटियो सो भौ जल।

गुर मिल पाओ जल लंगिया दरगाह पत परवान नानक ते मुख उजले धुनि उपजै शब्द निशान श्री राग महला पहला वणज करहो वणजारिहो वखर लिहो संभाल तैसी वस्त वसाही है जैसी निबह नाल अगे साहु सुजान है लैसी वस्त संभाल भाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर।

सुख होए, खोटे वणज बणजिए मन तन खोटा होए, ठाही फाथे मिर्ग ज्यो दुख घणो नेतरोए, खोटे पोते ना पवह तिन हर गुर दर्श ना होए, खोटे जात ना पत है खोट ना सी जस कोए, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए, नानक मन समझाई है गुर कै शब्द साला, राम नाम रंग रतिया पार ना परम तिना, हर जप लाहा अगला निरपव हर मन माह, श्री राग महला पहला कर दूजा तन जो

साहिब राव रहया भरपूर रहाओ आपे माछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मणकड़ा आपे अंदर लाल आपे बहु बिदरंगला सखिए मेरा लाल नेत्र वै सुहागनी देख हमारा हाल।

रहै को रहै ना परियै पाई। सोई काजी जिन आप तजिया एक नाम किया आधारू है पी होसी जाए न जासी सच्चा सिरजन हारू। पांच वक्त निवाज गुजार है।

साहिब आवह रोहे, तू ओना का तेरे ओहे। असी बोल बगाड़ बगाड़ बोल, तू नदरी अंदर तोलह तोल। जह करनी तह पूरी मत, करनी बाजहो घटे घट। प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए,

कुदरत करे जहानू जो तिस पावे नानका हुक्म सोई परवानू श्री राग महला पहला कर चौथा कीता कहा करे मन मान देवन हारे कै हाथ दान पावे दे ना दे सोए कीते कै कहे क्या होए आपे सच पावे तिस सच अंधा कच्चा कच न कच रहाओ जाके रुख बिरख आराओ जेही तात तेहा तिन नाओ फुल पाओ फल लिखिया पाए आप बीज आपे ही खाए कच्ची कंद कच्चा विच राज

अंतर हर रस राव रहिया, चूका मन अभमान हृदय कमल पर गासिया, लागा सहज त्यान मन निर्मल हर राव रहिया, पाया दरगह मान सतगुर सेवने अपना, ते विरली संसार हम मैं ममता मार के, हर राखिया उरतार हों तिनके बलिहार ने, जिन्ना नामे लगा प्यार ते सुखिये चहु जुगी, जिन्ना नाम अखुट अपार, गुर मिले नाम पाईए चूके मोह प्यास, हर सेती मन रव रहिया, कर ही माहे उदास, जिन्ना हर का साद आया हों तिन बलिहारे जास, नानक नदरी पाईए सच नाम गुणतास, श्री राग महला तीजा बहु भेख कर परमाईए, मन हृदय कपट कमाई हर का महल ना पावई, मर विष्टा माहि समाई मन रे ग्रह ही माहि उदास, सच संयम करनी सो करे गुरमुख होए परगास, रहाओ गुर कै शब्द मन जीतिया गत मुक्त करे मह पाए, हर का नाम त्याई है सत संगत मेल मिलाए, जे लख इस्तरिया भोग करे नव खंड राज कमाहे, बिन सत गुर सुख ना पावई फिर जोनी पाहे, हर हार कंठ जिन्नी पहरिया गुर चरणी चित लाए, तिन्ना पिछे रिद सिद्ध फिरे ओना तिल ना कमाए, जो प्रभ पावे सो थीए अवर ना करना जाए, जन ना

ब्राह्मणी सच घट प्रगट होए अंतर जिसकै सच वसै सच्चे सच्ची सोए सच मिले से ना बिछड़ै तिन निज घर वासा होए मेरे राम मैं हर बिन अवर ना कोए सतगुर सच प्रभ निर्मला।

सो हुए ज्योति ज्योत समाई, जिनको पूर्व लिखिया तिन सत गुर मिलिया आई। मन भुखा भुखा मत करह, मत तू करह पुकार, लख चौरासी जिन सिरी सब सह दे आधार। निर्भउ सदा दयाल है, सब ना करदा सार, नानक।

अनदिन नाम त्याय रहाउ। साची मैल ना लागई मन निर्मल हर त्याय। गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाय। गुर ज्ञान प्रचंड बुलाया अज्ञान अंधेरा जाय। मनमुख मैले मल परी

नाम निधान सद मन वसै महली पावै थाउ रहाउ मन मुख मन तन अंध है तिसनो ठौर ना ठाउ बहु जूनी पौंदा फिरै यूं सुन्ये घर काउ गुरमती घट चानना

पाय लाहा हर हर नाम मिले सहजी नाम समाय बिन गुर महल ना पाइए नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुर लोड लहू जिदू पाइए सच सोए असुर संगारे सुख वसे जो तिस भावे सो होए जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक जोत दोए मूर्ति शब्द मलावा होए श्री राग महला तीजा अमृत छोड़ बिख्या लुभाणी सेवा करह विडाणी अपना धर्म गवावह बूझह नाही अन दिन दुख विहानी मनमुख अंध ना चेतही डूब मोए बिन पानी मन रे सदा भजहो हर सरनाई गुर का शब्द अंतर वसै ता हर विसर ना जाई रहाओ एहो शरीर माया का पुतला विच हूं मैं दुष्टि पाई आवण जाना जम्मण मरना मनमुख पत गुआई सतगुर सेव सदा सुख पाया ज्योति ज्योत मलाई सतगुर की सेवा अत सुखाली जो इच्छे सो फल पाई जात सत तप पवित शरीरा हर हर मन वसाई सदा आनंद रह दिन राती मिल प्रीतम सुख पाई जो सतगुर की शरणागति हूं तिनकै बल जाऊं दर सच्चै सच्ची वडियाई सहजे सच समाओ नानक नदरी पाईऐ गुरमुख मेल मलाओ श्री राग महला तीजा मनमुख कर्म कमावणी ज्यों दुहागण तन शिंगार सीजै कंतना आवई नित

संतां संगत मिल रहे जप राम नाम सुख पाए रहाउ गुरमुख सदा सुहागणी पिर राखिया उर तार मिठा बोलह निव चलह सेजै रवै पतार सोभावंती सुहागणी जिन गुर का हित अपार पूरै भाग सतगुर मिलै जा भागै का उदौ होए अंतर हो दुख भ्रम कटिया सुख प्राप्त होए गुर कै पाणे जो चलै दुख ना पावे कोई गुर के पाणे विच अमृत है सहजी पावे कोई जिन्ना प्राप्त तिन पिया हों मैं विचों खोए नानक गुरमुख नाम ते आई है सच मिलावा होए श्री राग महला तीजा जा फिर जाने अपना तन मन अगै धरी

गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई, जे लोचै सब कोए रहाउ। लख चौरासी फेर पया, कामण दूजै पाए, बिन गुर नींद ना आवे, दुखी रहन विहाए।

कराई देख कुटंब मोहे लवाना चल दिया नाल ना जाई सतगुर सेव गुण निदान पाया तिस दी कीम ना पाई हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई अपने मन चित कह कहाई बिन गुर आप ना जाई हर जीव दाता भगत वच्छल है कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वडियाई श्री राग महला तीजा धन जननी जिन जाया धन पिता प्रधान सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निदान मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसै मन तन निर्मल हो।

गुरमुख बूझे कोए बिन बूझे कर्म कमावणे जन्म पदार्थ खोए रहाउ जिन्नी चाखिया तिन्नी साध पाया बिन चाखे भरम भुलाए अमृत साचा नाम है कहना कछु ना जाए पीवत हूं प्रवान भया पूरा शब्द समाए आपे दे ता पाई है

कमाए। जात सत संयम नाम है, विण नाम है निर्मल ना होए। पूरे भाग नाम मन वसै, शब्द मिलावा होए। नानक सहजे ही रंग वरतदा,

आनंद न भगत करे सदा साचे की लिवलाए नाम पदार्थ मन वस्या नानक सहज समाए। श्री राग महला तीजा जिन्नी पुरखी सतगुर ना सेवेओ से दुखिए जुग चार कर होंदा पुरख ना पछाणिया अभमान मुटे अहंकार सतगुरु क्या फिटकिया मंग थके संसार सच्चा शब्द ना सेवेओ सब काज सुवारन हार मन मेरे सदा हर वेख हदूर जन्म मरण दुख पर हर शब्द रहे भरपूर रहाउ सच सलाहन से सच्चे सच्चा नाम आधार सच्ची कार कमावणी सच्चे नाल प्यार सच्चा साहु वरतदा कोई ना मेटन हार मनमुख महल ना पाएनी कूड़ मुठे कूड़ यार हम मैं करता जग मोआ गुर बिन घोर अंधार।

जा सहज सुभाई, गुर का शब्द अमृत है, जित पीतै तिख जाय। इहो मन साचा सच रत्ता, सच्चे रहिया समाय। आखण वेखण बोलना, शब्दे रहिया समाय। बाणी वजी चहु जुगी, सचो सच सुनाय। हम मैं मेरा रह गया, सच्चै लया मलाय। तिनको महल हदूर है, जो सच रहे लिवलाय। नदरी नाम ते आई है, विन कर्मा पाया ना जाय। पूरे भाग सत संगत लह, सतगुर भेटै जिसे आय। अन दिन नामे रत्या, दुख बिखिया विचों जाय। नानक शब्द मलावड़ा, नामे नाम समाय। श्री राग महला तीजा, अपना भौ तिन पायुन। जिन गुर का शब्द बीचार, सत संगति सदा मिल रही। सच्चे के गुण सार, दुबधा मैल चुकाइयन। हर राखिया उर तार।

शब्द सवारन हार रहाव सत्य शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मलाय अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाय ज्योति हूं प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ ना पाय जिनको पूर्व लिखिया सतगुर पेटिया तिन आय बिन नावे सब डुमणी दूजे पाए खवाय तिस बिन घड़ी ना जीवंदी दुखी रहन विहाय परम पलाना अंदला फिर आवे जाय नदर करे।

मामंदी पापी पचह पचाई सू प्रभ नदर ना आवई मनमुख बूझ ना पाई जिस खाले सोई वेख नानक गुरमुख पाई। श्री राग महला तीजा बिन गुर रोग ना तुटई हउ मैं पीड़ ना जाए गुर प्रसादी मन वसै नामे रह समाई। गुर शब्दी हर पाई है बिन शब्द भरम भुलाए मन रे निज कर वासा होए राम नाम सलाहे तू फिर आवन जान ना होए रहाउ। हर इको दाता वरतदा दूजा अवर ना कोए शब्द सलाही मन वसै सहजे ही सुख होए सब नदनी अंदर वेखदा जय पावै तै दे हउ मैं।

सुतिया रहन विहाय एक अपने भाणे कड लयन आपी लयन मलाय आपी ही आप मन वसिया माया मोह चुकाय आप वडाई दितियन गुरमुख दे बुझाय सबना का दाता एक है भुलिया ले समझाय एक आपे आप खुआयन।

सोई। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होय। नानक नाम संभाल तू, जित सेवे है सुख होय। श्री राग महला तीजा, जग हों मैं मैल दुख पाया। मल लागी दूजे पाई, मल हों मैं धोती किवै न उतरै। जे सो तीर्थ नहाए, बहु

गुर सरणी आवे ता निर्मल हुई, मन मुख हर हर कर थके, मैल ना सकी तो होए रहाउ, मन मैल भगत ना होवे, नाम ना पाया जाए, मन मुख मैले मैले मोए, जासन पत गुआई, गुर प्रसादी मन वसे, मल हम मैं जाए समाए, ज्यों अंधेरै दीपक बाली है, त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए, हम किया हम करहेंगे, हम मूर्ख गावार, करने वाला विसरिया, दूजे पाए प्यार, माया जेवड दुख नहीं, सब भव थके संसार, गुरमती सुख पाई है, सच नाम उरतार, जिसनो मिले सो मिले, हम तिस बलिहारे जाऊं, ए मन भगती रत्या, सच बाणी निज थां, मन रत्ते जिहवा रत्ती, हर गुण सच्चे गाऊं, नानक नाम ना विसरै, सच्चे माही समाऊं, श्री राग महला चौथा घर पहला, मैं मन तन बिरहो अत अगला, क्यों प्रीतम मिले घर आए, जां देखा प्रभ अपना, प्रभ देखिया दुख जाए, जाए पुछा तिन सजना, प्रभ कित बिद मिले मलाए, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोए, हम मूर्ख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मेले हर सोए रहाउ, सतगुरु दाता हर नाम का, प्रभ आप मलावै सोए, सतगुर हर प्रभ बुझिया, गुर जेवड अवर ना कोए, हम गुर सरनाई टह पवा, कर दया मेले प्रभ सोए, मन हठ किने ना पाया, कर अपाव थके सब कोए, सहस सियाणप कर रहे, मन पूरे रंग ना हो।

थीए, मेरे सतगुर नाम दृढ़ाय रहाउ, नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुर पास, सतगुर सेवै लगिया, कड रतन देवै परगास, धन वड भागी वड भागिया, जो आए मिले गुर पास, जिन्ना सतगुर पुरख न भेटे हो, से भागहीन वस काल, ओए फिर जोन पवाई है, विच विस्ता कर विकराल, ऊना पास दुआस न पिती है, जिने अंतर क्रोध चंडाल, सतगुर पुरख अमृत सर, वडभागी नावह आए, हुन जन्म जन्म की मैल उतर है, निर्मल नाम दृढ़ाए, जन नानक उत्तम पद पाया।

गुरमुख सज्जन गुण कारिया मिल सज्जन हर गुण गाय हीरे हीर मिल भेदया रंग चलूले नाय मेरे गोविंदा गुण गावा तृप्त मन होए अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मलावै सोए रहाओ मन रंग हो वडभागी हो गुर तुठा करे पसाओ गुर नाम दरडाए रंग स्यो हौ सतगुर कै बल जाओ बिन सतगुर हर नाम ना लभै लख कोटि कर्म कमाओ बिन भागा सतगुर ना मिलै कर बैठिया निकट नित पास अंतर अज्ञान दुख भरम है विच पड़दा दूर पई आस बिन सतगुर भेटे कंचन ना थीऐ मनमुख लोहो बूढ़ा बेड़ी पास सतगुर बोहत हर नाव है इत बिद चढ़िया जाय सतगुर कै पहाणे जो चलै विच बोहित बैठा आए तन तन वड भागी नानका जिन्ना सतगुर लए मलाए श्री राग महला चौथा हौ पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे तिन जाऊं जिन्नी मेरा प्यारा रावया।

तां गुर का बचन कमाही रहाउ हरि नाही नह डडोरी पक्की वडण हार लै लै दात पहुंतिया लावे कर तैयार जां हुआ हुक्म किरसान दा तां लुण मिणिया खेतार पहला पैर तंदै गया दूजे भर सोया तीजे चाक चखाया चौथे भोर भया कद ही चेतना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिसते सो जी मन पई मिलिया पुरख सुजान नानक डिठा सदा नाल हरे अंतर जामी जान श्री राग महला पंजवा सबे गल्ला विसरन इको विसर ना जाओ धंधा सब जलाए कै गुर नाम दिया सच सुआ आसा सबे लाए कै इक्का आस कमा।

आहे सबे छड सियाण पा गुर की पैरी पाहे रहाव दुख भुख नह व्यापई जे सुख दाता मन होए कित ही कामना सिजी है जा हृदय सच्चा सोए जिस तू रख है हाथ दे तिस मार ना सकै कोई सुख दाता गुर सेवी है सब अवगण कड्डै धोए सेवा मंगै सेव को लाइया अपनी सेव साधु संग मसकते टूठै पावा देव सब किस वसगत साहिब है आपे करन करेव सतगुर कै बलिहार न मनसा सब पूरेव इको दिसै सज्जनो इको भाई मीत इक सह दी सामगरी इक सह दी है रीत इकस स्यों मन मानिया ता हुआ निहचल चीत सच खाना सच

माया का रंग सब फिक्का जातू बिनस निदान जा कै हृदय हर वसै सो पूरा प्रदान साधु की हो रेणुका अपना आप त्याग अपार सियाणप सगल छड गुर की चरणी लाग तिसह प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होए भाग तिसह प्राप्त भाई हो जिस देवे प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिनसै हम मैं ताप नानक कौ गुर भेटिया बिनसे सगल संताप श्री राग महला पंजवा एक पछाणु जी का इको रखन हार एक सका मन आसरा इको प्राण आधार तिस सरनाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार मन मेरे सगल उपाव त्याग गुरपूरा आराध नित इकस की लिव लाग रहाओ इको भाई मित एक इको मात पिता इकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनोह न विसरै जिन सब किस वस कीता कर इको बाहर इको थान तनंतर आप जी जंत सब जिन किए आठ पहर तिस जाप इकस सेती रत्या ना हुवी सोग संताप पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोई जियो पिंड सब तिसका जो तिस भावे सो होए गुरपूरै पूरा भया जप नानक सच्चा सोए श्री राग महला पंजवा जिन्ना सतगुर सिंह चित लाया से पूरे प्रधान जिनको आप दयाल हुए तिन उपजै मन ज्ञान जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम मन मेरे एको नाम त्याए सर्व सुखा सुख उपजह दरगाह पैंदा जाए रहाऊ जन्म मरण का पाऊ गया पाऊ भगत गोपाल साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल जन्म मरण की मल कटी है गुरदर्शन देख निहाल थान थनंतर रव रहया

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान जिन्नी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान श्री राग महला पंजवा मिल सतगुरु सब दुख गया हर सुख वसिया मन आय अंतर ज्योत परगासिया एक सस्यों निवलाय मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखिया पाय गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचे नाय मेरे मन गुर शब्दी सुख होय गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोई रहाओ मन कीआं इच्छा पूरियां पाया नाम निदान अंतर जामी सदा संग करने हार पछान गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इशनान काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभमान पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरवान सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार आठ पहर गुणसार दी रत्ती रंग अपार पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवा पूरा सतगुरु जी मिले पाईए शब्द निदान कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभ सरनाई पाए हर बिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए रहाओ कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगती सच्चा शब्द वसाह कर सेवा सुख सागर है सिर शाह पातशाह चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाव मैं धर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाऊ ने माणिया प्रभ मान तू तेरे संग समाओ हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद जी प्राण तन धन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच सियो मरे न आवे जाय ना वे छोड़िया विछड़े सब मह रहिया समाय दीन दर्द दुख भंजना सेवक कै सत पाए अचरज रूप निरंजनो गुर मेलाया माय भाई रे मीत करहो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोई रहाउ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिए निश्चल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाईए निधारा आधार जिस पेखत किल विख हिरह मन तन होवे शांत एक मन एक त्याई है मन की लाहे प्रांत गुण निदान नवतन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराधी है दिन विसरहो नहीं रात जिनको पूर्व लिखिया तिनका

तन मन तन अर्पी सबो सगल वारिया एह जिंद देखै सुनै हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद किरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवा मन तन धन जिन प्रभ दिया रखिया सहज सवार सर्ब कला कर थापिया अंतर ज्योति अपार सदा सदा प्रभ सिमरिए अंतर रख उर धार मेरे मन हर बिन अवर ना कोए प्रभ सरनाई सदा रहो दुख ना व्यापै कोए रहाउ रतन पदार्थ मानका सोयना रूपा खाक मात पिता सुत बंध पा कूड़े सबे साक गिनकी तात सह न जानी मन मुख पास न पाक अंतर बाहर रव रहया तिसनो जाने दूर तृष्णा लागी रच रहया अंतर हों मैं कूर भगती नाम विहूनिया आवह वंजह पूर राख लिहो प्रभ करनहार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखनहार महा बिकट जम भया नानक नाम ना विसरऊ कर अपनी हर मया श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर धन मेरा राज रूप मैं देस सुत दारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेस हर नाम हृदय ना वसई कार्य कितै ना लेख मेरे मन हर हर नाम त्याए कर संगत नित साधकी गुर चरणी चित लाए रहाउ नाम निधान त्याई है मस्तक होवै भाग कार्य सब सुवारी है गुर की चरणी लाग हों मैं रोग भ्रम कटी है ना आवै ना जाग कर संगत तू साधकी अठ सठ तीर्थ नाओ जियो प्राण मन तन हरि साचा इहो सुआउ एथै मिलह वडाइया दरगह पावह थाउ करे कराए आप प्रभ सब किस तिस ही हाथ मारिया पे जीवाल दा अंतर बाहर साथ नानक प्रभ सरनागती सर्व कटा के नाथ श्री राग महला पंजवा सरन पए प्रभ अपने गुरु हुआ कृपाल सतगुर कै अपदेसे बिनसे सर्ब जंजाल अंदर

प्रभ अपनी एक निमख ना मनो वसार रहाउ गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कटन हार बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे बिस्थार सहजे सिफती रत्या भवजल उतरे पार तीर्थ वर्त लख संज

सदा सदा आराधी है। एहा मत वसेख मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख। श्री राग महला पंजवां संत जनो

हर जन हर लिव उदरी नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवां कर दूजा गोयल आया गोयली क्या

किसह त्यागु मन मेरे सर्ब को आधार। गुर के चरण मन मह त्याई छोड़ सगल सियाणपा साच शब्द लिव लाए रहाउ। दुख कलेश ना पौ ब्यापै गुरमंत्र हृदय होए कोट जतना कर रहे गुरबिन तरयो ना कोई। देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहि हौं तिनकै बलिहार ने जे गुर की पैरी पाहि। साध संगत मन वसै साच हर का नाऊं सेवड भागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवां संच हर धन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार। जिन तू साज सुवारिया हर सिमर होए उदार। जप मन नाम एक अपार प्राण मन तन जिनह दिया हृदय का आधार। रहाओ काम क्रोध अहंकार माते व्याप्या संसार। पौ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार।

मान अपमान मंदे सो सेवक नाही, तात समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन एहो कीर्त करला, कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला। गाते अवगत

हर हर नाम संभाल साधु संगत मन वसै पूर्ण हो ऐ काल रहाउ गुर समरथ अपार गुर वडभागी दर्शन होए गुरिया गोचर निर्मला गुर जीवड अवर ना कोई गुर करता गुर करनहार गुरमुख सच्ची सोए गुर ते बाहर किछ नहीं गुर कीता लोड़े सो होए गुर तीरथ गुर पार जात गुर मनसा।

अपार गुरु उच्चा अगम अपार गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार जितड़े फल मन बांछी है जितड़े सत गुर पास पूर्व

तेरे जुगह जुगह पंडार महला पहला सबे कंत मेलियां सगलियां करह श्रृंगार गणत गणावने।

दीपक शब्द विगासिया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार सुबा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पेर पुरख ना जानी साचे गुर कह हित प्यार निस अंधारी सुतिए क्यों पिर बिन रैन विहाय अंक जलो तन जालियो मन धन जल बल जाय जां धन कंत ना राविया ता बिरथा जो बन जाय सेजै कंत मेह लड़ी सूती बूझ ना पाए हौं सुती पिर जागना किस को पूछो जाय सतगुर मेली पै वसी

शब्द पछाणिए साच रते गुरवाक तित तन मैल ना लगई सच कर जिस ओताक नदर करे सच पाई है।

रहाउ। सब जग बांधु काल को बिन गोर काल अपार, सच रते से उबरे दुबदहा छोड़ विकार। हौ किन कै बलिहार न दर सचै सत्यार, सी चाने ज्यो पंखियां जाली बद कहात। गुर राखे से उबरे होर फाथे चो गै सात, बिन नावे चुन सुटी है कोई ना संगी साथ। सचो सच्चा आखी है सच्चे सच्चा थान, जिन्नी सच्चा मन्या तिन मन सच ध्यान। मन मुख सूचे जानी है गुरमुख जिन्ना ज्ञान। सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मलाए, साजन मिले सुख पाया जमदूत मोए बिख खाए।

आलना अपड़े जिथे गुर का शब्द अपार, हुक्मी सबे उपजह हुक्मी कार कमाहे, हुक्मी काल है वस है हुक्मी साच समाहे, नानक जो तिस पार।

सोह प्रभ जानी है साचो साचे नाई सा तन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग महली महल बुलाई है सो पिर रावे रंग सच सुहागन सा भली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंघर जाऊं बन मह भूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना पाऊं नाम भूली जे फिरा।

प्रगत सब जानिए जे मन राखै ठाई ऐसा सतगुर जे मिले ता सहजे लय मलाई कस कस वट्टी लाइए परखे हित चित लाए खोटे ठहर ना पाइनी खरे खजाने पाए आस अंदेसा दूर कर इउं मल जाए समाए सुख को मांगे सब को दुख न मांगे कोई सुखै को दुख अगला मन मुख बूझ ना होए सुख दुख सम कर जानिए शब्द भेद सुख होए वेद पकारे वाचिए वाणी ब्रह्म व्यास मुन जन सेवक साधिका नाम रते गुणतास सच रते से जिन गए हौ सद बलिहारे जास चहु जुग मैले मल भरे जिन मुख नाम ना होए भगती पाए विहूणिया मुह काला पत खोए जिन्नी नाम वसारिया अवगण मुठी रोए खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए आप पछाणे घर वसै हउमै तृष्णा जाए नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए श्री राग महला पहला सुन मन भूले बावरे गुर की चरनी लाग हर जप नाम त्याए तू जम डर पै दुख भाग दुख घणो दोहागनी क्यों फिर रह सुहाग भाई रे अवर नाही मैं थाऊ मैं तन नाम निदान है गुर दिया बल जाऊं रहाऊ गुरमत पत साबास तिस तिस कै संग मलाऊ तिस बिन घड़ी ना जीव।

शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार नाम सलाहन सद सदा हर राख है उरतार सो क्यों मनहु विसारी है सब जिया का आधार शब्द मरे सो मर रह फिर मरे ना दूजी वार शब्द ही ते पाई है हर नामे लगे प्यार बिन शब्द जग भूला फिरे मर जन्मे वारू वार सब सलाह है आपको बड़ो बडेरी होए गुर बिन आप ना चीनी है कहे सुने क्या होए नानक।

सुख से जड़ी बिन पिर बाद सिंगार दुख घणो दुहागणी ना कर सेज पतार मन रे राम जपो हो सुख होए बिन गुर प्रेम ना पाई है शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाई है हर वर सहज सिंगार सच माने पिर से जड़ी गूड़ा हित प्यार गुरमुख जान सियाणी है गुर मेली गुण चार सच मिनोह वर कामणी फिर मोही रंग लाए मन तन साच विगसिया कीमत कहन ना जाए हर वार घर सुहागणी निर्मल साच नाए मन मह मनुआ जी मरे ता फिर रावे नार इकत ता गैराल मिले गाल मोतियन का हार संत सभा सुख उपजै गुरमुख नाम आधार खिन मह उपजै खिन खपै

है, कथन ना पाया जाए, व्यापारी बन जा रिया, आए वजून खाए, कार कमाव है सच की, लाहा मिले जाए, पूंजी साची गुर मिले, ना तिस तिल ना तमाई, गुरमुख तोल तोलाए सी, सच तराजी तोल, आसा मनसा मोहनी, गुरठा की सच बोल, आप तलाए तोल सी, पूरे पूरा तोल, कथन कहन ना छुट्टी है, ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच ना पाई है, बिन हर भगत प्यार, नानक नाम ना विसर, मेले गुर करतार, श्री राग महला पहला, सतगुर पूरा जे मिले, पाईए रतन विचार, मन दी जय गुर अपनी, पाईए सर्ब प्यार, मुक्त पदार्थ पाईए, अवगण मेटन हार, पाई रे गुर बिन ज्ञान ना होए, पूछो हो ब्रह्मे नारद, वेद व्यासै कोई रहाओ, ज्ञान ध्यान तुन जानिए, अकथ कहावै सोए, सफलियो बिरख हरियावला, शाम कनेरी होए, लाल जवे हरमान की, गुर पंडारै सोए, गुर पंडारै पाईए, निर्मल नाम प्यार, साचो वखर संची है, पूरे कर्म अपार, सुखदाता दुख मेटनो, सतगुर असुर संगार, पवजल बिखम डरावनो, ना कंदी ना पार, ना बेड़ी ना तुलहड़ा, ना तिसवान्य मलार, सतगुर पै का बोहिथा, नदरी पार उतार, एक तिल प्यारा विसरै, दुख लागै सुख जाए, जिहवा जलो जलावनी, नाम ना जपै रसाए, घट बिरसै दुख अगलो, जम पकड़ै पछताए, मेरी मेरी कर गए, तन तन कलत न साथ, बिन नावै धन बाद है, भूलो मार गयाथ, साचो साहिब सेवी है, गुरमुख अकथो काथ, आवै जाए पवाई है, पय किरत कमाए, पूर्व लिखिया क्यों मेटी है।

जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारी है पाइये गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पछाड़ी है पी विगसे असने जल मह जी अपाय कै बिन जल मरन तने मन रे क्यों छूट है बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहया बख्शे भगत भंडार रहाव रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यो अधिको त्यों सुख घणो मन तन शांत शरीर बिन जल घड़ी ना जीवई प्रभ जाने अब पीर रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चात्रक में सर पर थल हरियावली एक

आपे खवै दुध कौ खपण ना दे आपे मेल वशुन्या सच वडे आई दे रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मन मुख सो जी ना पवे गुरमुख सदा हजूर मन

गुरमत होए ता पाईऐ सच मिलै सुख होए सच्चा नेहो ना टुटई जे सतगुर भेटै सोए ज्ञान पदार्थ पाईऐ त्रिभवन सोजी होए निर्मल नाम ना विसरै

माया परम भुलाई परम भुली दोहागणी ना फिर अंक समाई रहाउ भूली फिरै दसंतरी भूली ग्रह तज जाय भूली डूंगर थल चढ़ै पर मैं मन डोलाय तुरहु विछुनी क्यों मिलै गर्भ मुठी बिल लाय बिछड़िया गुर मेल सी हर रस नाम प्यार साच सहज सोभा कणी हर गुण नाम आधार ज्यों पावे त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ भुलिए भेखी बहुत अभमान तीरथ नाता क्या करे मन मह महल गुमान गुर बिन किन समझाई है मन राजा सुनतान प्रेम पदार्थ पाई है गुरमुख तत विचार सा तन आप गवाया।

सेवा चाकरी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसया हूं मैं बिचों खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए कर्म मिले ता पाईए आप ना लया जाए गुर की चरनी लग रहो विचों आप गवाए सच्चे सेती रत्निया सच्चो पल्ले पाए पुल्लने अंदर सब को अपुल गुरु करतार गुरमत मन समझाया लागा तिसै प्यार नानक साच ना

मैं तुझ बिन अवर न पावई, तू पावह सुख होए रहाउ। नाम सलाही रंग सिउ, गुर कै शब्द संतोख। जो दिसै सो चलसी,

खुद पावे है सी भली, खोटा खरा ना कोई, गुर सरनाई छुट्टी है मनमुख खोटी रास, अष्ट धात पातशाह की करिए शब्द विगास, आपे परखे पार खू पवे खजाने रास, तेरी कीमत ना पवे सब डिठी ठोक बजाए, कहने हाथ ना लगई सच टिके पत पाई, गुरमत तू सलाहना होर कीमत कहन ना जाई, जित तन नाम ना पावई तित

साजी है, एक चानन तेहो लोए, कर्म मिलै सच पाई है, तुर बख्शना मेटै कोई, साध मिलै साधु जने, संतोख वसै गुर पाई, अकथ कथा विचारी है, जे सतगुर माहि समाए, पी अमृत संतोखिया, दरगह पैंदा जाए, कट कट वाजै किंगरी, अन दिन शब्द सुपाई, बिरले को सोजी पई, गुरमुख मन समझाए, नानक नाम ना विसरे, छूटै शब्द कमाए, श्री राग महला पहला, चित्ते दिसह धौल हार, बग्गे बंक द्वार, कर मन खुशी उसारिया, दूजै हित प्यार, अंदर खाली प्रेम बिन, तै ढेरी तन शार, पाई रे तन तन साथ ना होए, राम नाम तन निर्मलो, गुरदात करे प्रभ सोए, रहाओ, राम नाम तन निर्मलो।

जो आया सो चलसी अमर सो गुर करतार पी सच्चा सालाहना सच्चे थान प्यार दर कर महला सोहनी पक्के कोट हजार हस्ती कोड़े पाखरे लश्कर लख अपार किस ही नाल ना चलिया खप खप मुए असार सोयना।

तिसनो वाखी है जिस शेष ना होवी लेख असमान धरती चलसी मोकाम ओही एक दिन रव चल।

अष्टपदियां। श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदियां। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, गुरमुख कृपा करे भगत की जय। बिन गुर भगत ना होए, आपे आप मलाए बूझे, ता निर्मल होवे।

बिन सतगुरु को मग ना जाने अंधे ठौर ना काई। हर सुख दाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। पे अड़ै जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया। अन दिन भगत करह दिन राती हमै मोह चुकाया। जिस स्यों राता तैसो हुए

सहज उपजे होमे तृष्णा मार। हर गुण दाता सद मन वसै सच रखिया उरतार। प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाई। नाम निधान हर मन वसै होमे दुख सब जाई। सतगुर शब्द सुनाया हो सद बलिहारे जाऊं। अपने मन चित कह कहाई बिन गुरे आप ना जाई। हर जियो भगत वशल सुख दाता कर कृपा मन वसाई। नानक सो

होई, गुर प्रसादी पाई है कर्म प्राप्त होई। श्री राग महला तीजा, पंखी बिरख सुहावड़ा, सच चुगै गुर पाई।

गुर कै पाणै जे चलहै ता अन दिन राचहै हर नाय रहाउ। पंखी बिरख सुहावड़े उडहै चहो दिस जाहे, जेता उडहै दुख घणे नित दाजहै तै बिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुपाए। साखा तीन नवारिया एक शब्द लिव लाए, अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना शाओ, तिन्ना पास ना बैसिए ओना घर ना ग्राओ। कटिए तै नित जालिए ओना शब्द ना नाओ, हुक्मे कर्म कमावणे पै किरत फराओ। हुक्मे दर्शन देखना जह पी जह तह जाओ, हुक्मे हर हर मन वसै हुक्मे सच समाओ। हुक्म ना जान है बपड़े भूले फिर है गवार, मन हट कर्म

पंडित पर पर वाद विखाण है बिन गुर परम पलाई लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाई जा नाऊ चेतै ता गत पाई जा सतगुर मेल मलाई सत संगत मह नाम हर उपजै जा सतगुर मिलै सुपाई मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाई सत बलिहारी गुर अपने बिटो जे हर सीती चित लाई सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर सीती रंग राता प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर।

बिन गुर पाया न जाय, पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके, भेखी परम पलाय, गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाय। भाई रे गुर बिन सहज न होए, शब्द ही ते सहज उपजे, हर पाया सच सोए रहाओ, सहजे गाव्या थाई पवे, बिन सहजे कथनी बाद, सहजे ही भगत उपजे, सहज प्यार बैराग, सहजे ही ते सुख शांत होए, बिन सहजे जीवन बाद, सहज सलाही सदा सदा, सहज समाध लगाई, सहजे ही गुण उचरे, भगत करे लिवलाय, शब्दे ही हर मन वसे, रसना हर रस खाय, सहजे काल वडारिया, सच सरनाई पाय, सहजे हर नाम मन वसिया, सच्ची कार कमाय, सेवड भागी जिन्नी पाया, सहजे रहे समाय, माया विच सहज ना उपजे, माया दूजे पाए।

त्रै गुण भरम भलाय, पढ़िया गुणिया क्या कथिया, जा मुंडो कुथा जाय। चौथे पद में सहज है,

सहज मलाईसी शब्द मलावा हुई। बिन सहज सब अंध है माया मोह गुबार, सहज ही सूझी पई सच्चा शब्द अपार। आपे बख्श मलायन पूरे गुर करतार, सहजे अधिष्ट पछाणिय निरपव ज्योत।

समाते गुरमुख अमृत बाणी बोलह सब आत्म राम पछाणी एको सेवन एक आराध है।

शब्द समाए। श्री राग महला तीजा, सतगुर सेवे मन निर्मला, भये पवित्र शरीर, मन आनंद सदा सुख पाया, भेटिया गहर गंभीर, सच्ची संगत बैसना।

सच्चा शब्द पाति उपजै सच्चे सच्चा नाम जिन्नी हऊ मैं मार पछाणिया हऊ तिन बलिहारै जाऊं मन मुख सच ना जाननी।

शब्दे पवजल तरना लाख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त ना हुई। पाड़ पाड़ पंडित मोनी थके दूजे पाए पथ खोई। सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे अवर ना कोई। जो सच्चे लाए से सच लगे नित सच्ची कार करन। तिन्ना निज कर वासा पाया सच्चे महल रहन। नानक भगत सुखिये सदा सच्चे नाम रचन। श्री राग महला पंजवा जाको मुश्कल अत बने। टोई कोई ना दे लागू होए दुश्मना। साक पे भज खले सबो भजे आसरा। चुके सब असराऊ केते आवे उस पार ब्रह्म।

दुबला नांग भूख की पीर दमड़ा पल्लह ना पवे ना को देवे तीर स्वार्थ स्वाहो ना को करे ना किछ होवे काज कित आवे उस पार ब्रह्म ना निश्चल होवे राज जा को चिंता बहुत बहुत

पर ब्रह्म तन मन शीतल होए काम क्रोध मोहे वस किया किरपन लोभ प्यार चारे किलविख उन अग किए हुआ असुर संगार पोथी गीत कवित किश कदे न करन धरिया चित आवै उस पार ब्रह्म ता निमुख सिमरत तरिया शास्त सिमरत वेद चार मोखागर बिचरे तपे तपी सर जोगिया तीरथ गमन करे खट कर्मा ते दुगणे पूजा करता नाए रंग ना लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलख सिखदारिया रस भोगण बिसथार बाग सुहावे सोहणे चलै हुक्म अफार रंग तमाशे बहु विधि चाए लग रहिया चेतना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाड अचारवंत सोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पाइया साजन संग परीत लश्कर तरकस बंद बंद जियो जियो सगली कीत चेतना आयो पार ब्रह्म ता खड़र सातल दीत काया रोग ना छिदर किस ना किस काड़ा सोग मृत ना आवी चित तिस अहनस भोगै भोग सब किस कीतो ने अपना जिये ना संक धरिया चेतना आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस परिया किरपा करे जिस पार ब्रह्म होवै साधु संग ज्यो ज्यो ओह वधाई है त्यों त्यों हर स्यों रंग दोहां स्नेहां का खसम आप

सिरे सिर तम दे लाया वेख की तायापना कर कुदरत पासा ढाल जियो प्रगट पहार है जापदा सब नावे नो प्रतापदा सतगुर बाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर कहो बल जाई है जित मिले परम गत पाई है सुर नार मुन जन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो एहो जगत परम पलाया आप हूं तुद खवाया प्रताप लगा दोहागणी भाग जिन्ना के नाए जियो दोहागणी क्या निशानिया खसम हो खुथियां फिर है निमानिया मैले वेस तिन्ना कामणी दुखी रहन विहाए जियो सुहागणी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कै अपनी आपे लए मलाए जियो हुक्म जिन्ना नू मनाया तिन अंतर शब्द वसाया सहिया से सुहागणी जिन सह नाल प्यार जियो जिन्ना पाणी का रासे आया तिन विचो परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सब सह लए मलाए जियो सतगुर मिले फल पाया जिन विचो अहंकरण चुकाया दुर्मत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय समाणिया सुख सेवा अंदर रखे है अपनी नदर करह निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिले नाम बखानी है सतगुर बाज ना पायो सब थकी कर्म कमाए जियो हौ सतगुर बिटो कुमाया जिन भ्रम भुला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लए रलाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करतै आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवक की पैज रखिया दोए कर मस्तक धार जियो सब संयम रहे सियाणपा मेरा प्रभ सब किस जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोक करै जयकार जियो मेरा गुण अवगन ना बिचारिया रब अपना बिरद संवारिया कंठ लाए कह रखियोन लगे ना तत्ती वाओ जियो मैं मन तन प्रभु त्याया जिए इच्छे अड़ा फल पाया साहा पातशाह सिर कसम तू जप नानक जीवै नाउ जियो तुदे आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वर्तदा जिस

निर्मल ज्योत तिन प्राणिया ओए चले जन्म सवार जियो तेरिया सदा सदा चंगे आईया मैं रात देह बड़े आईया अण मंगिया दान देवना कहो नानक सच संभाल जियो श्री राग महला पंजवा पै पाए मनाई सोए जियो सतगुर पुरख मलाया तिस जेवड़े अवन ना कोए जियो रहाओ गुसाई मेहंडा इठड़ा अम अबे थाम मिठड़ा भैन भाई सब सजना तुद जेहा नाही कोए जियो तेरा हुक्मे सामने आया मैं सत का हल जो आया नाऊ बीजन लगा आस कर हर बोहल बख्श जमाए जियो हाँ गुर मिले एक पछाण दा दुइया कागल चेतना जान दा हर इक तै कार लायोन ज्यो भावे तिवे नभाए जियो तुसी भोगे हो पुंच हो भाई हो गुर दी बाण कवाए पैनाइयो हों हो आ माहर पिंड दा बाने आंदे पांज शरीक जियो हों आया सामे ते हंडिया पांज किरसान मुजेरे मेहंदिया कन कोई कड ना हंगई नानक बुट्टा कुग ग्राउ जियो हों वारी घुमा जामदा इक साहा तुद त्याए दा उजड़ थेहो वसायो हों तुद विटहो कुर्बान जियो हर इथे नित त्याए दा मन चिंदी सो फल पाए दा सबे काज सवारियन लाहियन मन की भुख जियो मैं छड़िया सबो तंदड़ा गुसाई सेवी सचड़ा नौ निध नाम निधान हर मैं पल्ले बद्दा शिक जियो मैं सुखी हूँ सुख पाया गुर अंतर शब्द वसाया सतगुर पुरख विखालिया मस्तक तर कै हाथ जियो मैं बद्दी सच धर्म साल है गुर सिखा लहंदा पाल कै

पहले पहरे छूटेगा हर चेता, दूजे पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा, पर जोबन मैं मत अहमस काम व्यापिया बन जा रहा मित्रा, अंदुले नाम ना चेता, राम नाम घट अंतर नाही, होर जाने रस कस मीठे, ज्ञान ध्यान गुण संयम नाही, जन्म मर हो गए झूठे, तीर्थ वरत सुच संयम नाही, कर्म धर्म नहीं पूजा, नानक पाए भगत निस्तारा, दुबधा व्यापै दूजा, तीजे पहरे रहन कै बन जा रहा मित्रा, सरहंस उलथड़े आए, जोबन घटै जरुआ जिन्ह बन जा रहा मित्रा, आम घटै दिन जाए, अंतकाल पछतासी अंबले, जां जम पकड़ चलाया, सब कुछ अपना कर कर राखिया, खिन मह भया पराया, बुद्ध वसरजी गई सियाणप, कर अवगुण पछताए, कहो नानक प्राणी तीजै पहरे, प्रभ चित हो लिवलाए, चौथे पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा, बिरद भया तन खीन, अखी अंध ना दिसई बन जा रहा मित्रा, कन्नी सुने ना वैन, अखी अंध जीव रस नाही, रहे परा कौ ताणा, गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे, मन मुखे आवन जाना, खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै, आए चले क्या मान, कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, गुरमुख शब्द पछाण, ओढ़क आया तिन सहया बन जा रहा मित्रा, जर जरवाणा कन, एक रत्ती गुण ना समाणिया बन जा रहा मित्रा, अवगण खड़सन बन, गुण संयम जावे चोट ना खावे, ना तिस जमण मरना, काल जाल जम जोहे ना साके, पाए भगत पै तरना, पत सेती जावे सहज समावे।

दुख मटाया, चित्रगुप्त का कागद फारिया, जमदूतां कछु ना चली, नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लते खेप सवली, मन प्यारिया जियो मित्रा, कर संतां संग निवासो, मन प्यारिया जियो मित्रा, हर नाम जपत परगासो, सिमर स्वामी सुख गामी, इच्छ सगली पुनिया, पुरबे कमाए श्री रंग पाए, हर मिले श्री वचुनिया, अंतर बाहर सरबत रविया, मन उपजिया विश्वासो, नानक सिख दे मन प्रीतम, कर संतां संग निवासो, मन प्यारिया जियो मित्रा, हर प्रेम भगत मन लीना, मन प्यारिया जियो मित्रा, हर जल मेल जीवे मीना, हर पी आगाने अमृत बाने, सर्व सुखा मन उठे, श्री तर पाए मंगल गाए, इच पुन्नी सतगुर तुठे, लड़नी ने लाए नौ निद पाए, नाओ सर्बस ठाकुर दीना, नानक सिख संत समझाई, हर प्रेम भगत मन लीना, श्री राग के शंत महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद दखना, अठ मजाहु महापिरी, पसे क्यों दीदार, संत सरनाई

मन वांछत फल देत है स्वामी, जी की बिरथा सारी। नाथ के नाते सब कै साथी, जप जुए जन्म ना हारी है। नानक की बेनंती प्रभ पह, कृपा कर पव जल तारी है। दखना धूड़ी मजन साधके, साई थिए कृपाल। लदे हब्बे थोकड़े, नानक हर तन माल। संत सुंदर स्वामी ता।

आप मूर्यो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए जाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दोख सब जोहया भगत लखियण कर वस पए मन सर्ब सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बहुड़ ना माया होया कर गहलीने नानक प्रभ प्यारी संसार सागर नहीं।

नह मरी। सतगुर दयाल कृपाल भेट तहरे, काम क्रोध लोभ मारिया। कथन न जाए अकथ स्वामी, सदकै जाए नानक वारिया। श्री राग महला चौथा वणजारा, एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद। हर हर उत्तम नाम है, जिन सिरिया सब कोए जियो। हर जी सबे प्रतपालदा, घट घट रमैया सोए। सो हर सदा त्याई है, तिस बिन अवर ना कोए। जो मोहे माया चित लाइंदे, से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम त्याया, हर अंत सखाई होए। मैं हर बिन अवर ना कोए, हर गुर सरनाई पाईऐ बनजारिया। मित्रा वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना मिन पाईया, हर किने न पाया नाउ। विच हूं मैं कर्म कमावंदे, ज्यों वेसवा पुत निनाउ। पिता जात ता होई है, गुर तुठा करे पसाउ। वड भागी गुर पाया, हर एहलस लगा पाओ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया, हर कीरत कर्म कमाओ। मन हर हर लगा चाओ, गुर पूरे नाम दरडाया। हर मिलिया हर प्रभ नाओ रहाओ। जब लग जोबन सास है, तब लग नाम त्याए। चलदिया नाल हर चल सी, हर अंते लए छडाए। हों बलिहारी तिनको, जिन हर मन उठायाए। जिन्नी हर हर नाम ना चेत्यो, से अंत गए पछताए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, जन नानक नाम त्याए। मन हर हर प्रीत लगाए, वड भागी गुर पाया। गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हरे आपे आप उपाएंदा, हरे आपे देवैली। हरे आपे परम पलाएंदा, हरे आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है, से विरले के ई के। हों बलिहारी तिनको, जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया, मन हर हर बुठड़ाए। मन हर हर जपन करे, हर गुर सरनाई भज पौ जिंदू। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ। घट घट रमैया मन वसै, क्यों पाईऐ कित भत। गुरपूरा सतगुर भेटीऐ, हरे आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है, हर नाम मैं ते गत मत। मैं हर हर नाम वसाहू है, हर नामी ही जत पत। जन नानक नाम त्याया, रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्याहु हो हर प्रभ सत, गुर बचनी हर प्रभ जानिया। सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ। जिनको पूर्व लिखिया, से आए मिले गुर पास। सेवक पाए वणजारिया मित्रा, गुर हर हर नाम परगास। तन तन वणजवा पारिया, जिन वखर लद्याड़ा हर रास।

तू आपे कमल अलिप्त है सह थां विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमख घड़ी कर ख्याल हर तुदहो बाहर किस नहीं गुर शब्दी वेख निहाल सलोक महला तीजा हुक्म न जाने बहुता रोवे अंदर धोखा नींद ना सोवे जे तन खसमै चले रजाई दर कर सोभा महल बुलाई नानक करमी एह मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मनमुख नाम विहूणिया रंग कुसुंबा देख ना भुल इसका रंग दिन थोड़िया सोचा इसदा मुल दूजै लगे पच मोए मूर्ख अंध गवार बिष्टा अंदर कीट से पै पचह वारो वार नानक नाम रते से रंगले गुर कै सहज सुपाए भगती रंग न उतरै सहजे रह सुमाए पौड़ी सृष्ट उपाई सब तुद आपे रिजक संबाहया एक वल छल करके खाम दे मुंह कूड़ कुसत तिनी ढाया तुद आपे पावै सुह करह तुद ओतै कम ओए लाया इकना सच बुझायोन तिना अतुट भंडार दिवाया हर चेत खाहे तिना सफल है अचेता हाथ तड़ाया सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित बेद बखान है माया मोह सवाई दूजै पाए हर नाम वसारिया मन मूर्ख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता तिस कबहू ना चेतै जो देंदा रिजक संभाए जम का पाहा गलहु न कटियै फिर फिर आवै जाए मनमुख किशु ना सूजै अंधले पूर्व लिखिया कमाए पूरै भाग सतगुर मिलै सुख दाता नाम वसै मन आए सुख मान है सुख पैनना सुखे सुख वे आए नानक सो नाओ मनो ना विसारी है जित दर सच्चै सोभा पाए महला तीजा सतगुर सेव सुख पाया सच नाम गुणतास गुरमति आप पछाणिया राम नाम परगास सचो सच कमावना वडियाई वड्डे पास जियो पिंड सब तिसका सिफत करे अरदास सच्चै शब्द सलाहना सुखे सुख निवास जप तप संयम मने माहे बिन नावै त्रिग जीवास गुरमति नाव पाईऐ मनमुख मोहे विनाश ज्यों भावै त्यों राख तू नानक तेरा दास पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सब नारास सब तुदै पासो मंग दे नित कर अरदास जिस तू देहें तिस सब किश मिलै।

कर्म परापत होए, सत्य रत्ते गुर शब्द सियो, तिन सच्चे सदा लिव होए, नानक जिसनो मेले ना विछड़े, सहज समावै सोई महला तीजा, सो भगौती जो भगवंत जाने, गुर प्रसादी आप पछाणे, धावत राखै इकत घर आणे, जीवत मरे हर नाम बखाणे, ऐसा भगौती उत्तम होए, नानक सच समावै सोए महला तीजा, अंतर कपट भगौती कहाए, पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए, पर निंदा करे अंतर मल लाए, बाहर मल धोवै मन की झूठ ना जाए, सत संगत सिंह बाद रचाए, अनदिन दुखिया दूजै पाए रचाए, हर नाम ना चेतै बहु कर्म कमाए, पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए, नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए, पौड़ी सतगुर जिनी त्याया से कर ना सुवाही, सतगुर जिनी त्याया से तृप्त अगाही, सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही, जिन को हुआ कृपाल हर से।

फिर छोड़िया घर अपना पर पुरखे नाल प्यार कृष्णा कदे ना चुकई जल्दी करे पुकार नानक बिन नावे कुरूप कसोहनी पर हर छोड़ी पतार महला तीजा शब्द रती सोहागनी सतगुर कै पाए प्यार सदा रावे फिरे अपना सच्चे प्रेम प्यार हत सवाल्यो सुंदरी शोभावंती नार नानक नाम सुहागनी मेली मेलन हार पौड़ी हर तेरी सब करह उस्तत जिन फाथे काढ़िया हर तुदनो करह सब नमस्कार जिन पापे ते राखिया हर नमाणिया तू मान हर डाढ़ी हूं तू डाढ़िया हर अहंकारियां मार निवाए मन मुख मूड साध्या हर भगतां दे वडियाई गरीब अनाथिया सलोक महला तीजा सतगुर कै भाणे जो चले तिस वडियाई वड्डी होए हर का नाम उत्तम मन वसै मेट ना सकै कोय कृपा करे जिस अपनी तिस कर्म प्राप्त होए नानक कारण करते वस है गुरमुख बूझै कोय महला तीजा नानक हर नाम जिनी आराध्या अन दिन हर लिवतार माया बंदी खसम की तिन अगै कमावे कार पूरा पूरा कर छोड़िया हुक्म सवार नहार गुर प्रसादी जिन बुझिया तिन पाया मुख द्वार मनमुख हुक्म ना जाननी तिन मारे जम जंदार गुरमुख जिनी आराध्या तिनी तरिया भौजल संसार सब औगण गुणी मटाया गुर आपे बख्शन हार पौड़ी हर की भगतां प्रतीत हर सब किछ जानदा हर जेवड़ नाही कोई जान हर धर्म बीचारदा काड़ा अंदेसा क्यों कीजै जान नाही अधर्म मारदा सच्चा साहिब सच न्याऊ पापी नर हारदा सलाह हो भगत हो कर जोड़ हर भगत जन तारदा सलोक महला तीजा अपने प्रीतम मिल रहा अंतर रखा उरतार सलाही सो प्रभ सदा सदा गुर कै हित प्यार नानक जिस नदर करे तिस मेल लय साई सुहागन नार महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई जां को नदर करे मानस ते देवते पहे त्याया नाम हरे हौं मैं मार मलायन गुर कै शब्द तरे नानक सहज समायन हरे अपनी कृपा करे पौड़ी हरे अपनी भगत कराए वडियाई वे खालियन अपनी आप करे प्रतीत आपे सेव कालियन हर भगतानो दे आनंद थिर घरी बहालियन पापिया नो ना दे थिर रहन चुन नरक घोर चालियन हर भगतानो दे प्यार कर अंग निस्तारियन सलोक महला पहला कुबुद्ध डूमनी कुदया कसायन पर निंदा घट चूड़ी मुठी क्रोध चंडाल कारी कड़ी क्या थी है

मां जानै जे दिन दिन अवध कटत है मोर मोर कर अधिक लाड धर पेखत ही जमराव हसै ऐसा तै जग भरम लाया कैसे बूझै जब मोहया है माया रहाओ कहत कबीर छोड़ बिख्या रस इत संगत निश्चौ मरना रमैया जपो प्राणी अनत जीवन बाणी इन बिद भव सागर तरना जां तिस भावै ता लागै भाव परम भलावा विचों जाए उपजै सहज ज्ञान मत जागै गुर प्रसाद अंतर लिव लागै इत संगत

प्राणी जरा मरण भव विसर गया कटंब देख बिकसह कमला ज्यों पर कर जो है कपट नरा दूड़ा आयो हे जमह तना तिन आग लड़ै मैं रहन ना जाए कोई कोई साजन आई कहे मिल मेरे बीठला ले बाहड़ी वलाए मिल मेरे रमैया मैं ले छाए रहाओ अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी संसार सागर पै अमर पया माया मूठा चेतस नाही जन्म गवायो आलसिया विखम घोर पंथ चालना प्राणी रावसा सतह ना।

बदत त्रिलोचन रामैया श्री राग भगत कबीर जियो का अचर्ज एक सुनोरे पंडिया अब किश कहन न जाय सुर नार गण गंधर्व जिन मोहे त्रिभुवन में खुली लाई राजा राम अनहद किंगुरी बाजे जाकी दिष्ट नाद लिव लागे रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया कनक कलस एक पाया तिसमह धार चोए अत निर्मल रसमह रसन चुआया एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया तीन भवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम कहो कबीर रंग राता और दुनी सब भरम पुलानी मन राम रसायन माता श्री राग

रे नार गर्भ कुंडल जब आसत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मादना एहनस एक अज्ञान सो नागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनहु बिसारिया फिर पछताव हैगा मूड़िया तू कमन कमत भ्रम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरै अनरादा रहाओ बाल बनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोहे प्यापै रस मिस मेद अमृत बिख चाखी तो पंच प्रगट संतापै जप तप संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना अरादिया उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सर अपसर ना पछाणिया उन मत काम महा बिख भूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख इहो मन गर्भिया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो भग मुख जन्म बगोया कुंडर केस कुसुम ते धौले सपत पाताल की बाणी लोचन श्रम है बुद्ध बल लाठी ता काम पव समाधानी ता ते बिखै भई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछै पछताना निकुट्टी दे देख तुन उपजै मान करत नहीं बूझै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कशु ना सूझै थाका तेज उड्या मन पंखी तारे आंगन ना सुखाई देनी कह सुनो रे भगत हो मरन मुक्त किन पाई श्री राग तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनक कटक

रहाओ। तुम जो नायक आचहु अंतर जामी, प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी। शरीर अराधै मोको विचार देहु, रविदास समदल समझावै।

भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद हर हर नाम मैं हर मन पाया वडभागी हर नाम ते आया गुरपूरै हर नाम सिद्ध पाई को विरला गुरमत चलै जियो मैं हर हर खर्च लिया बन पलै मेरा प्राण सखाई सदा नाल चलै गुरपूरै हर नाम दड़ाया हर निश्चल हर तन पलै जियो हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया कोई आन मलावै मेरे प्राण जीवाया।

करहो प्रतपाला। मेरा मात पिता गुर सत गुर पूरा, गुर जल मेल कमल विगसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवै, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावै। हर हर दया करहु गुर मेलो, जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सत संगत हर गुण गाए, जग पौजल।

मित्र सखा सो प्रीतम भाई, मैं दसे हर नर हरिय जियो, मेरी बेदन हर गुर पूरा जाने, हो रह ना सका बिन नाम वखाणी, मैं औखद मंत्र दीजै गुरपूरे, मैं हर हर नाम उधरिय जियो, हम चातरक दीन सतगुर सरनाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिय जियो, माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भुख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन भीजै जियो, मिल सतसंग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन पानी, हर हर अमृत हर मन भावै, मिल सतगुर अमृत पीजै जियो, वड भागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटां खावै, बिन भागां सतसंग ना लब्भै, बिन संगत मैल परिजै जियो, मैं आए मिलहु जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पीजै जियो, माज महला चौथा हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पी आया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौंदा जियो, आवहु संत मैं गल में लाई है, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाई है, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौंदा जियो, वड भागी हर संत मलाया, गुरपूरे हर रस मुख पाया, भागहीन सतगुर नहीं पाया, मन मुख गर्भ जूनी नित पौंदा जियो, आप दयाल दया प्रभ धारी, मल हम मैं बिखिया सब नेवारी, नानक हट पटन विच काया, हर लैंदे गुरमुख सौदा जियो, माज महला चौथा हौ गुण गोविंद हर नाम त्याई, मिल संगत मन नाम वसाई, हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की चै जियो, तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता, जाए पुछा जन हर की बाता, पाम मलुआ मल मल धुआ, मिल हर जन हर रस पीचै जियो, सतगुर दातै नाम दिड़ाया, वड भागी गुर दर्शन पाया, अमृत रस सच अमृत बोली, गुरपूरै अमृत लीचै जियो, हर सत संगत सत पुरख मिलाइयै, मिल सत संगत हर नाम ते आइयै, नानक हर कथा सुनी मुख बोली, गुरम

प्यास प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जीओ। यो बारक पी खीर अगावे ज्यो निर्तन तन देख सुख पावे। त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यो हर संग इहो मन पीना जीओ। ज्यो अंधियार है दीपक परगासा परता चितवत पूर्ण आसा। मिल प्रीतम ज्यो होत आनंदा त्यो हर रंग मन रंगीना जीओ। संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गजाया। हर हमरा हम हर के दासी नानक शब्द गुरु सच दीना जीओ। माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया। सुखदाई दुख बढ़ारन हरिया अवर साध चख सगले देखे। मन हर रस सब ते मीठा जीओ। जो जो पीवे सो तृप्तावे अमर होवे जो नाम रस पावे। नाम निदान तिसह प्रापत जिस शब्द गुरु मन बूठा जीओ। जिन हर रस पाया सो तृप्त आगाना जिन हर साध पाया सो नाही डुलाना। तिसह प्रापत हर हर नामा जिस मस्तक पागी था जीओ। हर एक सहाथ आया वरसाने बहुतेरे किस लग मुक्त भये कनेरे। नाम निदाना गुरमुख पाई है कहो नानक विरली दीठा जीओ। माज महला पंजवा निद सिद रिद हर हर हर मेरा। जन्म पदार्थ गहर गंभीर है लाख कोट खुशियां रंग रावे। जो गुर लागा पाई जीओ। दर्शन पेखत पए पनीता सगल उदारी पाई मीता। अगम अगोचर स्वामी अपना गुर कृपा ते सच त्याई जीओ। जाको खोज है सर्ब उपाय वडभागी दर्शन को विरला पाए। पूछ अपार अगोचर थाना ओह महल गुरु देखाई जीओ। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त पया जिस हृदय बसेरा। गुरबंधन तिनके सगले काटे जन नानक सहज समाई जीओ। माज महला पंजवा प्रभ कृपा ते हर हर त्यावो। प्रभु दया ते मंगल गाव। उठत बैठत सोवत जागत हर त्याई सगल अवरदा जीओ। नाम औखद मोको साधु दिया किल बिक काटे निर्मल थिया। आनंद भया निकसी सब पीरा सगल बनासे दरदा जीओ। जिसका अंग

संग राता प्रभ प्रत पाले सेवक सुख दाता पाणी पक्का पीसो सेवक कै ठाकुर ही का आहार जियो काट सिलक प्रभ सेवा लाया हुक्म साहिब का सेवक मन पाया सोई कमावै जो साहिब पावै सेवक अंतर बाहर माहर जियो तू दाना ठाकुर सब बिद जान है ठाकुर के सेवक हर रंग मान है जो किस ठाकुर का सो सेवक का सेवक ठाकुर ही।

सो गहर गंभीरा गौहर जीओ माज महला पंजवा सब किश घर में है बाहर नाही बाहर टोले सो परम फलाही गुर प्रसादी जिन्नी अंतर पाया सो अंतर बार सुहिला जीओ चिम चिम वरसै अमृत तारा मन पीवै सुन शब्द बीचारा आनंद बनोद करे दिन राती सदा सदा हर के ला जीओ जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते।

जीयो से नेतर परवान जिन्नी दर्शन पेखा से कर भले जिन्नी हर जस लेखा से चरण सहावे जो हर मार्ग चले हौ बाल तिन संग पछाणा जीयो सुन साजन मेरे मीत प्यारी साध संग किन माही उदारी किल बिख काट हुआ मन निर्मल मिट गए आवन जाना जीयो दोए कर जोड़ एक बिनो करीजै कर कृपा डुबदा पत्थर लीजै नानक कहो प्रभ भय कृपाला प्रभ नानक मन पाणा जीयो।

तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए, सब किस कीता तेरा हुवै, नाही किस असाड़ा जियो, नाम त्याए महा सुख पाया।

जी प्राण प्रभ मन है आधारा, भगत जीव है गुण गाए अपारा, गुण निदान अमृत हर नामा, हर त्याए त्याए सुख पाया जियो, मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन्म मरण मटावे, हास मनोरथ पूरन होवे, टीटत गुर दरसाया जियो, अगम अगोचर किश मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी, खुदी मिटी चूका पुलावा, गुरमन ही मह प्रगटाया जियो, आनंद मंगल कल्याण निदाना, सुख सहज हर नाम बखाना, होए कृपाल स्वामी अपना, नाव नानक कर मह आया जियो, माज महला पंजवा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, तू प्रीतम ठाकुर अत पारी, तुमरे कर्तव तुम ही जानहु, तुमरी ओट गोपाला जियो, गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे।

सुख पाया, ठांड पाई प्रभ आपी जीव, सब किश बहुतो बहुत उपाया, कर कृपा प्रभ सगल रजाया, दात करहु मेरे दातारा, जी जंत सब त्रापे जीव, सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसाद तिस सदा त्याई, जन्म मर

खिन पीतर हर हर हर गुण जापे जीओ माज महला पंजवां। आओ साजन संत मीत प्यारे मिल गावह गुण अगम अपारी गावत सुनत सबे ही मुक्ते सो त्याय जिन हम किए जीओ जन्म जन्म।

कर कृपा प्रभ भक्ति लाभ हो सच नानक अमृत पिए जियो माज महला पंजवां पये कृपाल गोविंद गुसाई मेघ वरसै सबनी थाई दीन दयाल सदा कृपाला ठांड पाई करतारी जियो अपने जी जंत प्रित पारी ज्यों बारक माता संभारी दुख भंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारी जियो जल थल पूर रहया मेहरवाना सद बलिहार जाइए कुर्बाना रैन दिन सतिस सदा त्याई जे खिन मह सगल उदारी जियो राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल प्रभ नानक नदर निहारे जियो माज महला पंजवां जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्थल सोइन चौबारे जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा से ही नगर उजाड़ी जियो हर रुखी रोटी खाए संभाले हर अंतर बाहर नदर निहाले खाए खाए करे बद फैली जान विसु की वाड़ी जियो संता से तीरंग न लाए साकत संग विकर्म कमाए दलाब दे खोई अज्ञानी जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो तेरी शरण मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुरु गोपाला।

नानक दान किया दुख भंजन रत्ते रंग रसाली जियो माज महला पंजवा मन तन तेरा तन पी तेरा तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड सब।

सगल मनोरथ पूरन होए, कदे ना होए दुखाला जियो। माज महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया, जल थल महियल दह दिस वरसाया। शांत भई बुझी सब तृष्णा, आनंद भया सब ठाई जियो। सुख दाता दुख भंजन हारा, आपे बख्श करे जी सारा। अपने कीते नो आप प्रित पाले, पै पैरी तिसह मनाई जियो। जां की सरन पया गत पाईऐ, सास सास हर नाम ते आईऐ। तिस बिन होर

गुर के चरण बसे मन माही, अंगीकार किया तिन करतै, दुख का डेरा टाहया जियो, मन पन बसया सच्चा सोई, बिखड़ा थान ना दिसै कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन हुए, एको स्वामी आहया जियो, जो किछ करे सो आपे आपै, बुद्ध सियाणप किशु ना जापै, आपणिया संतां नूं आप सहाई, प्रभ भरम भलावा लाहया जियो, चरण कमल जन का आधारू, आठ पहर राम नाम वापारू, सहज आनंद गावहै गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्ब समाहया जियो, माज महला पंजवां, सो सच मंदर जित सच त्याई है, सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है, सा धरत सुहावी जित वस्स है हर जन,

जन तेरे सच शब्द मन माणो जीओ सच सलाहन वड भागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है।

तरी जय सागर कटिय जम की फासा जीव। चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जप अलख अपेवा। काम क्रोध किल बिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जीव। पूर्ण भाग भये जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी। नानक नाम वसया जिस अंतर परवान गिरस्त उदासा जीव। माज महला पंजवा सिमरत नाम हृदय सुख पाया। कर कृपा भगती प्रगटाया संत संग मिल हर हर जपिया।

ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर प्रब सबना गल्ला जोगा जीओ छिन मह थाप उथापन हारा आप एकंती आप पसारा लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन दिते लहन विजोगा जीओ अंचल लाए सब शिष्ट तराई अपना नाओ आप जपाई गुर बोहित पाया।

ऐसा पली जाए। सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लगे जिस मीठा जियो। सब परोई इकत धागे, जिस लाए लए सो चरनी लागे। ऊंद कवल जिस होए परगासा, तिन सर्व निरंजन।

निर्मल, जिन देखे सब उतरह कलमल, नानक नाम त्याए त्याए जीवै, बिनसिया भ्रम भउ तीठा जीउ, माज महला पंजवा, झूठा मंगण जे कोई मांगै, तिस कौ मर के घड़ी ना लागै, पार

अन दिन नित जागी बाहां पकड़ तिस स्वामी मेले जिसकै मस्तक लहना चरण कमल भगता मन उठे बिन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की धूड़ नित बांछ है नाम सच्चे का गहना उठत बैठत हर हर गाइए जिस सिमरत वर निश्चल पाइए नानक कहो प्रभ होए दयाला तेरा कीता सहना राग माज अष्टपदियां।

माया मोह चुकावणिया हौ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारणिया गुरमति परगास हुआ जी अन दिन हर गुण गावणिया रहाउ तन मन खोजे ता नाउ पाई धावत राखै खाक रहाई गुर की बाणी अन दिन गावै सहजे भगत करावणिया इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साथ मिले ता वेखा नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजावणिया।

तू आपे सच बुझा बनिया जिन सच जाता से सच समाणी हर गुण गावे सच वखाणी नानक नाम रते बैरागी

सदा नाली गुर प्रसादी को नदर निहाली मेरा प्रभु अत ऊचो ऊचा कर कृपा आप मनावणिया माया मोहे एहो जग सुता।

गत पाई भगती रत्ता सदा बैरागी आप मार मनावनिया आप उपाय तंदे लाई लख चौरासी रिजक आप अपड़ाई नानक नाम त्याई सच।

कै शब्द परख परखाया। जिन सच पल्लै सच बखान है सच कसवटी लावणिया। हों वारी जी ओ वारी गुर की बाणी मन वसावणिया। अंजन माही निरंजन पाया ज्योति ज्योत मलावणिया। रहाव किस काया अंदर बहुत पसारा नाम निरंजन अत अगम अपारा। गुरमुख हो ऐ सोई पाई आपे बख्श मलावणिया। मेरा ठाकुर सच दृढ़ाई।

सच मेरा प्यारा किल विख अवगुण काटन हारा प्रेम प्रीत सदा त्याई है पै भाए भगत दृढ़ा बनिया तेरी भगत सच्ची जे

कै आप उपाया दुबदा दूजा त्रिविद माया चौथी पौड़ी गुरमुखी उची सचो सच कमावणिया सब है सच्चा जे सच्चे पावे जिन सच जाता सो सहज समावे गुरमुख करनी सच्चे सेव है सच्चे जाए समावणिया सच्चे बाजो को अवर ना दुआ दूजे लाग जग खप खप मुआ गुरमुख हो वै सो एको जाने एको सेव सुख पावणिया जी जंत सब सरन तुम्हारी आपे धर देख कह।

राज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरलै किने चख डीठी अंतर प्रगास महारस पीवे दर सच्चै शब

पाया अंतर निर्मल निर्मल बाणी हर गुण सहजी गावणिया सिमरत शास्त्र वेद बखाणे भरमे भूला।

निर्मल बाणी शब्द वखाण है, सच्चे सेव सदा सुख पायन, नौ निद नाम मन वसावणिया, सुथान सुहाया जो हर मन पाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अन दिन हर सलाह है साचा, निर्मल नाद बजावणिया, मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूड़ कमावण दुख लागे पारा, परमे भूले फिरन दिन राती, मर जन्म है जन्म गवावणिया, सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर कै शब्द आधारा, नानक नाम मिले वडियाई, दुख सुख सम कर जाननिया, माज महला तीजा, तेरिया खानी तेरिया बाणी, बिन नावे सब परम पलानी, गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुर कोए ना पावणिया, हौ वारी जियो वारी, हर सेती चित लावणिया, हर सच्चा गुर भगती पाई, सहजे मन वसावणिया, रहाउ सतगुर सेवे ता सब किश पाए, जेही मनसा कर लागे तेहा फल पाए, सतगुर दाता सबना वथू का, पूरे भाग मलावणिया, इहो मन मैला एक न त्याए, अंतर मैल लागी बहु दूजे पाए, तट तीर्थ दसंतर भवे अहंकारी, होर वधेरे होमै मल लावणिया, सतगुर सेवे तां मल जाई, जीव तमरे हर स्यों चित लाई, हर निर्मल सच मैल न लागे, सच लागे मैल गवावणिया, बाज गुरु है अंध गुबारा, अज्ञानी अंधा अंध अंधारा, बिस्ता के कीड़े बिस्ता कमावे है, फिर बिस्ता माही पचावणिया, मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हौ मैं ममता शब्द देखोवे, अन दिन हर

बिद माया, पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, चौथे पद की सार ना पावणिया, आपे रंगे रंग चढ़ाई, से जल राते गुर शब्द रंगाई, हर रंग चढ़िया अत अपारा, हर रस रस गुण गावणिया, गुरमुख रिद सिद्ध सच संयम सोई।

मूड़ा बाहर पाली, मनमुख अंधे फिरह बेताली, जिथे वत होवे तिथों कोई ना पावे, मनमुख परम पलावणे।

आई, आपे सुन सुन त्या बणिया। माज महला तीजा, सतगुर साची सिख सुनाई, हर के तोह अंत होए सखाई।

पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन भागा गुर पाई है नाही, शब्द है मेल मलावणिया, गुरमुख अलिप्त रह संसारी, गुर कै तकिया नाम अधारी, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावणिया, मनमुख अंधे सुध ना काई, आत्म घाती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु भार उठावे, बिन मजूरी भार पहुंचावणिया, इहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली, जेही वासना पाए ते ही वरतै, वासु वास जनावणिया, मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अघम अपारा, दुखिए नित फिर है बिललांदी, बिन गुर शांत ना।

किस बाजू हूँ सच्ची मैं होर न कोई, जिस लाई लय सो निर्मल होई। नानक नाम वसै घट अंतर, जिस देवै सो पावणिया। माज महला।

अमृत शब्द अमृत हर बाणी सतगुर सेवै हृदय समाणी नानक अमृत नाम सदा सुख दाता पी अमृत सब भुख लह जावणिया माज महला तीजा अमृत वरसै सहज सुपाई गुरमुख विरला कोई जन पाई अमृत पी सदा तृप्तासी कर कृपा तृष्णा बुझा।

निरंजन सुई जिन सिर जीतने आपे गोई। नानक नाम संभाल सदा तू सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा से सच लागे जो तुद पाए।

मन निश्चल निज घर वासा पावणिया। गुरु कै शब्द हृदय दिखाया, माया मोह शब्द जलाया। सचो सचा वेख सलाही, गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी, हर नाम संभाल है से वडभागी। सच्चा शब्द आप मलाई, सत संगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे, ओहो अगम अगोचर शब्द सुधो होवे। अन दिन सच शब्द सलाही, होर कोई ना कीमत पावणिया। पढ़ पढ़ था के शांत न आई, तृष्णा जाले सुध न काई। बिख विहाज है बिख मोह प्यासी, कूड़ बोल बिख खावणिया। गुर प्रसादी एको जाना, दूजा मार मन सच समाणा। नानक एको नाम वरतै मन अंतर, गुर प्रसादी पावणिया। माज महला तीजा, वर्ण रूप वरतै सब तेरे। मर मर जमै फिर पवै कनेरे, तू एको निश्चल अगम अपारा। गुरमति बूझ बुझावणिया, हौं वारी जियो वारी। राम नाम मन वसावणिया, किस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई। गुरमति आप

तै सब थाई ज्योति ज्योत मलावणिया तिसना अगन जलै संसारा लोभ अभिमान बहुत अहंकारा।

सच सलाही सब घट अंतर सचो सच सुहावनिया सच सलाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया पर पूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवे सच्चे ही सुख पावनिया सच मन अंदर रहया समाए सदा सच निश्चल आवे ना जाए सच्चे लागे सो मन निर्मल गुरमती सच समावनिया सच सलाही अवर न कोई जित सेवै सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावनिया माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत सब माहि समाणी निर्मल बाणी हर सालाही जप हर निर्मल मैल गवावनिया हौ वारी जीओ वारी सुखदाता मन वसावनिया हर निर्मल गुर शब्द सलाही शब्दो सुन तिसा मटावनिया रहाओ निर्मल नाम वसिया मन आई मन तन निर्मल माया मोह गुआई निर्मल गुण गावे नित साचे के निर्मल नाद बजावनिया निर्मल अमृत गुर ते पाया विचों आप मोआ तिथे मोह ना माया निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल निर्मल बाणी मन वसावनिया जो निर्मल सेवे सो निर्मल होए हौ मैं मैल गुर शब्दे धोवे निर्मल वाजे अनहद धुन बाणी दर सच्चै सोभा पावनिया निर्मल ते सब निर्मल होए निर्मल मनुआ हर शब्द परोए निर्मल नाम लगे बड़ भागी निर्मल नाम सुहावनिया सो निर्मल।

माया मोह इस मनह न चाई, अंतर कपट दुख पावनिया, गुरमुख भगत जा आप कराई, तन मन राता सहज सुपाई, बाणी बजे शब्द बजाई, गुरमुख भगत थाई पावनिया, बहु ताल पूरे बाजे बजाई, ना को सुने ना मन वसाई, माया कारण पेड़ बंद नाचे, दूजे पाए दुख पावनिया, जिस अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता, इंद्री वस सच संयम जुगता, गुर कै शब्द सदा हर त्याई, एहा भगत हर पावनिया, गुरमुख भगत जुग चारे होई, होरत भगत ना पाए कोई, नानक नाम गुर भगती पाईए, गुर चरणी चित लावणिया, माज महला तीजा, सच्चा सेवी सच सालाही, सच्चे नाही दुख कब ही नाही, सुख दाता सेवन सुख पाइन, गुरमत मन वसावणिया, हौ वारी जीओ वारी, सुख सहज समाग लगावणिया, जो हर सेवह से सदा सोह, सुबा सुत सुहावनिया, रहाओ सब को तेरा भगत कहाई, से भगत तेरे मन पहाई, सच बाणी तुदे सालाहन, रंग राते भगत करावनिया, सब को सच्चे हर जियो तेरा, गुरमुख मिले ता चूकै फेरा, जा तुद भावै ता नाही रचावह, तू आपे नाउ जपावनिया, गुरमती हर मन वसाया, हरख सोग सब मोह गवाया, इक सस्यों डिव लागी सदही, हर नाम मन वसावनिया, भगत रंग राते सदा तेरे चाई, नौ निध नाम वसया मन आई, पूरे भाग सतगुर पाया।

किसै मलाई, गुर शब्द मिलहै से विछड़ह नाही। सहजे सच समावणिया, तुझते बाहर कछु ना होए, तू कर कर वेखहै जानहै सोई।

बहु कर्म कमावे मुक्त न पाई, देश अंतर पवे दूजे पाई खुआई। बिरथा जन्म गवाया कपटी, बिन शब्द है दुख पावनिया। तावत राखै ठाक रहाई, गुर प्रसादी परम पद पाई। सतगुर आपे मेल मलाई, मिल प्रीतम सुख पावनिया। एक कूड़ लागे कूड़े फल पाई, दूजे पाए बिरथा जन्म गवाई। आप डुबे सगले कुल डुबे, कूड़ बोल बिख खावनिया। इस तन मह मन को गुरमुख देखै, भाई भगत जा हौ मैं सुखै। सिद्ध साधक मोल धारी रहे लिवलाई, तिन पी तन मह मन ना दिखावनिया। आप कराए करता सोई, होर के करे कीता क्या होई। नानक जिस नाम देवै सो लेवै, नामो मन वसावनिया। माज महला तीजा, इस गुफा मह अखुट भंडारा। इस विच वसै हर अलख अपारा, आपे गुपत प्रगट है आपे। गुर शब्दी आप वियावनिया, हों वारी जियो वारी। अमृत नाम मन वसावनिया, अमृत नाम महारस मीठा। गुरमती अमृत पी आवनिया, रहाओ। हौ मैं मार बजर कपाट खुलाया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया। बिन शब्द नाम ना पाई कोई, गुर कृपा मन वसावनिया। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। ज्योति ज्योत मिली मन मानिया, हर दर शोभा पावनिया। शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम ना लह बहुत बेगार दुख पाई। मन मुखे अंधे सूजह नाही, फिर घेरे आए गुरमुख वत पावनिया। गुर प्रसादी सच्चा हर पाई, मन तन वेखै हौ मैं मैल जाई। बैस सुखान सद हर गुण गावै।

गुरमुख हर दर शोभा पाई, गुरमुख विचों आप गवाई, आप तरह कुल सगले तारी, गुरमुख जन्म सवारनिया, गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर, गुरमुख हौ मैं चूकै पीर, गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे, गुरमुख सहज समावनिया, गुरमुख नाम मिले वडियाई, गुरमुख गुण गावे शोभा पाई, सदा आनंद रह दिन राती, गुरमुख शब्द करावनिया, गुरमुख अन दिन शब्द दे राता, गुरमुख जुग चारे है जाता, गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल, शब्द भगत करावनिया, बाज गुरु है अंध अंधारा,

की। नानक जिस नदर करे सो पाए, कर कृपा मन वसावणिया। माज महला तीजा, हर आपे मेले सेव कराए। गुर कै शब्द

पढ़ बुझ मन वसावणिया गुरमुख पढ़ हर नाम सलाह है दर सचह सोभा पावणिया रहाउ अलख अपेयो हर रहया समाई उपाय न किती पाया जाई कृपा करी ता सतगुर भेटै नदरी मेल मनावणिया दूजै पाए पड़ै नहीं दूजै त्रेविद माया कारण लूजै त्रेविद बंधन टूटै गुरशब्दी गुरशब्दी मुक्त करावणिया एहो मन चंचल वस न आवै दुबदा लागै दह दिस धावै बिख का कीड़ा बिख मैं राता बिख ही माही पचावणिया हों हों करे तै आप जनाई बहु कर्म करै किस थाए ना पाई तुझते बाहर किशु ना होवै बख्शे शब्द सुहावणिया उपजै पचै हर बूजै नाही अन दिन दूजै पाए फराही मन मुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणिया फिर परदेश शिंगार बनाई मन मुख आंधिया से।

शब्द पुछाता, अन दिन भगत करे दिन राती, सहजे ही सुख पावनिया, सब मैं वरतै इको सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई, नानक नाम रते जन सोहै, कर किरपा आप मलावनिया, माज महला तीजा, मनमुख पढ़ै पंडित कहावै, दूजै पाए महा दुख पावै, बिख्या माते किस सूजै ना।

सेवा ते हर मन वसिया हर रस सहज पी आमणिया रहाउ वेद पढ़े हर रस नहीं आया वाद वखाणे मोहे माया अज्ञान मत्ती सदा अंधियारा गुरमुख बूज हर गावणिया अकथो कथिय शब्द सुहावे गुरमती मन सचो पावे सचो सच रवह दिन राती इहो मन सच रंगावणिया जो सच रत्ते तिन सचो पावे आपे दे ना पछो तावे गुर कै शब्द सदा सच जाता मिल सच्चे सुख पावणिया कूड़ कसत तिन्ना मैल ना लागे गुर प्रसादी अन दिन जागे निर्मल नाम वसै कट पीतर ज्योति ज्योत मलावणिया त्रै गुण पढ़े हर तत् ना जाने है मूलों भुले गुर शब्द ना पछाण है मोह व्यापी किस सूजै नाही गुर शब्दी हर पावणिया वेद पकार है त्रिविध माया

मैं मल लाई, इशनान करै पर मैल ना जाई, जीवत मरै गुर शब्द बीचारै, हम मैं मैल चुकावणिया, रतन पदार्थ करते पाया, पूरा सतगुर शब्द सुनाया, गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा, घट चानने आप पछानणिया, आप अपाए तै आपे वेखै, सतगुर सेवै सो जन लेखै, नानक नाम वसै घट अंतर, गुर किरपा ते पावणिया, माज महला तीजा, माया मोह जगत सवाया, त्रै गुण दिसह मोहे माया।

मन भावनिया साचा साहिब गुरमुख जापै पूरे गुर कै शब्द संजापै जिन पिया से त्रिपतासे सच्चे सच अगामणिया तिस कर सहजा सुई सुहेला अणद बनोद कर।

रख मन तन पावणिया। तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावणिया। रहाव तेरा कीता जिस लागै मीठा, घट घट पार ब्रह्म तिन जन दीठा। थान थनंतर तू है तू है, इको एक वरतावणिया। सगल मनोरथ तू देवन हारा, भगती पाए परे।

कर कृपा दास नदर निहाली गुण गावह पूर्ण अबनासी कह सुन तोट ना आवणिया एथे उथे तू है रखवाला मात गर्भ मह तुम ही पाला माया अग्न ना पोहै तिनको रंग रते गुण गावणिया क्या गुण तेरे आख संभाली मन तन अंतर तुद नदर निहाली तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी तुद बिन अवर ना जानणिया जिसको तू प्रभ पया सहाई।

ऊंच अथाह अपार अमोला, तू साचा साहेब दास तेरा गोला, तू मीरा साची ठकुराई, नानक बल बल जावणिया, माज महला पंजवां कर दूजा, नित नित दयो संभाली है, मूल ना मनहु विसारी है, रहाओ संतां संगत पाई है, जित जम कह पंथ ना जाई है, तोसा हर का नाम लै, तेरे कुलह ना लागे गाल जियो, जो सिमरन दे साई है, नरक ना से ही पाई है।

ले चलताम। चेत गोविंद अरादिय होवे आनंद घना, संत जना मिल पाई है रसना नाम पणा। जिन पाया प्रभ अपना आए तिसह गणा, एक खेन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। जल तल मई अल पूरिया रव्या विच बना, सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा। जिन्नी राव्या सो प्रभु तिन्ना भाग मना, हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना। चेत मलाई सो प्रभु तिसकै पाए लगा, वैसाख तीरन क्यों वाडियां जिन्ना प्रेम बशो। हर साजन पुरख वसार कै लगी माया तो, पुत्र कलत्तर ना संग तना हर अवनासी ओ। पलच पलच सगली मुई झूठै तंदै मोह, इक सहर के नाम बिन अगै लई है खोहे। दयो विसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना कोई,

पत होई। वैसाख सुहावा तां लगै जां संत भेटै हर सोई। हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है जिस अगै सब निवन। हर सज्जन दावन लगै।

मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आण मलावे माई संत सहाई प्रेम के हौ किन कै लागा पाई बिन प्रभ क्यों सुख पाईए दूजी नाही जाई जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाई आप त्याग बिनती करहे लेहो प्रभु लड़ लाई जो हर कंत मलाइया से विछड़ कतह न जाई प्रभु।

दोष ना काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन मह कौड़े होए गए जितड़े माया भोग विच ना कोई कर सके किस ठहरो वह रोज कीता किशु ना हो गई लिखिया तुर संजोग वडभागी मेरा प्रभ मिले ता उतर है सब बियोग नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच कत्तक होए साध संग दिन सह सबे सोच मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़िया इनकी शोभा क्या गणी जे साहेब में लड़िया तन मन मौलिया राम सिंह संग साध सही लड़िया साध जना ते बाहरी से रहन अके लड़िया तिन दुख ना कबहू उतरे से जम कै बस पड़िया जिन्नी राव्या प्रभ अपना से दिसन नित खड़िया रतन जवे हर लाल हर कंठ तिना जड़िया नानक बांछे धूड़ तिन प्रभ सरनी दर पड़िया मंगर प्रभ आराधना बहुड़ ना जन्मड़िया पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर ना मन भिद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा ओट गोविंद गोपाल राई सेवा स्वामी ला बिख्या पोहे ना सकई।

लाख बेरियां, हर सज्जन अगम अगाह, शरण पई नारायण नानक दर पैया, पोख सोहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे वे परवाह, माग मज्जन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान, हर का नाम त्याए सुन सबना नो कर दान, जन्म कर्म मल उत्तरे मन ते जाए गुमान।

सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगहा सच खरी सर्व सुखा निध चरण हर भौजल बिखम तरी प्रेम भगत तिन पाईया बिख्या नाही जरी कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे पार ब्रह्म प्रभ सेवंदे मन अंदर एक तरे महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे नानक मंगै दर्श दान कृपा करहु हरी।

आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैण जन्म जन्म का विछड़िया हर मेल हो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख ना वसन पैण हर फिर बिन चैन ना पाई खोज दिते सब गैन आप कमाण विछड़ी दोष ना काहू देन हर कृपा।

प्यार लगा थन दुध दूजे माए बाप की सुध तीजे भैया भाभी बेब चौथे प्यार उपन्नी खेड पंजवे खान पीयन की तात छिवे कामना पुछे जात सतवें सांझ किया घरवास अठवें क्रोध।

सी पुर हुए पचासी पग किसे, सठी के बोडे पायावे, सत्तर का मत हीन, असीहा का व्यवहार न पावे, नवे का सिह जासनी, मूल न जाने आप बाल, टंडोलिम टूंडम डिठ मैं, नानक जग तू का तवल हार पौड़ी, तू करतापुर के अगम है, आप शिष्ट अपाती, रंग परंग अपारजना, बहु बहु विध भांति, तू जान है जिन अपाई है, सब खेल तमाती, एक आव है एक जाहे उठ, बिन नावे मर जाती, गुरमुख रंग चलूलिया, रंग हर रंग राती, सो सेव हो सत निरंजनो, हर पुरख बधाती, तू आपे आप सुजान है, वड पुरख वडाती, जो मन चित तुद त्याई दे मेरे सच्चिया, बल बल हो तिन जाती,

आई जिन रच रचिया तिसह ना जाने अंधा अंध कमाई जा भजै ता ठीक कर होए घाड़त घड़ी ना जाई नानक गुर बिन नाही पत पत बिन पार ना पाई महला दूजा दिन दे थाम हूं दिता चंगा मन मुखे।

कमावै सो चहो कुंडी जानिए। जो धर्म कमावै तिस धर्म नाऊ होवै, पाप कमाणै पापी जानिए। तू आपे खेल करहै सब करती, क्या दूजा आख बखाणिए। जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोलै, बिन ज्योति कोई किस करे हो दिखा सियाणी है। नानक गुरमुख नदरी आया, हर इको सुगड़ सुजानी है। पौड़ी तुदे आपे जगत अपाए कै, तुदे आपे तंदे लाया। मोह ठगौली पाए कै, तुदे आपो हो जगत खुआया। जिसना अंदर अग्न है, नह तिपतै भुखा त्याया। सहसा एहो संसार है, मर जम्मै आया जाया। बिन सतगुर मोह ना टुटई, सब थके कर्म कमाया। गुरमति नाम त्याई है, सुख रजा जा तुद पाया। कुल उधारे अपना धन जनेंदी माया। सोभा सुरत सुहावनी जिन हर सेती चित लाया। सलोक महला दूजा अखी बाजो वेखना, विन कन्ना सुनना। पैरा बाजो चलना, विन हत्था करना। जीबै बाजो बोलना।

पाया। ज्यो भावै त्यो रख तू, सब करे तेरा कराया। इकना बख्श है मेल लह, गुरमति तुझै लाया। एक खड़े करह तेरी चाकरी, विण नावै होर ना पाया। होर कार वे कार है, एक सच्ची कार है लाया। पुत कलत कटंब है, एक अलिपत रहे जो तुद पाया। ओहे अंदर हूं बाहर हूं निर्मले, सच्चै नाहे समाया। सलोक महला पहला, सोइने कै पर्वत गुफा करी। कै पाणी पयाल, कै विच धरती कै आकाशी। उर्द रहा सिर पार, पुर कर काया कपड़ पहरा। धुआं सदाकार, बग्गा रत्ता पियला काला। बेता करी पुकार, हुए कुचील रहा मल धारी। दुर्मत मत विकार, ना हूं ना मैं ना हूं हुआ। नानक शब्द विचार। महला पहला, वस्त्र पखाल पखाले काया। आपे संयम होवे, अंतर मैल लगी नहीं जाने। बाहर हूं मल मल धोवे, अंधा भूल पया जम जाली। वस्त पराई अपनी कर जाने, हऊ मैं विच दुख काली। नानक गुरमुख हऊ मैं टुटे, ता हर हर नाम त्यावे। नाम जपे नामो आराधे, नामे सुख समावे पवड़ी। काया हंस संजोग मेल मलाया, तिन्ही किया वजोग जिन उपाया। मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया, सुख हो उठे रोग पाप कमाया। हरख हो सोग वजोग उपाय खपाया। मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया। सतगुर हाथ नबेड़ झगड़ चुकाया। करता करे सो होग ना चले चलाया। सलोक महला पहला, कूड़ बोल मुरदार खाई। अवरी नो समझावन जाई, मुठा आप महाए साथ है। नानक ऐसा आगू जापे। महला चौथा, जिसदे अंदर सच है। सो सच्चा नाम मुख सच अलाई। ओहो हर मार्ग आप चलदा, होर नानू हर मार्ग पाई। जे अगे तीर्थ होए ता मल लह, छप्पड़ नाते सगवी मल लाई। तीर्थ पूरा सतगुरु, जो अन दिन हर हर नाम त्याई। ओहो आप छुट्टा कुटंब सियो, दे हर हर नाम सब सृष्ट छडाई। जन नानक तिस बलिहार ने, जो आप जपै अवरा नाम जपाई। पौड़ी एक कंद मूल चुन खाहे, वन खंड वासा। एक भगवान वेश कर फिर है, जोगी सन्यासा। अंदर तृष्णा बहुत, साधन भोजन की आसा। बिरथा जन्म गवाई, ना गिरही ना उदासा। जम काल सिरहों ना उतरे, त्रेविद मनसा। गुरमति काल ना आवे नेड़े, जा होवे दासन दासा। सच्चा शब्द सच मन, घर ही माहे उदासा। नानक सतगुर सेवन अपना, से आसा ते निरासा। सलोक महला पहला, जे रत लगे कपड़े, जामा होए पलीत। जो रत पीवे मानसा, तिन क्यों निर्मल चीत। नानक नाहो खुदाई का, गिलह

जिस लाभ लोभ अहंकारा नाव पढ़िया नाव बुझिया गुरमति विचारा गुरमति नाम तन खटिया भगती परे भंडारा।

मरण जीवन का भरम चुकावै रब की रजाए मन्ने सिर उपर करता मन्ने आप गवावै तौ नानक सर्व जिया मेहरमत होए ता मुसलमान कहावै।

कामनी मोह तजै ता अंजन माहे निरंजन पावे तज मान अभमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिवलावे नानक साचा मन वसै साच शब्द हर नाम समावे पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो हट पटन बाजार हुक्मी तहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर्ब भरे भंडार रीते एक खणे ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलख घरवार किते से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दातार सनाखत कुदरती।

महला पहला पार अठारह मेवा हुए गरुड़ा हुए सुआऊ चांद सूर्य दोए फिर दे रखी है निश्चल हो ऐ पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ महला पहला जे देह दुख लाई है पाप ग्रह दोए राह रात पीने राजे सिरे ऊपर रखी है इवें जापै पाऊ पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ महला पहला अग्गी पाला कपड़ होवे खाना होवे वाऊ सुरगै दियां मोहनियां इस्त्रियां होवन नानक सबो जाऊ पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ पवड़ी बद फैली गै बाना खसम ना जाने सो कहिए देवाना आप ना पछाणी।

लश्कर क्या नेब खवासी आवै महली वास नानक सच्चे नाम वेण सबे टोल वडास पवड़ी जाति दे क्या हाथ सच परखी है मोहरा हुए हाथ

हुरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज दी चार शब्द सुनाया। एक होए असवार एक ना साखती, इकनी बदे पार इक ना ताकती। सलोक महला पहला जा पक्का ता कटिया, रही सो पलरवार सन की सारा चिथिया। कान लया तन झाड़ दोए पुड़।

रबद बादशाह अफजू खुदाई, एक तू ही एक तू ही महला पहला, ना देव दानवा नरा ना सिद्ध साधका तरा, अस्त एक जिगर कोई एक तुई एक तुई महला पहला, ना दादे देहांदे आदमी ना सपत जेर जिमी, अस्त एक जिगर कोई एक तुई महला पहला, ना सूर सस मंडलो ना सपत दीप नह जलो, अन पौन फिर ना कोई एक तुई महला पहला, ना रिजक दस्त आकसे हमारा एक आस वसे, अस्त एक जिगर कोई एक तुई महला पहला, परंदे ना ग्रहा जर दरखत आब आस कर, देहांद सुई एक तुई महला पहला, नानक ललार लिखिया।

सच पछाणिया। सच तेरा दरबार शब्द निशाणिया, सच्चा शब्द विचार सच समाणिया। मनमुख सदा कूड़ियार परम फलाणिया, विष्ठा अंदर वास साधना जानिया। बिन नावें दुख पाए आमन जानिया, नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया। सलोक महला पहला, सिंहा बाजा चरगा।

जां तुद भावै ता होवै राजे, रस कस बहुत कमावै। जां तुद भावै तेग भगावै, सिर मुंडी कट जावै। जां तुद भावै जाहे दसंतर, सुन गल्लां घर आवै। जां तुद भावै नाहिर चावै, तुद पाणी तू भावै। नानक एक कहै बेनंती, होर सगले कूड़ कमावै। महला पहला, जां तू वड्डा सब वडियाईया, चंगा चंगा होई। जां तू सच्चा ता सब को सच्चा, कूड़ा कोई ना कोई। आखण वेखण बोलण चलण, जीवन मरना तात। हुक्म साज हुक्मै विच रखै, नानक सच्चा आप पौड़ी। सतगुर सेवन संग परम चुकाई है, सतगुर आखै कार सो कार कमाई है। सतगुर होए दयाल ता नाम त्याई है, लाहा भगत सो सार गुरमुख पाई है।

सच बुलाई है, नानक सच सदा सचियार सच समाई है। सलोक महला पहला, कल काती राजे का साई, धर्म पंख कर उडरिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसै नाही कह चढ़िया, हों भाल विकुन्नी होई, अंधेरै राहो ना कोई, विच हों मैं कर दुख रोई, कहो नानक किन बिद गत होई। महला तीजा, कल कीरत प्रगट चानन संसार, गुरमुख कोई उतरै पार, जिसनो नदर करे तिस देवै, नानक गुरमुख रतन सो लेवै। पौड़ी, भगतां तै संसारियां, जोड़ कदे ना आया, करता आप अभुल है, ना भुलै किसै दा भुलाया, भगत आपे मेलियन, जिन्नी सचो सच कमाया, संसारी आप खुआयन, जिन्नी कूड़ बोल बोल बिख खाया, चलन सार ना जाननी, काम क्रोध विस वधाया, भगत करन हर चाकरी, जिन्नी अन दिन नाम त्याया, दासन दास होए कै, जिन्नी विचों आप गवाया, ओना खसमै कै दर मुख उजले, सच्चै शब्द सुहाया। सलोक महला पहला, सबाही सलाह, जिनी त्याया इक मन, से पूरे साह, वखतै उपर लड़ मोए, दूजै बहुते राह, मन किया मती खिंदियां, बहुत पए असगाह, गोते खाहे ना निकलह, तीजै मुही ग्राह, भुख तिखा दोए पौंकियां, खादा हुए स्वाह, पी खाने स्यों दोस्ती।

गुण गाहक एक वन भुखियां भुख ना उतरै गली भुख ना जाए नानक भुखा ता रजै जा गुण कह गुणी समाए पौड़ी बिन सच्चे सब कूड़ कूड़ कमाई है बिन सच्चे कूड़ियार बन चलाई है बिन सच्चे तन शार शार रलाई है बिन सच्चे सब

ठगियो ठग आईय जाइय तन मह तृष्णा यग शब्द बुझाइय। सलोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्के कर्म ध्यान पत के सा

आई। हुक्म पया तुर खसम का, अती हूं टक्का खाई। गुरमुख स्यों मन मुख अड़े, डुबे हक न्याय। दुहां सिरिया आपे खसम, वेख कर व्यपाई। नानक एवै जानिए, सब किस तिसहर जाय। महला दूजा नानक।

मूल जान गल्ला करे हान लाए हान लब ना चली सच रह सो विष्ट परवान सर संदे आगास को।

साधना तृप्तिया सायर परेत सुख नानक सच्चे नाम की केती पुछा पुछ महला दूजा नेह पलंग तस जन्मस

नित सुरही सा तन दही बलोवै इत के होम जग सद पूजा पय कार्य सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नातै जित वड्याई नानक जे सिर खुते नावन नाही ता सत चट्टे सिर शाई महला दूजा अग्नि पाला की करे सूरज के ही रात चंद अनेरा की करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किछ होए नानक ता पत जानी है जा पत रखै सोए पौड़ी तुद सच्चे सुभान सदा कलाणिया तू सच्चा दी बाण होरिया मन जानिया सच जे मंगह दान से तुदै जेहया सच तेरा फरमान शब्दे सोहया।

पै पौ राख्या भाई सुवार रहाउ, पै तन अगन पखै पै नाल, पै पौ कड़ी है शब्द सुवार, पै बिन काड़त काचन कच, अंधा सच्चा अंधी सट, बुद्धि बाजी उपजै चाऊ, सहस सियाणप पवै ना ताऊ, नानक मनमुख बोलन वाऊ, अंधा अखर वाऊ दुआऊ, गौड़ी महला पहला, डर कर कर डर डर डर जाई, सो डर केहा जित डर डर पा।

ना डूबै तरै जिन किश किया सो किश करै हुक्मे आवै हुक्मे जाए आगे पाछे हुक्म समाए हंस हेत आसा समान तिस विच भूख बहुत नहसान पाओ खाना पीना आधार बिन खादे मर होए गवार जिसका कोए कोई कोए कोए सबको तेरा तू सबना का सोए जाके जी जंत धन माल नानक आखन बिखम बीचार गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर एहो वसेख कहना है किस कहन न जाए तौ कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ शर्म सुरत दोए ससुर भये करनी कामन कर मन लये साहा संजोग व्याह वजोग सच संतत कहो नानक जोग गौड़ी।

तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ घट ही माही, पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाणे, पीतर होंदी वस्त ना जाने, हौ ना मुआ मेरी मुई बलाई, ओ ना मुआ जो रहे आसमाई, कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर ना आया, गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन बूझे मन नाऊ, ताँ कै सद बलिहारे जाऊ आ

नाम हृदय अमृत मुख नाम नर हर नाम नर हर ने काम रहाउ सहजी आवे सहजी जाई मन ते उपजे मन माही समाई गुरमुख मुख तो बंद ना पाई शब्द विचार छुटे हर नाई तरवर पंखी बहो निसबास सुख दुखिया मन मोह विनाश सांझ बिहाग तकह आगास दह दिस तावह कर्म लिखियास नाम संजोगी गोइन थाट काम क्रोध फूटे बिखमाट बिन बखर सुनो घर हाट गुर मिल खोले बजर कपाट साध मिले पूरब संजोग सच रहस्ये पूरे हर लोग मन तन देले सहज सुभाए नानक तिनके लागो पाए गौड़ी महला पहला काम क्रोध।

कुंडा पड़वाऊ जेवा इंद्री एक सुवाऊ दिष्ट वकारी नाही पहु पाओ आप मारे ता पाए नाओ शब्द मरे फिर मरन ना हुए बिन मुए क्यों पूरा हुए परपंच व्याप रहया मन दो।

सच सलाही धन गुरुद्वार नानक दर घर एक अंकार गौड़ी महला पहला उल्टियो कमल ब्रह्म विचार अमृत धार गगन दस द्वार त्रे पवन बेदिया आप मरार रे मन मेरे भरम ना कीजै मन माने अमृत रस पीजै रहाउ जन्म जीत मरन मन मानिया आप मुआ मन मन ते जानिया नजर पई कर करते जानिया जत सत तीरथ मज्जन नाम।

उठाऊ। नानक गुरमत सहज समाऊ। गौड़ी महला पहला। सतगुर मिले सो मरण दिखाई। मरन रहन रस अंतर पाई। गर्भ निवार गगन पुर पाई। मरन लिखाए आए नहीं रहना। हर जप जाप रहन हर सरना रहाउ। सतगुर मिले तदुबदा भागे। कमल बगास मन हर प्रभ लागे। जीवत मरे महारस आगे। सतगुर मिले सच संयम सूचा। गुर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा। कर्म मिले जम

गुरबचनी सच शब्द पछाता तेरा तान नाम की वडियाई नानक रहना भगत सरनाई गौड़ी महला पहला जिन अकत कहाया अपयो पी आया अन पै बिसरे नाम समाया क्या डरिय डर डर है समाना पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास सहज सुपाए मिले साबास जाहे सवार सांझ बयाल इत उत मन मुख बांधे काल अहनस राम हृदय से पूरे नानक राम मिले ब्रह्म दूरे गौड़ी महला पहला जन्म मरे त्रै गुण हितकार चारे वेद कथ है आकार तीन अवस्था कह बखियान तुरियावस्था सतगुर ते हर जान राम भगत गुर सेवा तरना बहुड़ जन्म ना हुए है मरना रहाउ चार पदार्थ कह सब कोई सिमरत सासत पंडित मुख सोई बिन गुर अर्थ विचार ना पाया मुक्त पदार्थ भगत हर पाया जां कै हृदय बसिया हर सोई गुरमुख भगत प्राप्त होई हर की भगत मुक्त आनंद गुरमत पाए परमानंद जिन पाया गुर देख दिखाया आसा माहि निराश बुझाया दीना नाथ सर्व सुख दाता नानक हर चरणी मन राता गौड़ी चेती महला पहला अमृत काया रह सुखाली बाजी एह संसारु लभ लोभ मुच कूड़ कमावे बहुत उठावे भारू तू काया मैं रुलदी देखी ज्यों धारू पर शारू सुन सुन सिख हमारी सो कृत कीता रहसी मेरे जियड़े बहुड़ न आवे वारी रहाऊ हौ तुदे आखा मेरी काया तू सुन सिख हमारी निंदा चिंदा करह पराई झूठी लाए तिबारी वेल पराई जो है जियड़े करह चोरी बुरियारी हंस चलिया तू पिछे रही ए छुट्टड़ हुई है नारी तू काया रही है सुपनंतर तुद क्या कर्म कमाया कर चोरी मैं जा किश लिया ता मन भला पाया हलत ना सोबा पलत ना ढोई तो

भोग तिसे का पाना रहाउ। साहू हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके बनजारी। जियो पिंड सब रास तिसे की, मारे आपे जी वाले। गौड़ी चेती महला पहला, अवर पंच हम एक जना। क्यों राखो कर बार मना, मार है लूट है नीत नीत। किस आगे करी पुकार जना।

सातना अमृत केल करे नित कामन अवर लुटेन सो पंच जना ताहे मड़ोली लूटिया देहरा सा तन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना कामन लोड़े सोयना रूपा मित्र लोड़ेन सो खादाता नानक पा

केते पशु अपाई, केते नाग कुली मह आई, केते पंख उड़ाई, हट पटन बिज मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवे, अगों देखै पिछों देखै, तुझते कहां छुपावे, तट तीरथ हम नव खंड देखे, हट पटन बाजारा, लैके तकड़ी टोलन लागा, घट ही मह वणजारा, जीता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे, दया करहु किस मेहर उपावहु, डुबदे पत्थर तारी जिया।

पार मेरा सहु वसै हौ मिलोंगी बाहां पसार। नागन होआ तर वसा शब्द वसै पहु जाए, नानक सदा सुहागनी जिन ज्योति ज्योत समाए। गौड़ी पूर्वी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखी है करते का हुए बिचारु, तित कर गाव हो सोहिला सिवर हो सिरजनहारु। तुम गाव हो मेरे नरपहु का सोहिला, हौ वारी जाऊं जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कवन समार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देहो सज्जन आसी सड़िया ज्यो होए साहिब स्यो मेल। कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिया नानक से दे आवन। राग गौड़ी गवार री महला तीजा चौपदी।

ले शब्द पछाण सतगुर कह पहे ब्रह्म पहु जाई पहरा कह सच रंग समाई रहाउ गुर मिले हर मन वसै सुपाई मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाई।

जो पांडा हुई ऊंदे पांडे टिके ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास गौरी ग्वारी महला तीजा।

साची वाणी शब्द विचार गावत रहे जे सतगुर पावे मन तन राता नाम सुहावे रहाउ। एक गाव है एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पिर राखिया सदा उरतार भगत करह मूर्ख आप जनावह

नच नच टपह बहुत दुख पावह, नचे टपे भगत न होई, शब्द मरै भगत पाई जन सूई, भगत वशल भगत कराई सूई, सच्ची भगत बिचों आप खोई, मेरा प्रभ साचा सब बिद जाने, नानक बख्शे नाम पछाने, गौड़ी गुआरी महला तीजा, मन मारे तात मर जाए, बिन मुए कैसे हर पाए, मन मरे दारू जाने कोई, मन शब्द मरे बूझे जन सोए, जिसनो बख्शे दे वडियाई, गुर प्रसाद हर वसे मन आई, रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे, ता इस मन की सोजी पावे, मन में मत मैगल मिकदारा, गुरे अंकस मार जीवालन हारा, मन असाद साधे जन कोए, अचार चरे ता निर्मल होए, गुरमुख इहो मन लया सवार, हौ मैं विचों तजे वकार, जो तुर राखियन मेल मलाए, कदे ना विचण है शब्द समाए, अपनी कला आपे ही जाने, नानक गुरमुख नाम पछाने, गौड़ी गुआरी महला तीजा, हौ मैं विच सब जग बौराना, दूजे पाए परम पुलाना, बहु चिंता चितवे आप ना पछाना, धंधा करतिया आन दिन विहाना, हिरदय राम रमहु मेरे पाई, गुरमुख रसना हर रसन रसाई, रहाओ गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता, जग जीवन सेव जुग चारे जाता, हौ मैं मारे गुर शब्द पछाता, कृपा करे प्रभ कर्म बधाता, से जन सच्चे जो गुर शब्द मलाए, ताव

पत परवाना हर के नाम बिटो बल जाऊं तू विसरह तब ही मर जाऊं रहाऊ तिन तू विसरह जे तुदे आप भुलाए।

तै पुन तिन हउ मैं मारी, नानक जो नाम रते तिन को बलिहारी। गौड़ी ग्वारी महला तीजा, तू अकथ क्यों कथिया जाई, गुर शब्द मारन

ते बूझै जन कोई रहाओ। असंत अनारी कदे ना बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै। अंध अज्ञानी कदे ना सीजै, इस जुग में राम नाम निस्तारा। बिरला को पाई गुर शब्द विचारा, आप तरै सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म धर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कै कर होई। नानक नाम बिना को मुक्त ना होई। गौड़ी महल्ला।

नाम जपो हो पवजल उतरो हो पार रहाओ परमे आवे परमे जाई एहो जग जन्मया दूजे पाई मन मुख ना चेतै आवे जाई आप भुला के प्रभ आप भुलाया एहो जियो वडाणी चाकरी लाया महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया किरपा कर सतगुरु मलाए एको नाम चेते विचो परम चकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए गौड़ी गुआर दी महला तीजा जिन्ना गुरमुख त्याया।

हर हर नाम देवै जन सोए, अन दिन भगत गुर शब्दी होए, गुरमत विरला बूझै कोए, नानक नाम समावै सोए, गौड़ी गवार री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावै कोई, अखोट नाम तन हर तोट ना होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे परम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेव है से महापुरख संसारे, आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रख है उर तारे, नाम रते पौजल उतरह पारे, सतगुर सेव है सदा मन दासा, हूं मैं मार कमल परगासा, अनहद वाजै निज करवासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेव है इनकी सच्ची बाणी, जुग जुग भगती आख बखाणी, अन दिन जप है हर सारंग पाणी, नानक नाम रते निह केवल निर्वाणी, गौड़ी गुआर री महला तीजा, सतगुर मिले वड भाग संयोग, हिरदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते किने विरले चख दीठा, कर्म कांड बहु करह आचार, बिन नामे त्रिग त्रिग अहंकार, बंधन बांधियो माया पास, जन नानक छूटे गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्ये पानी नाही, जैसे धरती मध्ये पानी परगासिया, बिन पगा बरसत फराही, बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किछ करत है।

तेरी तुझे ही माही समाही। इतने जन्म भूल परे से जा पाया ता भूले नाही। जाका कार्ज सोई पर जाने जे गुर कै शब्द समाही।

कथा है हर की, पाज मिल साधु संगत जन की, तर पौ जल कथ कथा सुन हर की, गोबिंद सत संगत में लाई, हर रस रसना राम गुण गाए रहाउ, जो जन त्याव है हर हर नामा, तिन दासन दास करहु हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे, सो जन हमरे मन चित पावे, जन पग रेन वड भागी पावे, संत जना स्यो प्रीत बन आई, जिनको लिखत लिखिया तुर पाई, ते जन नानक नाम समाई, गौड़ी ग्वारी महला चौथा, माता प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत पई जल नाए, सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए, ए हर जन हर मेलो हो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाहे हमारे रहाओ, ज्यों मिल बशरे गौ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जा पेर घर आवे, हर जन प्रीत जा हर जस गावे, सारिंग प्रीत बसै जल तारा, नरपत प्रीत माया देख पसारा, हर जन प्रीत जपै निरंकारा, नर प्राणी प्रीत माया धन खाते, गुरसिख प्रीत गुर मिलै गलाते, जन नानक प्रीत साध पग चाटे, गौड़ी ग्वारी महला चौथा, भीखक प्रीत भीख प्रभ पाए, भूखे प्रीत होवै अन्न खाए, गुरसिख प्रीत गुर मिल आघाए, हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी, कर कृपा लोच पूर हमारी रहाओ, चकवी प्रीत सूरज मुख लागे, मिले प्यारी सब दुख त्यागे, गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे, बशरे प्रीत खीर मुख खाए, हृदय बिगसै देखे माए, गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए, होर सब प्रीत माया मोह काचा, बिन सजाए पूरा कच पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी ग्वारी महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम त्याया हर तनी, जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कणी, गुरसिख हर बोलो हो मेरे भाई, हर बोलत सब पाप लह जाई रहाओ, जब गुर मिलिया तब मन वास आया, तावत पंच रहे हर त्याया, अन दिन नगरी हर गुण गाया, सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई, तिन कूड़ ते आगे हर लिब लाई, ते हर दरगाह मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर पावे, कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावे, नानक गुरमुख हर आप तरावे, गौड़ी ग्वारी महला चौथा, हर आपे जोगी डंडा तारी, हर आपे रब रहया बनवारी, हर आपे तप तापै लाए तारी, ऐसा मेरा राम रहया भरपूर, निकट वसै नाही हर दूर रहाओ, हर आपे शब्द सुरत धुन आपे, हर आपे वेखै बिगसै आपे, हर आप जपाए आपे हर जापे, हर आपे सारिंग अमृत धारा, हर अमृत आप पिया मनहारा।

रंग सिउ जे आप दयाल हुए देह हम बन जारे राम के हर वणज करावे देरा सरे रहाउ लाहा हर भगत तन खटिया हर सच्चे साहा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया होर वणज करह वापारिये अनंत तरंगी दुख माया वे जेह बणज हर लाया फल तेहा तिन पाया हर हर वणज सो जन करे

गर्भ पालती सुत की कर आसा वड्डा हुए तन खाट दे कर भोग बलासा क्यों हर जन प्रीत हर राखदा दे आप हथासा मेरे राम मैं मूर्ख हर राख मेरे गुसैया जन की उपमा तुझह वडैया रहा मंदर कर आनंद हर हर जस मन पावे सब रस मीठे मुख लगह जां हर गुण गावे हर जन परवार सधार है इक ही कुली सब जगत छडावे जो किश किया सो हर किया हर की वडियाई हर जी तेरे तू वरतदा हर पूज कराई हर भगत भंडार लहाईंदा आपे वरताई लाला हाट विहाजिया क्या तिस चतुराई जे राज बहाले ता हर गुलाम काशी को हर नाम कढाई जन नानक हर का दास है हर की वडियाई गौड़ी गुआरवी महला चौथा किरसानी किरसान करे लोचे जियो लाए हल जोतै उदम करे मेरा पुत धी खाए त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए।

था। हमरै मन चित हर आस नित, क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा, जिन प्रीत लाई सो जानता, हमरै मन चित हर बहुत प्यारा, हौं कुर्बानी गुरे अपनी,

अपनी कृपा धार रहाउ। हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत न आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर पावे। हम अपराधी राखे गुर संगति, अपदेश दियो हर नाम छडावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोल है तब विस्म होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छडाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे। गौड़ी बैरागण महला चौथा, कंचन नारी मह जियो लुभत है। मोह मीठा माया, कर मंदर घोड़े खुशी, मन अनरस लाया।

हर हर दयाल कर कृपा बख्शे अवगण सब मेरे रहाओ। किस रूप नहीं किस जात नाही किस ढंग ना मेरा क्या मुंह लै बोल है गुण विहून ना।

कपड़ पहनन दिया रास अन्न को गाणी जिन दिए सो चेतना आवई पशु हों कर जानी सब कीता तेरा वर्तदा तू अंतर जामी हम जंत विचारे क्या करह सब खेल तुम स्वामी जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यों जननी सुत जन पालती राख नदर मजार अंतर बाहर मुख देह ग्रास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है यानी तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणी रहाओ जैसी गगन फरंती उड़ती कपरे बागे वाली ओह राखै चीत पीछे बिच बचरे नित हिरदय सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखै जी नाली जैसे काती तीस बतीस है विच राखै रसना मास रात केरी कोई जानो मास काती कै किस हाथ है सब वसगत है हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करह हर राखै पैज जन केरी भाई मत कोई जानो किसी कै किस हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग न सकै बिन हर का लाया ऐसा हर नाम मन चित नित त्यागहु जन नानक जो अंति अवसर लए छडाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए मन की दुब

जाए हर परम पद लहिए मेरा सतगुरु प्यारा कित बिद मिले हौ खिन खिन करी नमस्कार मेरा गुर पूरा क्यों मिले रहाउ कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इच पुन्नी जन केरिया ले सतगुर तूरा हर भगत दरड़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिए टोटा मूल ना आवई हर लाभ नित दृढ़िए जिस को हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उधर हर गुण गावाही महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग भया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हों गोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करहो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सबाई हर निकट वसै हर कोली हर हर निकट वसै सब जग कह अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुरपूरै सिर वेचियो गुर पै मोली हर जी अंतर बाहर तुम सरनाग तुम वड पुरख वडोली जन नानक अन दिन हर गुण गावै मिल सतगुर गुर वे चोली गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीश्वर पुरख बधाते जित मार्ग तुम प्रेर हो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर से तीराते सत संगत मिल राम रस पाया हर राम मैं नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सर नाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड़ अवर ना दाते जन नानक नाम लए ता जीवै हर जपिए हर कृपाते गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहो कृपा जग जी मन दाते मेरा मन हर से तीराचे सतगुर बचन दियो अत निर्मल जप हर हर हर मन माचे राम मेरा मन तन बेद लियो हर साचे जेहे काल कै मुख जगत सब ग्रसया गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे रहाओ जिनको प्रीत नाही हर सेती ते साकत मूड नर काचे इनको जन्म मरण अत भारी विच विस्ता मर मर पाचे तुम दयाल सरन प्रतपालक मोको दीजे दान हर हम जाचे हर के दास दास हम कीजे मन निरत करे कर नाचे आपे साहा वड्डे प्रभ स्वामी हम बन जा रे है ताचे मेरा मन तन जियो रास सब तेरी जन नानक के साहा प्रभ साचे गौड़ी पूर्वी महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख भंजन।

हम सतगुर पार ब्रह्म कर मानी, हम मूड मुगद अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर कै बचन हर हम जाने रहाउ, जितने रस अनरस हम देखे सब तितने फीक फीकाने, हर का नाम अमृत रस चाखिया, मिल सतगुर मीठ रस गाने, जिनको गुर सतगुर नहीं पीटिया ते साकत मूड देवानी, तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीपक मोहे पचाने, जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगाने, जन नानक हर हर हर जप प्रगटे मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्वी महला चौथा। मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी, कहो कितै हर पहु नसीऐ, हर आपे बख्श लए प्रभ साचा, हर आप छुड़ाए छुटिऐ, मेरे मन जप हर हर हर मन जपिऐ, सतगुर की सरनाई भज पौ मेरे मना, गुर सतगुर पीछे छुटिऐ रहाउ, मेरे मन सेवहु सो प्रभ सर्ब सुख दाता, जित सेवै निज कर वसीऐ, गुरमुख जाए लहो कर अपना, कस चंदन हर जस कसीऐ, मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम, लैला हर मन हसीऐ, हर हर आप दया कर देवै, ताय अमृत हर रस चखीऐ, मेरे मन नाम बिना जो दूजै लागे, ते साकत नर जम कुटिऐ,

नरहर जित सेवियै लेखा छुटियै जन नानक हर प्रभ पूरे किए खिन मासा तोल ना कटियै गौड़ी पूर्वी महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करहो हर दर्श दिखावहो मेरे मन तन लोच कनेरी राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी गुर कृपाल कृपा किंचत गुर कीनी हर मिलिया आए प्रभ मेरी रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम हर जानो मेरी अन दिन नाम

अन दिन अनद पया बड भागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश्वर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा इहो मनुआ खिन ना टिकै बहु रंगी दह दह दिस चल चल हांडी गुरपुरा पाया वड भागी हर मंत्र दिया मन ठाढे राम हम सतगुर लाले कांडे रहाउ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साढ़े पार उपकार पुन बहु किया बहु दुत्तर तार पराढ़े जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गाडन गाडी ज्यो पानी कागद बिन सुजात है त्यों मन मुख गर्भ गलाढ़े हम जानिया कछु ना जान है आगै ज्यो हर राख है त्यों ठाढ़ी हम पूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे कांडे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोद नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाही पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाही कर साधु अंजलि पुन वड्डाही कर डंडोत पुन वड्डाही रहाउ साकत हर रस साधना जानिया इन अंतर हम मैं कंडाही ज्यों ज्यों चल है चुभै दुख पावे जम काल सह सिर डंडाही हर जन हर हर नाम समाणी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाही जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडाई गौड़ी पूर्वी महला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है किस साधना पावे तीठा हर दीन दयाल अनुग्रह किया।

हर अग में अगोचर पार ब्रह्म है, मिल सतगुर लाग बसीठा, जिन गुर बचन सुखा नेही अरै, तिन आग है आन परीठा, मन मुख ही अरा अत कठोर है, तिन अंतर कार करीठा, बिसियर कौ बहु दूध पी आई है, बिक निक सह फोल फलीठा, हर प्रभ्यान मलाव गुर साधु, कस गरड़ो शब्द मुख लीठा, जन नानक गुर के लाले गोले, लग संगत करुआ मीठा, गौड़ी पूर्वी महला चौथा।

पाग सुभागी राम गुरमत हर लिव लागी रहाउ। कट कट रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिव लागी। हो मन तन देवो काट गुरु कहो मेरा भ्रम पहो गुर बचनी भागी। अंधियार है दीप ज्ञान जलाए गुर ज्ञान गुरु लिव लागी। अज्ञान अंधेरा बिनस बनासेउ कर वस्त लही मन जागी। साकत बदक माया तारी तिन जम जो हन लागी। हुन सतगुर आगै सीस ना बेचिया हुए आवह जाहे अभागी। हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर हम शरण प्रभु हर मांगी। जन नानक की लाज पात गुरु है सिर बेचे हो सतगुर आगी। गौड़ी पूर्वी महला चौथा हम अहंकारी अहंकार अज्ञान मत गुर मिले आप गवाया। हम मैं रोग गया सुख पाया तन तन गुरु हर राया। राम गुर कै बचन हर पाया रहा मेरा ही अरे प्रीत राम राय की गुर मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सतगुर आगे जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरा अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदय नाल दिखाया। सहज आनंद भया मन मोर गुर आगे आप बिचाया। हम अपराध पाप बहु कीने कर दुष्टि चोर चुराया। अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाहद गुरमत मनुआ गावे। वड भागी गुर दर्शन पाया तन तन गुरु लिव लावे। गुरमुख हर लिव लावे रहाउ हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे। हम मल मल धोवे पाव गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हृदय गुरमत राम रसायन जिहवा हर गुण गावे। मन रसक रसक हर रस आगामी फिर बहोर न भूख लगावे। कोई करे उपाव अनेक बहुतेरी बिन कृपा नाम ना पावे। जन नानक को हर कृपा तारी मत गुरमत नाम दृढ़ावे। राह गौड़ी माज महला चौथा गुरमुख जिंदू जप नाम करम्मा। मत माता मत जियो नाम मुख रामा। संतोख पिता कर गुरपुरख अजन्मा वड भागी मिल रामा। गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। वड भागी मिल सुगड़ सुजाणी जियो मेरा मन तन हर रंग पिन्ना। आवह संत हो मिल नाम जपाहा विच संगत नाम सदा ले लाहा जियो। कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो। मिल पूर्व लिखियड़े तुर कर्मा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो। मन मोर कुह कियड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो। जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज महला चौथा। आओ सखी गुण कामन करी हा जियो। मिल संत जना रंग मान रलिया जियो। गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो। हर तुठै टुल टुल मिलिया।

प्यारिया वस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन वस जीव मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुरपुरा वेख विगस जीव हर नाम मिलिया सोहागनी मेरे गोविंदा मन अन दिन अन दरहस जीव हर पाए अड़ा वडभागी मेरे गोविंदा नित लैलाहा मन हस जीव हर आप उपाए हर आपे वेखे हर आपे कार लाया जीव एक खावह बख्श तोट न आवे एक न फक्का पाया जीव एक राजे तख्त बह नित सुखिये एक न भिख मगाया जीव सब इको शब्द वरतदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम त्याया जीव गौड़ी माज महला चौथा मन माही।

गोविंदा वडभागी नाम समाही दियो नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किनै हर प्रभ डिठड़ा नैनी जियो मेरा मन पन बहुत बैरा गया मेरे गोविंदा हर बाजो धन कुम लैनी जियो संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख विहानी रैनी जियो मैं मेलोह संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं मन तन भुख लगाइया जियो हो रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरहो हर लाइया जियो हर राया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो मेरा मन तन आसा पूरिया मेरे गोविंदा हर मिलिया मन वादाइया जियो वारी मेरे गोविंदा वारी मेरे प्यारिया हौ तुद विकटण्यो हो सदवारी जियो मेरा मन तन प्रेम परम का मेरे गोविंदा हर पूंजी राख हमारी जियो सत

हर आपे सब कट भोग दा मेरे गोविंदा आपे रसिया भोगी दियो हर सुजान ना भुलई मेरे गोविंदा आपे सतगुर जोगी जियो आपे जगत उपाय दा मेरे गोविंदा हर आप खिले बहुरंगी जियो एक ना भोग पुगाए दा मेरे गोविंदा एक नगन फिर है नंग नंगी जियो आपे जगत उपाए दा मेरे गोविंदा हर दान देवै सब मंगी जियो भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा हर कथा मंग है हर चंगी जियो हर आपे भगत कराए दा मेरे गोविंदा हर भगता लोच मन पूरी जियो आपे जल थल वरत दा मेरे गोविंदा राव रहया नहीं दूरी जियो हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा हर आप रहया परपूरी जियो हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा हर वेखै आप हदूरी जियो हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा हर आप बजाए त्यों वाजे जियो हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा गुर शब्दी हर प्रभ गाजे जियो आपे सरन पुआए दा मेरे गोविंदा हर भगत जना राख लाजे जियो वडभागी मिल संगती मेरे गोविंदा जन नानक नाम सिद्ध काजे जियो गौड़ी माज महला चौथा मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो मेरा नाम सखा हर पाई जियो गुण गावो संत जियो मेरे हर प्रभ केरे जियो जप गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो हर हर नाम जियो प्राण हर मेरे जियो फिर बहुड़ ना भवजल फेरे जियो क्यों हर प्रभ वेखा मेरा मन तन चाओ जियो हर मेलो संत जियो मन लगा पाओ जियो गुर शब्दी पाईए हर प्रीतम राव जियो वड भागी जप नाओ जियो मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो सतगुर मत नाम सदा परगासा जियो जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जियो गौड़ी माज महला चौथा मेरा बिरही नाम मिलै ता जीवा जियो मन अंदर अमृत गुरमत हर लीमा जियो मन हर रंग रतड़ा हर रस

प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो गुर मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो हौ नाम बिटोह कुर्बान जियो हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो हर दसोह संतोह जी हर खोज पवाई जियो सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो हर नामे नाम समाई जियो मैं वेलन प्रेम हर बिरहो लगाई जियो गुर शरदा पूर अमृत मुख पाई।

हल्ला पंजवा राग गौड़ी गुआर री चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद इन बेद कुशल होत मेरे भाई क्यों पा

तिस की ओट, निमुख माही हुवै तेरी छोट, सदा निकट कर तिस नो जान, प्रभ की आज्ञा सत कर मान, गुर कै बचन मटाव हो आप, हर हर नाम नानक जप जाप, गौड़ी गुआर री महला पंजवां, गुर का बचन सदा अबनासी, गुर कै बचन कट्टी जम फासी, गुर का बचन जी कै संग, गुर कै बचन रचै राम कै रंग, जो गुर दिया सुमन कै काम, संत का किया सत करमान, रहाओ गुर का बचन अटल अशेद, गुर कै बचन कट्टे भ्रम भेद, गुर का बचन कतहु ना जाय, गुर कै बचन हर के गुण गाय, गुर का बचन जी कै साथ, गुर का बचन अनाथ को नाथ, गुर कै बचन नरक ना पवै, गुर कै बचन रसना अमृत रवै, गुर का बचन प्रगट संसार, गुर कै बचन नाया वैहार, जिस जन होए आप कृपाल, नानक सतगुर सदा दयाल, गौड़ी गुआर री महला पंजवा, जिन कीता माटी ते रतन, गर्भ मह राखिया जिन कर जतन, जिन दीनी सोभा वडियाई, तिस प्रभ को आठ पहर त्याई, रमैया रेन साध जन पावो, गुर मिले अपना खसम त्याओ रहाओ, जिन कीता मूड ते बक्ता, जिन कीता बेसुरत ते सुरता, जिस प्रसाद नवै निद पाई, सो प्रभ मन ते बिसरत नाही।

सास ग्रासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कहो नानक इसते किश नाही राखन हारे कौ सलाही गौड़ी गुआरी महला पंजवा तिसकी शरण नाही पौ सोग उसते बाहर कछु ना होग तजी सियाणप बल बुद्ध बिकार दास अपने की राखन हार जप मन मेरे राम राम रंग राम।

तन मन शीतल पहे जन्म जन्म के किल विख गए सर्व निदान पेखे मन माए अब ढूंढन काहे को जाए प्रभ अपने जब पहे दयाल पूर्ण होए सेवक काल।

पूर्ण पूर रहे हो सब जाय, गुर पूरै सब परम चकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे, जो उबरे से बांध लख खरे।

रहाउ हस पवन हस्त असवारी जोआ चंदन सेज सुंदर नारी नट नाटक आखारे गाया तामह मन संतोख न पाया तखत सभा मंडन दोलीचे सगल मेवे सुंदर बागीचे अखेर बिरत राजन की लीला मन ना सुहिला पर पंच हीला कर कृपा संतन सच कहया सर्ब सुख एहो आनंद लहया साध संग हर कीर्तन गाईए कहो नानक वड भागी पाईए जां कै हर तन सोई सुहेला प्रभ कृपा ते साध संग मेला रहाउ दूजा गौड़ी गुआरवी महला पंजो।

राम गुण गाओ, निमक निमक हर हर हर त्याओ, आन ना सुनिए कतु जाइए, साध संगत बड भागी पाइए, आठ पहर जिहवे आराद, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद, इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसनी अमोली, बनस्पत मौली फल फूल पेडे, एह रस राती बहुर ना छोड़े, आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पए है सहाई, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, मन मंदर तन साजी बार, इस ही मत ही बस्त अपार, इस ही पीतर सुनियत साह, कवन बापारी जा का उहां वसाह, नाम रतन को बेवहारी, अमृत भोजन करे आहारी, रहाव मन तन अर्पी सेव करी जय, कमन सो जुगत जित कर पीजै, पाए लगो तज मेरा तेरै, कमन सो जन जो सौदा जोरै, महल साहा का किन बिद पावे, कमन सो बिद जित पीतर बुलावै, तू वड साह जाके कोट बन जारे, कमन सो दाता ले संचारे, खोजत खोजत निज कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जब मेले साह, कहो नानक गुर कै विसार, गौड़ी महला पंजवां गवारी, रैन दिनस रह इक रंगा, प्रभ को जान सद ही संगा, ठाकुर नाम कियो उनवर्तन, तृप्त अगावन हर कै दर्शन, हर संग राते मन तन हरे, गुर पूरे की सरनी परे, रहाव चरण कमल आत्म आधार, एक निहार है आज्ञाकार, एको वनज एको व्यवहारी, अवर ना जान है बिन निरंकारी, हरख सोग दोहू ते मुक्ते, सदा अलिपत जोग अर जुगते, दिस है सब मह सब ते रहते, पार ब्रह्म का उए ध्यान धरते, संतन की महिमा कमन बखानो, अगाध बोध किस मित नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत, तू मेरी पत तू है मेरा गहना, तुझ बिन निमख ना जाई रहना।

मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रह, साबत वस्त ओह अपनी लह रहाओ, सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारी, सुने नगर परे ठगहारी, उन तेरा कह बाप ना माई, उन तेरा कह मीत ना पाई, दर्ब स्याणप ना हुए रहते, साध संग ओए दुष्ट वस होते।

सो जागै जिस प्रभ कृपाल एह पूंजी साबत धन माल रहाओ दूजा गौड़ी गुआररी महला पंजवां जाकै वस खान सुल्तान जाकै वस है सगल जहान जाका किया सब किश होए तिसते बाहर ना ही कोए कहो बेनंती अपने सतगुर पाए काज तुम्हारे दे निभाहे रहाओ सब ते ऊंच जाका दरबार सगल भगत जाका नाम आधार सर्ब व्यापत पूर्ण तनी जाकी शोभा कट कट बनी जिस सिमरत दुख डेरा टह जिस सिमरत जम किशु ना कह जिस सिमरत होत सूके हरे जिस सिमरत डूबत पाहन तरे संत सभा कहो सदा जयकार हर हर नाम जन प्राण आधार कहो नानक मेरी सुनी अरदास संत प्रसाद मोको नाम निवास गौड़ी गुआरी महला पंजवां सतगुर दर्शन अग्न निवारी सतगुर भेट तहो मैं मारी सतगुर संग नाही मन डोलै अमृत बाणी गुरमुख बोलै सब जग साचा जा सच महराती शीतल शांत गुरते प्रभ जाते रहाओ संत प्रसाद जपै हर नाऊ संत प्रसाद हर कीर्तन गाऊ संत प्रसाद सगल दुख मिटे संत प्रसाद बंधन ते छुटे संत कृपा ते मिटे मोह परम साध रेण मजन सब धर्म साध कृपाल दयाल गोविंद साधा मह ए हमरी जिंद कृपा निध कृपाल त्यावो साध संगता बैठन पावो मोहे निर्गुण कौ प्रभ कीनी दया साध संग नानक नाम लया गौड़ी गुआरी महला पंजवां साध संग जपियो भगवंत केवल नाम दियो गुरमंत ताज अभमान भये निरवैर आठ पहर पूजो गुरपैर अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी जब ते सुनिया हर जस कानी।

नाम पार ब्रह्म स्यो लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपूरह मेटिया अंधियारा नानक का प्रभ अपर अपारा गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जाके कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ न व्यापे अमृत नाम हृदय हर जापे पार ब्रह्म परमेश्वर क्या यह।

काल अगमय गोचर सदा बेअंता सिमरमना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्व निदान प्रभु।

सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवा जी जुगत जा कह है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ प्रब चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाए बिन हर पव काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जाकी ज्योत जी परगास जाकी बख्शना में तय कोए सिमर सिमर प्रभ निरपव होए आठ पैर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज

ज्ञान आठ पहर हर हर गुण गाऊं कहो नानक कहो तिस बल जाऊं राग गौड़ी ग्वारनी महला पंजवा चौपदे दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना जो तज छोड़न तिस सियो मन रचना कहो गसाई मिली ऐ के जो बिबरजत तिस सियो ने रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगे ना राती बावे मार्ग टेढ़ा चलना।

बुरा भला कोई ना कही जय छोड़ मान हर चरण गिही जय कहो नानक गुरमंत्र चितार सुख पावे साचे दरबार गौड़ी महला पंजवा जाका मीत साजन है समिया तिस जन कहो कहो का की कमिया जा की प्रीत गोबिंद स्यों लागी दुख दर्द भ्रम तां का भागी रहाउ जा को रस हर रस है आयु सो अन रस नाही लपटायु जा का कहया दरगाह चले सो किस को नदर लै आवे तले।

देव आद पुरख अपरंपर देव तिसे ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जा की प्रीत सदा सुख होए नानक गावे गुर मिल सोए गौड़ी महला पंजवा मीत करे सोई हम माना मीत के करतब कुशल समाना एकाटेक मेरे मन चीता जिस किस करना सो

गुरु कृपा ते मोहे असनाहा मीत हमारा अंतर जामी सम्राट पुरख पार ब्रह्म स्वामी हम दासे तुम ठाकुर मेरे मान महत नानक प्रभ तेरे गौड़ी महला पंजवा जाको तुम पये समरथ अंगा।

नाहीं। कहो नानक गुरु खोले कपाट, मुक्त पए बिनसे भ्रम घाट। गौड़ी महला पंजवां, वड्डे वड्डे जोधी सहलोग। तिनको व्यापै चिंता रोग, कौन वड्डा माया वड्याई। सो वड्डा जिन राम लिवलाई। रहाउ भूमिया भूम ऊपर मित लुजै, छोड़ चलै तृष्णा नहीं बुझै। कहो नानक एहो तत बीचारा, बिन हर भजन नाही छुटकारा। गौड़ी महला पंजवां, पूरा मार्ग पूरा इशनान, सब किश पूरा।

पूर्ण राज जोग हर कै मार्ग पतत पनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करण हार सद वसै हदूरा कहो नानक मेरा सतगुर पूरा गौड़ी महला पंजवा संत की तूर मिटे अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट संत का दर्श पूर्ण इशनान संत कृपा ते जपिए नाम रहाव संत कै संग मिटिया अहंकार दृष्ट आवे सबे कंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय लै संचा कहो नानक जा का पूरा कर्म तिस भेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल पर गासै हर सिमरत त्रास सब नासै सामत पूरी जित हर गुण गावे बड़े भाग साधु संग पावे रहाव साध संग पाईए निदनामा साध संग पूर्ण सब कामा

मुख हर हर बोले सो जन इत उत कतह ना डोले जा कै हर तन सो सच साह गुरपूरै कर दीनो विसाह जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवां नाम भगत कै प्राण आधार नाम

नाम भगत कै सुख स्थान, नाम रत सो भगत परवान, हर का नाम जन को तारे, सास सास जन नाम सुमारे, कहो नानक जिस पूरा भाग, नाम संग ताका मन लाग, गौड़ी महला पंजवा, संत प्रसाद हर नाम ते आया, तब ते तावत मन

राध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब ताज अनाथ इक सरने आयो ऊच अस्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसया करनहार नानक मन बसया।

सिमरन की बरिया, सिमरत नाम पै पार उतरिया। रहाओ नेतर संतन का दर्शन पेख, प्रभ अवनासी मन महलेख। सुन कीर्तन साध पह जाए, जन्म मरण की त्रास मटाए। चरण कमल ठाकुर उरतार, दलाब देह नानक निस्तार। गौड़ी महला पंजवा, जाको अपनी कृपा तारे। सोजन रसना नाम उचारे, हर बिसरत सहसा दुख व्यापे। सिमरत नाम परम पौ भागै रहा।

पहले करत जन सोहै ता कौ माया अग्न ना पोहै मन तन मुख हर नाम दयाल नानक तजिया ले।

टकाई, दुख बिन से सुख हर गुण गाई, गुर पूरा पीतिया लिवलाई रहाउ। हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, आनंद भये गुर मिलत कृपाल, कर कृपा।

गुण पूरै जब कृपा करी पंत नानक मेरी पूरी परी गौड़ी महला पंजवां अनक रसा खाई जैसी ढोर मोह।

साध संग मिल पजह गोपाला गौड़ी महला पंजवा काल कलेश गुर शब्द निवारी आवन जान रही सुख सारी तै बिन से निरपो हर त्याया साध संग हर के गुण गाया।

जात पूरा गुण काढे, जन्म जन्म के टूटे गांडे। कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जिस भेटत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवां, साध संग तां की सरनी परो, मन तन अपना आगै धरहु। अमृत नाम पीवो मेरे भाई, सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ। ताज अवमान जन्म मरण निवारो, हर के दास के चरण नमस्कारो। सास सास प्रभ मनह सुमाले, सो तन संचो जो चाले नाले। तिसह प्राप्त जिस मस्तक भाग, कहो नानक ता की चरणी लाग। गौड़ी महला पंजवां, सूके हरे किए खिन माए, अमृत दृष्ट संच जीवाए। काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ। मिट गई चिंत पुन्नी मन आसा, कर दया सतगुर गुणतासा। दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना परी जा गुर फुरमाए। इच पुन्नी पूरे गुर मिले, नानक ते जन सुफल फले। गौड़ी महला पंजवां, ताप गए पाई प्रभ शांत, शीतल पय कीनी प्रभ दात। प्रभ कृपा ते पय सोहेले, जन्म जन्म के बिछरे मेले रहाओ। सिमरत सिमरत प्रभ का नाओ, सगल रोग का बिनसे आथाओ। सहज सुपाए बोले हर वाणी, आठ पहर प्रभ सिमरहु प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ ना आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवां, पले दिनस पले संजोग, जित भेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओह बेला कहो हौ बल जाओ, जित मेरा मन जपै हर नाओ रहाओ। सफल मूरत सफल ओह करी, जित रसना उचरै हर हरी। सफल ओह माथा संत नमस्कारस, चरण पनीत चलै हर मार्ग। कहो नानक भला मेरा कर्म, जित भेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवां, गुर का शब्द राख मन माहे, नाम सिमर चिंता सब जाहे।

के अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा पै मह रचियो सब संसारा तिस पहो ना ही जिस नाम आधारा पहो ना व्यापै तेरी सरना जो तुद पावे सोई करना रहाओ सोग हरख मह आवन जाना इन सुख पाया जो प्रभ पाना अग्न सागर महाव्यापै माया ते शीतल जिन सतगुर पाया।

नाव, तुम्हारी कृपा ते दरगाह थाव, तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुम्हारी कृपा ते सदा सुख होए रहाओ, तुम मन बसे तो दुख न लागे, तुम्हारी कृपा ते ब्रह्म पौ भागे, पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी, सगल कथा के अंतर जामी, करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सच रास, गौड़ी महला पंजवा, कण बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग देह बिगानी रहाओ, नाम बिना नाही मुख भाग, परत

मेरा स्वामी, सब किस सुमते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट रहाव, जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किस वरतै सब तेरा पाणा, हुक्म बूझै सो सच समाणा, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवा, ताका दर्श पाईऐ वड भागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वस्या मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कथी न जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सनी।

मन आए, भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कै आवे काम रहाओ, रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता, छोड़ अपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख, बिकम सागर तेई जन तरे, नानक जाको नदर करे, गौड़ी महला पंजवा, हृदय चरण कमल प्रभ तारी, पूरे सतगुर मिल निस्तारी, गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई, मिन साधु हर नाम त्याई रहाओ, दलभ देहे होई परवान, सतगुर ते पाया नाम निशान, हर सिमरत पूरन पद पाया, साध संग पै परम मटाया, जत कत देखो तत रहया समाई, नानक दास हर की सरनाए, गौड़ी महला पंजवा, गुरु जी के दर्शन कौ बल जाओ, जप जप जीवा सत गुर नाओ, पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन धन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होए परवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत धूर पाइए वड भागी, नानक गुर भेटत हर स्यों लिव लागी, गौड़ी महला पंजवा, करै दुख कर्म दिखावै होर, राम की दरगाह बांधा चोर, राम रमै सोई रामाणा, जल थल महियल एक समाणा रहाउ, अंतर बेख मुख अमृत सुनावै, जमपुर बाता चोटा खावै, अनक पड़दे मह कमावै विकार, खिन मह प्रगट होवे संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस किरपाल बिदाता, गौड़ी महला पंजवा, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपूरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूर्ण पुरख बधाता रहाउ, संत संग बैस गुण गाए, ता का रंग न उतरे जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से पहे निहाल, कहो नानक गुर पहे हैं दयाल, गौड़ी महला पंजवा, सिमरत स्वामी किल विकनासे, सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिटियो अंदेसा रहाओ, साध संग कस पौ ना परांति, गुण गोपाल गाय है दिन राती, कर कृपा प्रभ बंधन छोट, चरण कमल की दीनी ओट, कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जस पीवह जन नीत, गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द भ्रमता का भागा, हर धन को व्यापारी पूरा, जिसे

जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीवो हो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजै साध रवाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए तिस स्यों आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लागह कौडी बदले रतन त्यागह रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुभा अमृत रस खावे है खान पान जिन दिए तिसै ना जानह स्वान कहो नानक हम लून हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मज्जन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे भाई कोट जन्म की मल लह जाई रहाओ हर की कथा रित माहे बसाई मन बाशत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जहां कैर दैवसै भगवान कहो नानक से जन पूरे जिन्ना परापत साधु तूरे गौड़ी महला पंजवा खांदा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दूत धर्म राय तिस स्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म परमह बहु जूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो बिसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उधर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाए बंधन काट तरै हर नाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुकत पद दीत ऐसा मीत करहु सब कोई जाते बिरथा कोई ना होए रहाओ अपने सुआए हृदय लै तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान जां कैर दै वसह भगवान औखद मंत्र तंत सब शार करने हार हृदय महतार ताज सब परम भजियो पार ब्रह्म कहो नानक अटल एहो धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा भेटे गुरसोई तित बल रोग ना व्यापै कोई राम रमण तरन पै सागर सरन सू

मुक्त फल पाए। उक्त सियानप इससे कश नाही, कर कृपा नानक गुण गाही। गौड़ी महला पंजवां, थाती पाई हर को नाम, विचर संसार पूर्ण सब काम। वडभागी हर कीर्तन गाइए, पार ब्रह्म तू देहे ता पाइए रहाउ। हर के चरण हृदय उरतार, भव सागर चढ़ उतरह पार। साधु संग करहो सब कोई, सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत भज गुणी निदान, नानक दरगाह पाइए मान। गौड़ी महला पंजवां, जल थल महियल पूर्ण हर मीत, भ्रम बिन से गाए गुण नीत। उठत सोवत हर संग पहरुआ, जां कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाउ। चरण कमल प्रभ हृदय निवास,

नानक प्रभ राखे दे हाथ गौड़ी महला पंजवा हर हर नाम मज्जन कर सूचे कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाव हर के चरण हृदय मह बसे जन्म जन्म के किल विख नसे साध संग कीर्तन फल पाया जम का मार्ग दृष्ट न आया मन बच क्रम गोविंद आधार ताते छुट्यो बिख संसार कर कृपा प्रभ कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवा पौ सरनाई जिन हर जाति मन तन शीतल चरण हर राति पै भंजन प्रभ मन ना बसाही दर्पत दर्पत जन्म बहुत जाही रहाव जा कै हृदय बस्यो हर नाम सगल मनोरथ ताके पूर्ण काम जन्म जरा मृत जिस वास सो समरथ सिमर सा।

जो जन गीते चरण कमल प्रेम भक्ति बीते रहाव आन रसादि सह सब चार नाम बिना निफल संसार अंधकूप।

आन लेत जिस सिरजनहार गौड़ी महला पंजवां नित प्रत नावन राम सार की जय झोल महारस हर अमृत।

किल विख खोए, सिमरह साधु करह आनंद, मन तन रविया परमानंद, जिसह प्राप्त हर चरण निदान, नानक दास तिसह कुर्बान। गौड़ी महला पंजवां।

संत संग जप केवल नाम, कर्म तर्म नियम ब्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा, ता की पूर्ण होई काल, जा की प्रीत अपने प्रभ नाल, सो वैष्णो है अपर अपार, कहो नानक जिन तजे बिकार, गौड़ी महला पंजवां, जीवत छाड़ जाहे देवानी।

तहाउ दिखैठ गौरी जिन जिन खाई ताकी तृष्णा कबहू न जाई दारण दुख दुत्तर संसार राम नाम बिन कैसे उतर सपार साध संग मिल दोए कुल साध राम नाम नानक आराध गौड़ी महला पंजवा गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी पार ब्रह्म सा अग्न मह साड़ी पूरा न्याओ करे करतार अपने दास को रखनहार रहाउ आद जगाद प्रगट प्रताप निंदक मुआ उपज वड ताप तिन मारिया जे रखे न कोई आगे पाचे मंदी सोए अपने दास राखे कंठ लाए शरण नानक हर नाम त्याए गौड़ी महला पंजवा महजर झूठा की तुने आप पापी को लागा संताप जिसह सहाई गोविंद मेरा तिसको जम नहीं आवे नेरा रहाउ साची दरगाह बोले कूड़ सिर हाथ पछोड़े अंधा मूड़ रोग व्यापे कर दे पाप अदली होए बैठा प्रभ आप अपन कमाया आपे बांधे दर्ब गया सब जी कै साथे नानक सरन परे दरबार राखी पैज मेरे करतार गौड़ी महला पंजवा जन की धूर मन मीठ खटानी पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी रहाउ अहम बुद्ध मन पूर थिधाई साध तूर कर सुध मंजाई अनक जला जे धोवै देही मैल न उतरै सुध न तेही सतगुर भेट्यो सदा कृपाल हर सिमर सिमर काटिया पौ काल मुकत भुगत जुगत हर नाओ प्रेम भगत नानक गुण गाओ गौड़ी महला पंजवा जीवन

सद ही सुख पाया, मया करी पूर्ण हर राया रहाव। कहो नानक जाके पूरे भाग, हर हर नाम अस्थिर सुहाग। गौड़ी महला पंजवा, धोती खोल बछाए हेठ, गर्द पवांगू लाहे पेट। बिन कर तूती मुक्त ना पाई, मुक्त पदार्थ नाम ते आई है रहाउ। पूजा तिलक करत इशनाना,

कहो नानक जिस कृपा तार है हिरदा सुध ब्रह्म विचार है गौड़ी महला पंजवां थिर कर बैसो हर जन प्यारी।

बादशाह सहा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपौ होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, सरन परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा, हर संग राते पाहे ना जले, हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुफल फला, सब पै मिटह तुम्हारे नाई, पेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संग राते मिटै सब चिंता, हर सिंह सो रचै जिस साध का मंता, हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस, हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अन दिन जागे, हर संग राता सहज कर वसै, हर संग राते ब्रह्म पौ नसै, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिन कहो बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौड़ी महला पंजवा, उदम करत सीतल मन पहे, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पहे आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कारे आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाओ, नेतर पनीत पेखत ही दर्स, तन मस्तक चरण कमल ही परस, गोबंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया, जन की कीने आप सहाय, सुख पाया लग दासह पाए, आप गया ताया पह पहे, कृपा निदान की सरनी पए, जो चाहत सोई जब पाया, तब ढूंढन कहां को जाया, अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इशनान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिट है साधु सरन दयाल रहाव, बहुत उर्द तप साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन अरादे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सिंह मन माने, अगाध बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे, नानक कहो प्रभ कृपा तारे, गौड़ी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया, गुरु गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, किसह अराध मेरा मन तीरा रहाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाम, ताते सिद्ध पए सगल काम, दर्शन देख सीतल मन पहे, जन्म जन्म के किल बिख गए, कहो नानक कहां पै पाई, अपने सेवक की आप पैज रखाई, गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवक को आप सहाई, नित प्रत पारे बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरे सब कोए, कर्ण करावन पूर्ण सच सोए रहाव, अब मन बसया करने हारा, पै बिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाते, कहन न जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास सदा सरनाई, राग गौड़ी चेती महला पंजवा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम को बल पूरन पाई, ताते बिरता ना व्यापै काई रहाओ, जो जो चितवै दास हर माई, सो सो करता आप कराई, निंदक की प्रभ पत गुआई, नानक हर गुण निरपो गाई, गौड़ी महला पंजवा, पूज बल बीर ब्रह्म सुख सागर,
गर्त परत गह लिहो अंगुरिया रहाओ श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटत पिंगुरिया दीना नाथ अनाथ करना में साजन मीत पिता महतरिया चरण कमल हृदय गह नानक पै सागर संत पार उतरिया राग गौड़ी बैरागन महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दई गुसाई मीतला तू संग हमारे बास जियो रहाओ तुझ बिन करी ना जीवना त्रिग रहना संसार जी प्राण सुख दातिया निमक निमक बलिहार जी हस्त अलंबन देहो प्रभ गर्त हो उदर गोपाल मोहे निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दयाल क्या सुख तेरे सम्मला कवन विधि विचार सरल समाई दास हित ऊचे अगम अपार सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महारस माहे सो प्रसन्न भय केसवा सेजन हर गुण गाहे मात पिता सुत बंध पो तू मेरे प्राण आधार साध संग नानक भजै बिख तरिया संसार गौड़ी बैरागण रोहोए के संत के घर महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद है कोई राम प्यारू गावे सर्व कल्याण सुख सच पावे रहाउ बन बन खोजत फिरत बैरागी बिरले काहू एक लिव लागी जिन हर पाया से वड भागी ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै जोगी जति सिद्ध हर आहै जिस है प्रापत सो हर गुण गाहै ताकि शरण जिन बिसरत नाही बड़ भागी हर संत मलाही।

कृष्णा रस पंकज अत तीखियन मोह की फास काटन हार जगत गुरु गोविंद चरण कमल ताके करहु निवास।

आज्ञा है बसन सुहेला। यह संसार विकार सहसी मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिस है जगाए की आए हर रस अकथ कथा तिन जानी। जा को आए सुई विहाज हो हर गुर ते मन है बसेरा, निज कर महल पाव हो सुख सहजे बहुर ना हुए गो फेरा। अंतर जामी पुरख बधाते श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास इही सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। गौड़ी

राखहु राखनहारी, खेद करह और बहुत संताव है, आयु शरण तुहारी, कर कर हारियु अनक बहु भांति, छोड़ है कतहु नाही। एक बात सुन ताकि ओटा, साध संग मिट जाही, कर कृपा संत मिले मोहे, तिन ते धीरज पाया, संती मंत दियो मोहे निरपो, गुर का शब्द कमाया, जीत लए ओए महा बिखादी, सहज सुहिली बाणी, कहो नानक मन भया परगासा, पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवां, ओ अबनासी राया, निरपो

देवता काठ की पुत्री कहाँ करे बपरी खलावन हारू जाने जैसा भीख करावे बाजी घर ओ तैसो ही साज आने अनक कोठरी बहुत पात करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राखे तैसे रहना क्या इहो करे बिचारा जिन किश किया सोई जाने जिन एह सब बिद साजी कहो नानक अपरंपर स्वामी कीमत अपने काजी गौड़ी महला पंजवा छोड़ छोड़ रे बिखिया के रसुआ पुरज रहो रे बावर गावर जो किरख हरियायो पशुआ रहाओ जो जानह तू अपने काजे सो संग न चाले तेरे तसुआ नांगो आयो नांग सदासी फेर फिरयो अरकाल ग्रसुआ पेख पेख रे कसुंब की लीला रात माच तिन्हू लो हसुआ सीजत डोर दिन से अर रैनी जी को काज ना कीनो कशुआ करत करत एव ही बिरधानो हार्यो उकते तन की नसुआ ज्यो मोहयो उन मोहनी बाला उसते कटै नाही रुच चसुआ जाग ऐसा मोहे गुरह दिखायो तौ सरल परयो तज गर्भसुआ मार्ग प्रभ को संत बतायो दृढ़ी नानक दास भगत हर जसुआ गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा रहाओ अंतर की बेद तुम ही जानी तुम ही सज्जन सोहेले सर्व सुखा मैं तुझ ते पाए मेरे ठाकुर अगह अतोले बन ना साको तुमरे रंगा गुण निदान सुख दाते अगम अगोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते प्रम पौ काट किए नेह केवल जब ते हूं मैं मारी जन्म मरण को चूको सहसा साध संगत दरसारी चरण पखार करूं गुर सेवा बार जाऊं लख बरिया जेहे प्रसाद एहो पौ जल तरिया जन नानक प्रिय संग मिरिया गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कवन रीजा वै तो ही तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ सुर्ग पयाल मृत भूमंडल सर्व सुमानो एक ओही शिव शिव करत सगल कर जो रह सर्व मया ठाकुर तेरी दोही पतत पावन ठाकुर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल सीतलोही ज्ञान ध्यान नानक वडियाई संत तेरे स्यों गाल गलोही गौड़ी महला पंजवा मिलो प्यारे जिया प्रभ की आत्मा राथिया रहाओ अनक जन्म बहु जोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मनुख दे पाई है देहो दर्स हर राया सोई हुआ जो तिस भाणा अवर ना किन्ही कीता तुमरे भाणे परम मोहे मोहया जागत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारी कृपा निद दयाला राख ले हो पिता प्रभ मेरे अनाथ है कर प्रतपाला जिसनो तुम है दिखायो दर्शन साध संगत कह पाछे कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बांछे गौड़ी महला पंजवा हों ता कै बलिहारी जां कै केवल नाम आधारी रहाओ महिमा ता की कीतक गनिए जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन समसर अवर ना दाते जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परे सो तरिया संत संग पूर्ण आसा ता कै चरण परों ता जीवा जन कै संग निहाला भगतन की रेन होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला राज जोबन अवध जो दिसै सब किस जोग मह काटिया

तिस करते पूर रहे हो रतनागर रे। जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी कट कट अंतर सोई रे। नानक दास तां की सरनाई जाते वृथा ना कोई रे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर कबहू ना मनहु बिसारे इहां उहां सर्ब सुख दाता। सगल कटां प्रित पारी रहाओ महाकष्ट काटे खिन पीतर। रसना नाम चितारी शीतल शांत सुख हर सरनी। जलती अग्न निवारी गर्भ कुंड नरक ते राखै। पव जल पारी उतारी चरण कमल अराधत मन मह। जम की त्रास बदारी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर। ऊंचा अगम अपारी गुण गावत त्यावत सुख सागर। जुए जन्म ना हारी काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो। निर्गुण के दातारी कर कृपा अपनो नाम दीजै। नानक सद बलिहारी राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रतन अमोलक। साध संगत जप एक खिना रहाव सुत संपत बंता बनोद। छोड़ गए बहु लोग भोग हैवर गैवर राज रंग। त्याग चल्यो है मूढ़ नंग चोआ चंदन देह फूलिया। सो तन धर संग रूलिया मोहे मोहया जाने दूर है। कहो नानक सदा हदूर है। गौड़ी महला पंजवा मन धर तरबे हर नाम नो। सागर लहर संसार संसार गुरबोहित पार ग्राम नो। रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया। बिख बिख्या पसरी अत घनी उबरे जप जप हर गुनी। मतवारू माया सोया गुर भेटत भ्रम पौ खोया। कहो नानक एक त्याया घट घट नदरी आया। गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारू तुही एक। सेवा थारी गुरह टेक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया। गुर चाकर ले आया मारे पंच बिखा दिया। गुर कृपा ते दल साध्या बख्शीस वजहो मिल एक नाम। सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से भले। नानक तिन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा। जी अरे ओला नाम का अवर जे करन कराम नु तिन मह पहो है जाम का। रहाओ अवर जतन नहीं पाई है वड्डे भाग हर त्याई है। लाख हिकमती जानी है आगे तिल नहीं मानी है। अहम बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने। प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले। गौड़ी महला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया। नामो हो नाम साहिब को प्राण अधरिया। रहाव कर्ण करावन तुही एक जी जंत की तुही टेक। राज जोगन प्रभ तू तली तू निर्गुण तू सरगुणी। इहां उहां तुम रखे गुर कृपा ते को लखे। अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तुही तान। गौड़ी महला पंजवा हर हर हर आराधी है। संत संग हर मन वसै परम मोह पहो साधी है। रहाओ वेद प्राण सिमरत पने सब ऊच बराजत जन सुने। सगल अस्थान पै पीत चीन राम सेवक पै रहत कीन। लख चौरासी जोन फिर है गोविंद लोक नहीं जन्म मर है। बल बुद्ध स्यान पहो मैं रही हर साध सरन नानक गही। गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाई है। नीत नीत हर सेवी है
सास सास हर त्याय रहाओ, संत संग हर मन वसै, दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै, संत प्रसाद हर जापी है, सो जन दुख ना व्यापी है, जा को गुर हर मंत्र दे, सो उबरिया माया अग्नते, नानक को प्रभ मया कर, मेरा मन तन वासै नाम हर, गौड़ी महला पंजवां, रसना जपिया एक नाम, इहां सुख आनंद घना, आगे जी कै संग काम रहाओ, कटिया तेरा अंगरोग, तू गुर प्रसाद कर राज जोग, हर रस जिन जन चाखिया, तां की तृष्णा लाथिया, हर विश्राम निध पाया, सो बहुर न कत ही ताया, हर हर नाम जा को गुर दिया, नानक तां का भउ गया, गौड़ी महला पंजवा, जाको बिसरे राम नाम ताहू को पीर, साध संगत मिल हर रवह से गुणी गहीर रहाव, जाको गुरमुख हृदय बुद्ध ताके कर तल लव निध सिद्ध, जो जान है हर प्रभ धनी किस नाही ताके कमी, करने हार पछानिया सर्ब सुख रंग माणिया, हर तन जाके ग्रह वसै, कहो नानक तिन संग दुख नसै, गौड़ी महला पंजवां, गर्भ बड़ो मूल इतनो, रहन नहीं गहो कितनो रहाव, बेबरजत बेद संतना, वाहू स्यों रे हितनो, हार जुआर जुआ बिदे, इंद्री वस लै जितनो, हरन परन संपूर्णा, चरण कमल रंग रितनो, नानक उदरे साध संग, किरपा निद मैं जितनो, गौड़ी महला पंजवां, मोहे दासरो ठाकर को, तान प्रभ का खाना रहाओ, ऐसो है रे खसम हमारा, खिन मह साज स्वार नहारा, काम करी जे ठाकुर पावा, गीत चरित प्रभ के गुण गावा, सरन परयो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन धीरा, एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा, गौड़ी महला पंजवां, है कोई ऐसा हूं मैं तोरै, इस मीठी ते एहो मन हो रै रहाओ, अज्ञानी मनुख भया, जो नाही सो लोरै, रैण अंधारी कारिया, कमन जुगत जित पूरै, प्रमतो हारिया, अनक विधि कर टोरै, कहो नानक कृपा पही, साध संगत निद मोरै, गौड़ी महला पंजवां, चिंता मन करना मई रहाओ, दीन दयाला पार ब्रह्म, जाकै सिमरन सुख पई, अकाल पुरख अगाध बोध, सुनत जसो कोट अग खई, किरपा निद प्रभ मया तार, नानक हर हर नाम लई, गौड़ी पूर्वी महला पंजवां, मेरे मन सरन प्रभु सुख पाए, जान दिन बिसरै प्राण सुख दाता, सो दिन जात अजाय रहाव, एक रैन के पहुन तुम आए, बहु जुग आस बंधाए, ग्रह मंदर संपै जो दिसै, ज्यों

बाग मिलक सब जाय, देव नहारा बिसरियो ठाकुर, खिन मह होत पराय, पहरे बागा कर इशनाना, चोवा चंदन लाय, निरपहो निरंकार नहीं चीनिया, ज्यो हस्ती नवाए, ज्यो हुए कृपाल, ता सतगुर मिले, सब सुख हर के नाए, मुक्त भया बंधन गुरु खोले, जन नानक हर गुण गाय, गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए, रत्न जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बले हरिए रहाव, जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाइए, जो हुए दयाल सतगुरे अपना, ता एह मत बुद्ध पाइए, मेरे मन नाम लए जम बंद ते छूट है, सर्व सुखा सुख पाइए, सेव स्वामी सतगुर दाता, मन बंचत फल आइए, नाम इष्ट मीत सुत करता, मन संग तुहारे चाले, कर सेवा सतगुरे अपने की, गुर ते पाइए पाल, गुर कृपाल कृपा प्रभ धारी, बिन से सर्व अंदेसा, नानक सुख पाया हर कीर्तन, मिटियो सगल कलेशा, राग गौड़ी महला पंजवा।

कारी अनक प्रकारी परिग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजिए अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही महल जीए जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजिए गौड़ी महला पंजवा सबहू को रस हर हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो दंड धर हो।

सुन है नानक नेरी नेरी गौड़ी महला पंजवा मातो हर रंग मातो रहाओ उही पियो उही कियो गुरह दियो दान कियो वाहु स्यो मन रातो उही पाठी उही पोचा उही प्यारो उही रूचा मन ओहो सुख जातो सहज खेल अनंद खेल रहे फेर भये मेल नानक गुर शब्द परातो राग गौड़ी मालवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर नाम लेहो मीता लेहो आज्ञा बिकम पंथ पै आन रहाओ सेवत सेवत सदा सेव तेरा संग बसत है काल कर सेवा तू साध की हो काती है जम जाल होम जग तीर्थ किए बिच हों मैं बधे विकार नरक सुर्ग दोए पुंच ना होए बहुर बहुर अवतार शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निश्चल को थाओ नाहे बिन हर सेवा सुख नहीं हो साकते आवह जाहे।

कर कीर्तन हुए उदार, राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पायो बाल बुद्ध सुखरे, हरख सोग मान मृत दुख सुख, चित समसर गुर मिले रहाओ, जो लो हो किस

केते बंद परे जो साधु कर्मस्तक धरयो तब हम मुक्त भए जो लो मेरो मेरो करतो तो लो भिख घेरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए जो लो पोट उठाई चल्यो तो लो दान भरे पोट डार गुरु पूरा मिलिया तो नानक निर्भय गौड़ी माला महला पंजवां भावन त्यागियो री त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोबिंद आगियो रहाओ मान अभमान दो समाने मस्तक डार गुर पागियो संपत हरखना आपत दुखा रंग ठाकुर लागियो बास बासरी एक स्वामी उद्यान दृष्टा गियो निरपौ भये संत भ्रम डारियो पूर्ण सर्वागियो जो किस करतै कारण कीनो मन बुरो न लागियो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जागियो जन नानक ओड़ तुहारी परियो आयो सरनागियो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लागियो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन सीतल मन सीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख त्रिशन सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर्मस्तक गुरु पूरे तरेओ मन जीतो जग सारी तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मूके अचरज एक सुनो रे भाई गुरे ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकुर जो पेटे हो तो बिसरी तात पराई कहो ना जाई एहो अचंभव सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच भये बिगासा गुर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्ब लोक माया के मंडल गिर गिर परते धरनी रहाओ शास्त्र सिमरत वेद बिचारी महापुरखन इउं कहिया बिन हर भजन नाही निस्तारा सुख ना किन्हू लहिया तीन भवन की लक्ष्मी जोरी बूजत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावे फिर तो पहरे पहरे अनक बलास करत मन मोहन पूरन होत ना कामा जल तो कबहू ना बूजत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारे नानक जन की धूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको एह बिद को समझावे करता होए जनावे रहाओ अनजानत किस इन्ह कमानो जप तप कशु ना सादा दह दिस लै इह मन दौरायो कमन कर्म कर बांदा मन तन धन भूम का ठाकुर हौ इसका इह मेरा परम मोह कस सूजस नाई एह पैखर पए पैरा तब इह कहां कमावन परिया जब इह कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किस आपह करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन एहो रचन रचाया कहो नानक करन हार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिथे जप तप संयम कर्म कमाणी एह ओरे मूसे रहाओ वरत नेम संयम मह रहता तिनका आड़ ना पाया आगे चलन और है पाई ऊहा काम ना आया तीर्थ नाए अर धरनी भ्रमता।

वेद मुख बचनी उच्चरे आगे महल ना पाईए बूझे ना ही एक सुधाखर ओहो सगली चाख चखाईए। नानक कह तो एहो बीचारा जे कमावे सो पार ग्रामी गुर सेव हो अर नाम त्याव हो त्याग हो मन हो गुमानी। गौड़ी माला पंजवा माधो हर हर हर मुख कही है हम ते कशु ना हुए स्वामी ज्यो राखो हो त्यो रही है रहाओ। क्या किस करे के करने हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लाव हो तित ही लागा पूरन खसम हमारे। करो कृपा सर्ब के दाते एक रूप लेव लाव हो नानक की बेनंती हर पह अपना नाम जपावो। राग गौड़ी माज महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दीन दयाल दमोदर राया जीव कोट जना कर सेव।

मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला।

गुर प्रसादी सो हर हर पाही जियो। सब किस प्रभ का प्रभ किया जाई जियो, प्रभ को सद बल जाई जियो। एहो निधान जपै बड़ भागी जियो, नाम निरंजन एक।

तुम्हारे सुख वसा सच शब्द निशान रहाव सबे गल्ला जातियां सुनकै चुप किया कद ही सुरत ना लदिया